एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 की भाद्रपद माह की 10वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 1 सितंबर सन 2026। श्रोतो, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 5:56 और ठीक 30 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन, सुप्रभात।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। सवेरे के 6 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार। 6:05 से आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित चिंतन और भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कल बिश्केक में 6वें विश्व घुमंतू खेलों के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। ये द्विवार्षिक आयोजन घुमंतू सभ्यताओं की समृद्ध खेल परंपराओं, संस्कृति और विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अभी भी लापता है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ ने भोटकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए तथा बिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि बैठक में देश में विहरित विकास को गति देने और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी पहलों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान दिया गया। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए 4वां भारत जर्मनी पर्यावरण मंच आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टन स्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही कपड़े के थैलों और दोबारा प्रयोग वाली बोतलों के उपयोग को बढ़ावा देना भी है। ये अभियान 15 सितंबर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए 50,000 रूपये की सहायता राशि की घोषणा की है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल से 3 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये दौरा भारत बेल्जियम साझेदारी को और मजबूत करेगा। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप 2027 की क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगाम्यूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमिर चैनल है। लीजिए अब सुनिए चिंतन।

छवि सकारात्मक हो सकती है और नकारात्मक भी। यह व्यक्ति के अपने संस्कारों पर निर्भर करता है कि वह अपनी कैसी सार्वजनिक छवि बनाना चाहता है। जो मनुष्य बेहतर काम करते हैं वे हमेशा याद किए जाते हैं। छवि धीरे धीरे बनती है, अपने कर्मों से बनती है। हम समाज में ऐसे अनेक लोगों को देखते हैं जो अपनी दिनचर्या में से समय निकालकर ऐसे परमार्थ के काम करते हैं जिसे साधारण लोग सोच भी नहीं सकते। ये लोग जब लीक से हटकर काम करते हैं तो इनकी समाज में विशिष्ट छवि बनती है और आदर के पात्र बन जाते हैं। हमने देखा है कि कुछ लोग घायल पशु

0: बन जाते हैं। हमने देखा है कि कुछ लोग घायल पशु पक्षी बीमार बुजुर्ग बेसहारा लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। ये उनकी उत्कृष्ट छवि को समाज में प्रस्तुत करता है। इनका जीवन लोक कल्याण के लिए रचा जाता है। व्यवसाय हो, राजनीति हो, साहित्य हो, पत्रकारिता हो या जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र हो, छवि उसी व्यक्ति या संस्था की बनेगी जिसका जीवन सुचितापूर्ण होगा। इनका जीवन लोक कल्याण के लिए ही रचा जाता है। जिसके जीवन में करुणा की भावना होगी, जिसके जीवन में त्याग होगा, दान की भावना होगी, जो दान पुण्य करता रहेगा, जिसके मन में लूट का भाव ना हो, वही इंसान अपनी अच्छी छवि बना पाता है। इस्लाम में ज़कात का निर्देश है, हमें अपने लाभ का 10% परमार्थ में लगाना चाहिए। हम जब अकेले में होते हैं, अपने आप को साक्षी भाव से देखते हैं, तब हम ये सोचते हैं कि हमने क्या गलत किया, क्या सही किया। अगर आत्मा हमें सराहती है तो हमारा जीवन पुण्य से भर जाता है, और जो पुण्य करता है लोक छवि उसी की बनती है। हमारा जीवन सूरज की तरह होना चाहिए। सूरज इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन उसे देखता है या नहीं देखता। वह आता है अंधेरे के खिलाफ एक सार्थक हस्तक्षेप करके शाम को अस्त हो जाता है। हमारा जीवन भी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पसरे अंधेरे को दूर करने वाला होना चाहिए। अगर लोग ऐसा करते रहेंगे, उनकी सुंदर लोक छवि अपने आप बनती रहेगी। आज सूर्य की प्रथम किरण के साथ हम ये संकल्प लेते हैं, ऐसी छवि बनाएंगे, करे जगत कल्याण, जब देखें दर्पण कभी हो खुद पर अभिमान।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चिंतन, विषय था छवि। यह आकाशवाणी जयपुर अजमेर का अमीर चैनल है। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना।

0: इसी देश।
1: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग।

ऋषि वाल्मीकि ने श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को अपने आश्रम में पाकर स्वयं को धन्य माना। श्री राम ने ऋषिवर से किसी ऐसे ठौर का पता बताने का निवेदन किया जहां वे लोग कुछ समय के लिए निवास कर सकें। ऋषि के उद्गार इन शब्दों में फूट पड़े, जिनके हृदय में काम क्रोध मद मोह लोभ शोभ न हो, जो राग विराग छल कपट दंभ और माया से परे हों, हे रघुनाथ आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जो पराई स्त्री को अपनी माता के समान आदर देते हों, जिन्हें पराया धन विष से भी घातक लगता है, जो दूसरों की संपत्ति देख हर्षित होते हैं और दूसरों की विपत्ति जिन्हें विशेष रूप से दुखी करती है, उनके हृदय आपके निवास के लिए उपयुक्त भवन स्वरूप हैं। इस विनय के बाद ऋषि वाल्मीकि ने चित्रकूट पर्वत को निवास के सर्वथा योग्य बताया, जहां सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थीं। ये ऐसा मनोरम स्थान है जहां तरह तरह के पशु पक्षी विचरण करते हैं, जहां अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया पतित पावनी गंगा की धारा ले आई थीं, जहां अत्रि समेत अन्य ऋषि मुनियों के आश्रम हैं। हे राम, चित्रकूट को अपना निवास स्थान बनाकर उसे गौरव प्रदान कीजिए।

मानस गान का आज का प्रसंग। ये कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में जानकारी, हमारी सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय की। विविध भारती के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सवेरे 7:30 पर, 10 बजे और दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक।

अब से थोड़ी ही देर में यानी 6:45 पर आप सुन सकते हैं हमारे किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम खेती में बात।

6:50 पर प्रसारित होगा आदिवासी लोक संगीत। कलाकार हैं राधेश्याम और साथी।

7:20 पर आप सुन सकते हैं वातायन। वातायन के अंतर्गत आज हम सुनेंगे कैलाश गिरी गोस्वामी से वागड़ी काव्य पाठ।

प्रातः 8:15 पर प्रसारित होगा दिल के जज्बातों पर आधारित कार्यक्रम कुछ दिल से। आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह।

शाम 5:05 पर प्रसारित होगा महिलाओं का अपना कार्यक्रम नारी लोक। प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया आप सुन सकते हैं शाम 6:15 पर। आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण समय रहेगा शाम 7:00।

0: केंद्र से रिलीज समाचार संध्या आप सुन सकते हैं रात्रि 8:45 पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारी सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रस्तुत है हमारे किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम खेती की बात।
1: कार्यक्रम हम बरवावारा सब भाइयों ने सोरा आडियो वालजी भाई नो राम राम। किसान भाइयों देखो सोरो पूरो भोजो तो को है ने आपने सोरा ऊपर एगा थई ने हवार हवार में क्षेत्र में दवा नेक रहा। किसान भाइयों देखो आज आपने सोरा ऊपर बात करी रहा के धान की फसल में उर्वरक

0: प्रबंध हटते कर वो है। किसान भाइयों देखो आम तो अवरे आना क्षेत्र में दे किसान भाई दे हैं कि पानी नहीं वार्ड जोई ने बैठा था का है अवरे पानी नहीं जरूरत है। फिर भी किसान भाइयों धानी फसल में उच्च पैदावार हरू आपने भाइयों ने संतुलित उर्वरक प्रबंधन घणो जरूरी है जिना में मुख्य रूप थकी आपने किसान भाई नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश ने जिंक नो सही मात्रा में उपयोग करवो जरूरी है रे किसान भाई करी भी जा सका है। किसान भाइयों आना में आवश्यक मुख्य पोषक तत्व ने इनो प्रबंधन सही समय ऊपर जरूरी है जिम के सबसे की पहल नाइट्रोजन की बात करें आपने तो आ पौधनी वृद्धि हरियाली ने कल्ला फूटवा में मदद करे है। आने किसान भाइयों एक हाथे ने आली ने बे या तोड़ वगर अपने खेतर में आलव हुए एक है फास्फोरस जिन्हें आपने डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट आ जिम के जड़ोनी शुरुआती विकास ने मजबूती हरू खूब आवश्यक है। किसान भाइयों आनी पूरी मात्रा रोपाई या बुआई ना समय में खेतर ने तैयारी ना वक्त अपने ऊपर ना को जरूरी है तो एक पोटेशियम जिन्हें अपने म्यूरेट या पोटाश कह सका इनी बात करो तो आप पौधों की मजबूती आले हैं ने रोग या सूखा थावानी स्थिति में भी बसावे हैं जिनके अवड़े पानी की कमी हो तो आ इन स्थिति में भी अपनी फसल ने बसावी रखे हैं। आनी आधी मात्रा रोपाई ने पहले शेष मात्रा बादनी अवस्थाओं में आप खड़ी फसल में आली शको। एक है किसान भाइयों जिंक सल्फेट। किसान भाइयों धानी फसल में जिंक की कमी तो आम बात है जे किसान भाइयों ने प्रत्येक धानी फसल करे हैं इना में जिंक की कमी तो आवेश है जे आम बात है जिनके पत्तियों नो पीलापन पड़वानी स्थिति आवे तो अपने हम जी रहू हुए कि आना में जिंक सल्फेट की कमी थी रही है या आ कमी देखावा ऊपर किसान भाई जे हैं कि 20 थकी 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर ने हिसाब थकी आनी मात्रा आपने अलवी हुए। किसान भाइयों उर्वरक अलवाना भी सही चरण किसान भाई ने ध्यान में रखना जरूरी जिनके पहली टॉप डेसिंग कल्ला ने करती गया बीजा दौर में आपने एम कही सकते बीजी टॉप ड्रेसिंग बीजा दौर में आपने घाब अवस्था में जिन्हें गणितीय भाषा में आपने 50 थे की 55 दाड़ा बाद आपने आप बीजी उर्वरक की मात्रा अंदी दी है। ध्यान रखें कि रासायनिक खाद हमेशा खेतर में खड़ा पानी या नमी की स्थिति हो इन्हीं विरा समान रूप से की अपने खेतर में ना कूद दिए। किसान भाई आनी बात में विशेष ध्यान रखे कि एक तो खेतर में पानी भरे तो को हो या खेतर में नमी ज्यादा हो भी दूए इन्हीं स्थिति में अपने धाननी फसल में आ रासायनिक उर्वरक नो प्रयोग है ये अपने आसानी थकी करी सकाओ। किसान भाइयों देखो खेती री बात कार्यक्रम नो समय पूरो थी गयो तो आगे तो बालजी भाई ने आज्ञा लो काले सोरा ऊपर फिरी नवी जानकारी नाते आपने मलंगा ए अब्दु राम राम राम राम।
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे खेती की बात। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे किसान भाइयों ने सुना धान की फसल में उर्वरक प्रबंधन के विषय में सामान्य जानकारी। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। सवेरे के 6:50 हुए हैं। लीजिए सुनिए आदिवासी लोक संगीत। लोक संगीत के अंतर्गत आज हम सुनेंगे राधे श्याम और साथी कलाकारों के गाए लोक भजन।

भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा, सिर्फ

और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: वहाँ प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है।
1: हाँ।
0: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं।
1: हाँ।
0: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
0: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। आप सुन रहे हैं आदिवासी लोक संगीत के अंतर्गत राधे श्याम और साथी कलाकारों के गाए लोक भजन।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
2: आदिवासी लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है।

0: हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है वातायन। वातायन के अंतर्गत आज हम सुनेंगे कैलाश गिरी गोस्वामी से वागड़ी काव्य पाठ।
1: आपने हमें कुछ वागड़ी ना दोहा प्रस्तुत करूं।
2: वाली मारी वागड़ी

आधरती है खास। हमारी अगली रचना है, पहले बाप दादा खाता था, पहले बाप दादा खाता था कुदरा ने कुरी, पहले खाता था बाप दादा कुदरा ने कुरी, करता मेहनत ने मजूरी, पण ने करता किनी ऐसी अजूरी। खेतरे जाईने ओळो बाळता, सोरब ओरसब हाथे बहिने, खाता पाली पाली घाटा, अरे हियाणा में हेणते फरते, सुवे तसब हाटा, एटले दांत रहता काटा। आजे बुरुस गाड़ी गाड़ी ने दांत वगाड़ी ना क्या, बतरी है बतरी क्वाड़ी ना क्या। अवे कुदरा कुरी ने बटी, घेरे घेरे डनो दलती गटी, सब गई मटी। तमने हूं वात कहूं, सब खावा लाग्या सुका ने गहूं,

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में पाल की फिल्म का ये गीत आपने सुना। शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत। कार्यक्रम हम है राही प्यार के आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

0: अरे धनवानों की इस दुनिया के रंग है सारे झूठे,
1: रंग है सारे झूठे।

0: छूटे
1: राम और श्याम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर के साथ साथियों की आवाजें, शकील बदायूनी की बोल, नौशाद का संगीत।
2: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना हम

0: कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के, और अंतराल से ठीक पहले हमने आपको सुनवाया मिलन फिल्म से गीत, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: फर्ज फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, आनंद बख्शी की बोल, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लूं।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।

विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आइए सुनते हैं तकदीर फिल्म से एक गीत। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आवाजें उषा मंगेशकर, महेंद्र कपूर और उषा तिमोती की।

यादों का सिलसिला गीतों के साथ चलता ही रहता है और हम भी आपको याद दिला दें कि संगीत सरिता में आज से शुरू हुई एक नई श्रृंखला स्वर साधना के अनुपम परंपरा किराना घराना पहली कड़ी आज आपने 6:45 पर सुबह सुनी और अगर सुना रह गया तो शाम 6:45 पर पुनः प्रसारण के जरिए आप इसे सुन सकते हैं। कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे और आज शाम को सुनना न भूलिएगा सेलुलॉयड के सितारे कार्यक्रम जिसमें अभिनेता जमील खान से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत आप सुन सकते हैं और इस वक्त कार्यक्रम हम हेराही प्यार के खत्म करते हैं।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार प्रभात। समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला? मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
1: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमरीका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया और अर्जेंटीना के फुटबॉलर नियोलन मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। 21 साल के शानदार करियर का अंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की 25वीं वर्षगांठ पर

0: आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में भारत, चीन और रूस सहित 10 अन्य सदस्य देश शामिल हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। भारत आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड अपनाए जाने के हमेशा से खिलाफ रहा है। भारत का मानना है कि क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए सदस्य देशों के बीच संपर्क बढ़ना जरूरी है। हालांकि संपर्क परियोजनाओं के साथ सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत सदस्य देशों के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने और स्टार्टअप व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर देता रहा है। भारत का मानना है कि युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और उद्यमिता क्षेत्रीय विकास और सहयोग को नई गति दे सकती है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रही थी। इस बीच अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ उप प्रेस सचिव कुश देसाई ने कहा कि विकास के ये आंकड़े ट्रंप प्रशासन के भारत को एक तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं।
3: मुझे लगता है कि ये आंकड़े उस बात की पुष्टि करते हैं जो राष्ट्रपति और प्रशासन शुरू से ही कहते आ रहे हैं। भारत एक गतिशील, मजबूत और मुश्किलों का सामना करने में सक्षम अर्थव्यवस्था वाला देश है और मुझे लगता है कि जो जीडीपी रिपोर्ट या आंकड़े सामने आए हैं वे फिर इस बात को पुख्ता करते हैं कि भारत यहाँ तेजी से उभरती हुई एक बड़ी ताकत है।
0: अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दो दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रही हैं। अमेरिका की वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है।
4: हमने अमेरिका को पूंजी के प्रवाह और व्यवसायियों को विकसित करने के लिए दुनिया का प्रमुख केंद्र बनाया है। हमने लाखों कामकाजी परिवारों को ऐतिहासिक कर राहत दी है और ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया की महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त किया है। ये उपलब्धियां विकास के अगले दौर को आकार दे रही हैं और हमने तो अभी शुरुआत ही की है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's

0: Leadership theme, building for resilience, innovation, cooperation and sustainability. With a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह ठुकरा दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के अधिकार को नकारते हुए उसके निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है।
2: भारत ने दोहराया कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। यह बयान हेग स्थित मध्यस्थता न्यायालय के उस फैसले के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि संधि को स्थगित करने के भारत के कारण इसके निलंबन या समाप्ति को उचित नहीं ठहराते। पैनल ने भारत को 1960 के जल बंटवारे समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन जारी रखने का आह्वान किया।

0: के जल बंटवारे समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन जारी रखने का आह्वान किया। हालांकि भारत ने इस फैसले को खारिज करते हुए तर्क दिया कि मध्यस्थता पैनल की स्थापना ही संधि की शर्तों का उल्लंघन करते हुए की गई थी। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना स्थल पर सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंप का उपयोग कर रहे हैं।
2: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 939 हो चुकी है और 3,925 लोग अब भी लापता हैं। जल विद्युत परियोजनाओं से 279 लोगों को बचाया जा चुका है। वहीं देश भर के 11,000 से अधिक लोगों को भी बचाया गया है। भारत ने बचाव अभियान और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल भेजे हैं। बाढ़ से 11 जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। नेपाल ने कई देशों से फ्रीजर, डीएनए परीक्षण उपकरण, ड्रोन पुल और विशेष सुरंग बचाव उपकरण सहित सहायता मांगी है। 18 भारतीय फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम डीएनए पहचान में सहायता कर रही है। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: मौसम विभाग ने आज उड़ीसा के सुंदरगढ़ और क्योंझर के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट, 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
3: उड़ीसा में एक बार फिर भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़ और केंद्र के लिए रेड वार्निंग जारी की है। झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल और मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू है, जबकि 12 जिलों येलो वार्निंग में है। ये बारिश गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और उससे सटे उड़ीसा के उत्तरी तटीय इलाकों में बने वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के कारण हो रही है। IMD का अनुमान है कि कल के बाद बारिश कम हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार भुवनेश्वर।
1: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच सम्मेलन आज नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 28 अगस्त तक खरीफ फसलों के अंतर्गत 171 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बुआई हो चुकी थी। मंत्रालय ने बताया कि धान की खेती 414 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई है, जबकि दलहन की बुआई 115 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हुई है। नागालैंड विधानसभा का 9वां सत्र आज शुरू होगा। इस सत्र में फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी बिल 2026, कई सरकारी विधेयक और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने इस साल जनवरी में हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन पर हुए विस्फोट के सिलसिले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले अभिकरण ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तेजाब की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार से इसकी बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बारे में जानकारी मांगी है। ये निर्देश वर्ष 2013 में दिए निर्देश के बावजूद तेजाब की आसानी से उपलब्धता पर चिंताओं के बीच आया है। न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर तेजाब हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप, 2 कोपा अमरीका खिताब जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप क्वालिफायर में भारत ने सीरिया को 1-0 से हरा दिया है। ताशकंद में कल सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मैच बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। ये

0: समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, किर्गिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी बोले, यूक्रेन युद्ध का अंत आवश्यक। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे ले जाता है। जनसत्ता की सुर्खी है, किर्गिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग, प्रधानमंत्री की ईरान के राष्ट्रपति से भी वार्ता और कूटनीति से पश्चिम एशिया के संघर्ष के समाधान की अपील की। अमर उजाला के शीर्षक है, वैश्विक बाधाओं के बाद भी रफ्तार में भारत, विकास दर 7.8% पहली तिमाही में भारत की जीडीपी सबसे तेज, खपत और निर्यात ने संभाला मोर्चा। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, अगर हिंदू जागते हैं तो दुनिया जागती है, मानवता की निस्वार्थ सेवा के जरिए भारत विश्वगुरु बना। राजस्थान पत्रिका ने समुद्र में शक्ति शीर्षक से सचित्र दिया है, INS निपुण नौसेना में शामिल, समुद्र में गहराई तक मदद पहुंचाने में सक्षम है स्वदेशी पोत।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया। और अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया, 21 साल के शानदार करियर का अंत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रस्तुत है कुछ दिल से।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मीनाक्षी उपाध्याय का नमस्कार। श्रोताओं, हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हमारा स्वास्थ्य है। धन, वैभव और सफलता का सुख तभी सार्थक है जब शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न हो। स्वस्थ जीवन की आधारशिला है संतुलित व पौष्टिक आहार, और इसी महत्व को जन जन तक पहुंचाने व पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हमें याद दिलाता है कि पोषण एक दिन का विषय नहीं, जीवन भर की आवश्यकता है। श्रोताओं, हमारे पोषण के विषय पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, पोषण भोजन की मात्रा का नाम नहीं, भोजन की गुणवत्ता और संतुलन का भी परिचायक है। हमारे भोजन में दालें, अनाज, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध, मेवे व पर्याप्त जल का उचित समावेश होना जरूरी है। शरीर को जिस प्रकार सूर्य से ऊर्जा मिलती है, उसी प्रकार पौष्टिक आहार जीवन शक्ति का संचार करता है।

अनाज हमें ऊर्जा देता है। दालें व अन्य प्रोटीन शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं। जैसा अन्न वैसा तन, जैसा तन वैसा मन। इसीलिए हमारी थाली जितनी विविध और संतुलित होगी, हमारा स्वास्थ्य भी उतना ही सुदृढ़ होगा।

श्रोताओं, बचपन जीवन की वह कौपल है जिसे उचित पोषण का प्रकाश मिले तो वह भविष्य में एक सशक्त वृक्ष बन सकती है। बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए पौष्टिक भोजन अत्यंत आवश्यक है। इसी तरह गर्भवती महिलाओं और माताओं का पोषण भी विशेष महत्व रखता है। एक स्वस्थ मां ही स्वस्थ पीढ़ी की मजबूत नींव होती है। स्वस्थ तन जीवन की शक्ति है, पौष्टिक भोजन उस शक्ति की भक्ति है।

श्रोताओं, हमारी भारतीय रसोई तो मानो पोषण की एक जीवंत पाठशाला है। ज्वार, बाजरा, मक्का, मोटा अनाज, दालें और पारंपरिक व्यंजन, बस आवश्यकता है अपनी थाली को समझने की। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में स्वाद का आकर्षण कई बार हमें ऐसे भोजन की ओर ले जाता है जो क्षणभर के लिए तो मन को भाता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए उतना उपयोगी नहीं होता। स्वच्छता का ध्यान रखिए, पर्याप्त पानी पीजिए और अपने दैनिक जीवन में शारीरिक सक्रियता को स्थान दीजिए।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
1: सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह केवल जागरूकता का अवसर नहीं, आत्ममंथन का समय भी है। आइए श्रोताओं, आज हम स्वयं से एक प्रश्न करें, क्या हमारी थाली हमारे स्वास्थ्य का साथ दे रही है? यदि उत्तर में थोड़ी सी भी कमी महसूस हो तो आज से ही एक छोटा सा परिवर्तन करें। भोजन में संतुलित आहार को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि बड़े बदलाव अक्सर छोटे संकल्पों से ही जन्म लेते हैं। इसीलिए भोजन ऐसा हो जो केवल जिह्वा को स्वाद न दे, बल्कि शरीर को शक्ति और मन को स्फूर्ति दे। जब हमारी थाली संतुलित होगी, तभी हमारे जीवन में संतुलन आएगा।

0: दिल कहे रुक जा रे रुक जा।
1: श्रोताओं, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के अवसर पर हम मिलकर ऐसा भारत बनाएं जहां हर बच्चे की मुस्कान में स्वास्थ्य हो, हर माँ के आंचल में शक्ति हो, हर परिवार की थाली में पोषण हो और हर नागरिक के जीवन में स्फूर्ति। तो स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अपने भोजन को अपना पहला स्वास्थ्य संरक्षक बनाइए। इसी के साथ कुछ दिल से को अब यही विराम देते हैं। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कुछ दिल से। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए राजस्थानी लोक संगीत।

0: कलाकार ही मांगनियार कलाकार
1: लहरिए रामो शोर पिया रोज राशा हमारे ले।

یارے پلے گزرا لے لے لے چارے پلے گزرا

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं मांगनियार कलाकारों के गाए राजस्थानी लोकगीत।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

मांगणियार कलाकारों के गाए इस लोक गीत के साथ ही राजस्थानी लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 9 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित 26वीं शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आज से देश भर में स्वच्छता पखवाड़ा शुरू किया जाएगा। प्रदेश में 309 नगर निकाय चुनाव के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी और राज्य में कच्चे तेल का उत्पादन चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 80,000 बैरल प्रतिदिन किया जाएगा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित 26वीं शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये शिखर सम्मेलन संगठन की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। एससीओ बैठक में भारत, चीन और रूस सहित 10 अन्य सदस्य देश शामिल हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ

0: उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: देशभर में आज से स्वच्छता पखवाड़ा 2026 शुरू हो रहा है। इस अभियान का उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, साथ ही कपड़े के थैलों और दोबारा प्रयोग होने वाली बोतलों के उपयोग को बढ़ावा देना है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा इस पखवाड़े का उद्घाटन करेंगे। ये अभियान 15 सितंबर तक चलेगा। उर्वरक विभाग के अनुसार इस राष्ट्रव्यापी अभियान का लक्ष्य भौतिक और डिजिटल दोनों कार्यस्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करना और कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार लाना है। इस वर्ष भौतिक स्वच्छता के साथ डिजिटल स्वच्छता और अभिलेख प्रबंधन को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के सदस्य सचिव पंकज जैन कल मुख्य सचिव वी श्रीनिवास से मुलाकात की। इस दौरान आयोग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। श्री जैन ने आयोग की ओर से भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा संघों के साथ हुई बैठकों की जानकारी दी। बैठक में आयोग के सामने महत्वपूर्ण विषयों पर राज्य का दृष्टिकोण साझा किया गया। बैठक में एचसीएम रीपा की महानिदेशक श्रेया गुहा भी उपस्थित रही। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में आज से विभागीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार दो दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाकर जल सुरक्षित भारत और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। सम्मेलन में जल अवसंरचना परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन, वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण में जन भागीदारी जैसे विषयों पर विचार विमर्श होगा। साथ ही पेयजल स्रोतों की स्थिरता तथा जल जीवन मिशन 2 के तहत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव पर चर्चा होगी। इस दौरान राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और वरिष्ठ अधिकारी अपने अनुभव और बेहतर कार्यप्रणालियां साझा करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 309 नगर निकाय चुनाव के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की आज जांच की जाएगी। निर्वाचन विभाग के अनुसार 10,245 वार्डों के लिए करीब 21,000 से अधिक प्रत्याशियों ने लगभग 26,500 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 3 सितंबर तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद चुनाव मैदान में प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और 4 सितंबर को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। नामांकन के अंतिम दिन कल विभिन्न नगर निकायों में प्रत्याशियों और उनके समर्थकों में खासा उत्साह देखा गया। टिकट वितरण को लेकर कुछ स्थानों पर गतिरोध भी सामने आया। निकाय चुनाव के लिए 9 और 11 सितंबर को दो चरणों में वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 14 सितंबर को होगी। जयपुर में आगामी त्योहारों और नगर निकाय चुनाव को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा और यातायात के पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी के दौरान शहर में विशेष यातायात व्यवस्था लागू की जाएगी। उन्होंने बताया कि 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के साथ नगर निकाय चुनाव की मतगणना भी होगी। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा।
2: सबसे पहले जन्माष्टमी 4 तारीख की है। जन्माष्टमी के लिए यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था का पूर्ण प्रबंध किया गया है और इसके लिए हम जो यातायात जिन जिन मार्गो पे रूट डायवर्ट करेंगे उसकी पूर्ण सूचना सभी को समाचार पत्रों के माध्यम से आमजन को दी जाएगी। अब 14 तारीख को गणेश चतुर्थी है और उसी दिन निकायों के चुनाव की मतगणना भी होनी है, परंतु गणेश चतुर्थी के अवसर के ऊपर जेएन मार्ग पे रूट डायवर्शन किया गया है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्थाओं के संबंध में भी पूरी व्यवस्था की जा रही है। आने वाले दौर के वहां और इलेक्शन के लिए अभी जो हमें पुलिस बल लगाएंगे उसके बारे में भी तैयारियां चल रही हैं और पूरी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
1: प्रदेश में कच्चे तेल का उत्पादन चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 80,000 बैरल प्रतिदिन करने की तैयारी है। खान और पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने कल सचिवालय में पेट्रोलियम और सीजीडी सेक्टर की प्रगति समीक्षा के दौरान ये जानकारी दी। श्रीमती अरोड़ा ने बताया कि फिलहाल प्रदेश में रोजाना करीब 52,000 बैरल कच्चे तेल का उत्पादन हो रहा है। उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न बेसिनों में नवीनतम तकनीक का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने

अधिकारियों को प्रदेश में उत्पादित कच्चे तेल का राजस्थान रिफाइनरी में ही परिशोधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में 60 नए सीएनजी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य है, जिनमें से 23 चालू हो चुके हैं। राजधानी जयपुर में मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। सीएमएचओ प्रथम डॉक्टर रवि सिंह शेखावत ने बताया कि

0: करके सर्वे भी कर रहे हैं और लोगों को समझाइश भी कर रहे हैं। इसके अलावा उचित मात्रा में दवाइयां एवं एंटीलारल एक्टिविटी के लिए जो अपने को केमिकल्स की आवश्यकता होती है वो सारी चीजें उपलब्ध है। बच्चे और गर्भवती महिलाएं बुजुर्ग तो ये लोग हैं, ये थोड़ा सा ध्यान दें इस चीज के लिए और अपने खान पीन का ध्यान रखें और चिकित्सा परामर्श लें यदि किसी तरह की कोई तकलीफ होती है।
1: दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। 39 वर्षीय मेसी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बयान जारी कर इस फैसले की जानकारी और पुष्टि की कि फुटबॉल इतिहास के सबसे गौरवशाली अंतर्राष्ट्रीय करियर के बाद अब वो अर्जेंटीना की जर्सी में नजर नहीं आएंगे। इसके साथ ही अर्जेंटीना के लिए मेसी के 20 वर्ष के करियर का अंत हो गया है। इस दौरान उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप, 2 कोपा अमरीका खिताब जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित 26वीं शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आज से देश भर में स्वच्छता पखवाड़ा शुरू किया जाएगा। प्रदेश में 309 नगर निकाय चुनाव के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी और राज्य में कच्चे तेल का उत्पादन चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 80,000 बैरल प्रतिदिन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। 9:10 और वक्त हो चला है सुगम संगीत का। सुगम संगीत के अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं चुनिंदा कलाकारों की गाई चुनिंदा भक्ति रचनाएं। शुरुआती रचना आप सुन रहे हैं भरत कुमार और साथी कलाकारों की आवाज में।

अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: यहाँ प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है।
1: हाँ।
0: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं।
1: हाँ।
0: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं,
0: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
4: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल।

0: याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
2: सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का आज के उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आज एनसीईआरटी के स्थापना दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं विमलेश आप सबका स्वागत करती हूँ। नमस्कार
0: श्रोताओं, नमस्कार। आइए सुनते हैं पिछले सप्ताह दिए गए विषयों पर एक स्लोगन, जिसे भेजा है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू जी ने लिखा है।
2: रेडियो वाला जमाना अलग था, आवाज से रिश्ते जुड़ते थे। अब फोन वाला जमाना है, फोटो से लाइक जुड़ते हैं। फोन छोटा है जरूर, पर दुनिया बड़ी दिखाता है। अगर इसे विवेक से इस्तेमाल करें तो परायों को भी अपना बना देता है।
0: तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचारों और संदेशों के लिए। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी। अगला संदेश हमें मिला है गांव ढाणी कुतुबपुर, जिला हांसी, हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना लिखते हैं।
2: जैसे कार्यक्रम ज्ञानवर्धन के साथ हमारी गौरवशाली विरासत और महान नायकों से परिचित कराने का सराहनीय प्रयास है, सादर धन्यवाद।
0: आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मार्मिक प्रेरक प्रसंग। तो विमलेश जी करते हैं शुरुआत और बात करते हैं एक वीर बालक की, जिसने देश की आजादी की लड़ाई में अपना अतुल्य योगदान दिया।
2: जी जी जी श्रोताओ, आज हम जिस आजादी की हवा में खुलकर सांस ले रहे हैं, उसकी कीमत सिर्फ बड़े क्रांतिकारियों ने ही नहीं बल्कि देश के नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी चुकाई है। आज हम आपके लिए ओडिशा के ढेंकानाल के एक ऐसे ही बहादुर बालक बाजी राउत की गाथा लेकर आए हैं, जिसकी बहादुरी के आगे कहते हैं कि मौत भी छोटी पड़ गई थी।
0: श्रोताओ, बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को नीलकंठपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। उनकी माँ बहुत ही कठिन परिस्थितियों में परिवार का पालन पोषण करती थी। बाजी नदी पर नाव चलाने का काम करते थे।
2: श्रोता मित्रों, बात है 11 अक्टूबर 1938 की। ढेंकानाल में अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन जोरों पर था। माहौल ये था कि क्या बड़े, क्या जवान, क्या बच्चे, सभी बड़ी सक्रियता से भाग ले रहे थे। स्थानीय प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। उनका एक ही लक्ष्य था, भारत की आजादी।

0: सेना को जब इन गतिविधियों की भनक लगी तो वो पूरे दल बल के साथ वहां पहुंचे।
1: उन्होंने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू की जिसमें कई लोग मारे गए।
0: जी,
1: वहां की मिट्टी शहीदों के रक्त से लाल हो गई। किसी को भी नहीं बख्शा गया और आंदोलन का क्रूरता पूर्वक दमन कर दिया गया। ये समाचार जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गया
0: और दूर दराज के गांवों से भी ग्रामीण आने लगे। भीड़ बढ़ने लगी, नारे लग रहे थे। अंग्रेज सिपाही निर्दोष काम वालों पर गोलियां चलाने के बाद वहां से भागने की फिराक में थे, लेकिन उन्हें अपनी छावनी तक सुरक्षित पहुंचने के लिए ब्राह्मणी नदी पार करनी थी। वे नदी के घाट की ओर चल दिए।
1: नदी के घाट पर 12 साल का एक बच्चा बाजी राउत अपनी छोटी सी नाव की रखवाली कर रहा था।
0: जी,
1: वह प्रजामंडल का सदस्य था। उसे प्रजामंडल द्वारा सख्त निर्देश मिला था कि किसी भी अंग्रेज को नदी पार करने में कोई सहायता ना दें।
0: जी,
1: रात का समय था और भारी वर्षा हो रही थी।
0: अंधेरी रात और मूसलाधार वर्षा के बीच अंग्रेजों की फौज वहां आ पहुंची। मेजर ने चिल्लाकर बाजी को हुक्म दिया,
1: हे लड़के, अपनी नाव निकाल और हमें नदी के उस पार ले चल।
0: बाजी की जगह कोई और होता तो बंदूक देखकर डर जाता, लेकिन उस बच्चे की आंखों में घृणा और क्रोध के मानो अंगारे दहक रहे थे। उसने दो टूक जवाब दिया,
1: तुमने मेरे गांव वालों का खून बहाया है, मैं तुम्हें अपनी नाव छूने तक नहीं दूंगा।
0: अंग्रेज हैरान थे कि एक छोटे से बच्चे में इतनी हिम्मत कहां से आ गई। मेजर ने बंदूक तानकर धमकाया, लेकिन बालक बाजी टस से मस नहीं हुआ। जब बाजी ने झुकने और उनकी बात मानने से साफ मना कर दिया तो एक अंग्रेज सिपाही ने अपनी बंदूक की बट से उसके सिर पर जोर से वार किया।
1: बाजी का सिर फट गया, खून की धार बह निकली, लेकिन वो एक इंच भी पीछे नहीं हटा। उसने अपनी आखिरी सांस तक चिल्ला चिल्ला कर गांव वालों को सावधान करना शुरू किया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के लोग नदी की ओर आने लगे।
0: बौखलाए अंग्रेजों ने उस 12 साल के मासूम के सीने में संगीनें उतार दी और गोलियों से उसे छलनी कर दिया। बाजी राउत शहीद हो गए, लेकिन उस रात अंग्रेजों को नदी पार करने के लिए नाव नहीं मिली। उन्हें जान बचाने के लिए तैर कर भागना पड़ा।
1: जी हाँ श्रोताओ, शहीद भगत सिंह 23 साल के थे, खुदीराम बोस 18 साल के थे, लेकिन बाजी राउत सिर्फ 12 साल के थे। वो भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान सबसे कम उम्र के शहीद माने जाते हैं।
0: साथियों, आज के समय में हम 12 साल के बच्चों को छोटा और नादान समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बच्चे में असीमित क्षमता होती है। उस उम्र में इस बच्चे ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे दी थी। आज उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम भारत के सभी शहीदों को श्रद्धा से स्मरण करते हुए नमन करते हैं।
1: जी हाँ, उमंग कार्यक्रम की ओर से उन सभी शहीदों को हमारा नमन। श्रोताओ, आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाइए। आपको वहाँ कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
1: तो श्रोताओ, अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न, नोट कर लीजिए। हमारा प्रश्न है, बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहाँ हुआ था?
1: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं कार्यक्रम माई नेम।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बड़े मनोरंजक तरीके से एक मक्खी के बारे में बताता है जो अपना नाम ही भूल जाती है। वो अलग अलग पशु पक्षियों के पास जाती है और अपना नाम पूछती है। अंत में उसे अपने नाम का पता चल जाता है, लेकिन कैसे, आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में।
2: Once there was a little fly. One day he could not remember his name. He tried and tried to remember it, but it was of no use. He had forgotten his name. He asked an ant.
3: Ant, do you know my name? I don't know. You may ask the tree I climb.
4: Dear tree, do you know my name?
5: I don't know. You may ask the cow sleeping in my shade.
2: The fly went near the cow and asked,
4: Dear cow, do you know my name?

0: What do you hear? Can you recognize the sounds? Can you make these sounds? Note to the teacher. Help children find the meanings of their names as it is related to their identity.
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम माई नेम।
2: उस रात ऑफिस से निकलने में तुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे, मुझे समझने में 1 सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
3: थकान या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग।
4: ये कार्यक्रम 20वीं सदी के महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और अंतरिक्ष भौतिकी के क्षेत्र में उनके महान योगदानों का उल्लेख करता है और साथ ही साथ दिव्यांगता से उनके जीवन पर्यंत संघर्ष की भी चर्चा करते हुए संदेश देता है कि दिव्यांगता शरीर से कहीं अधिक मन में होती है।
5: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की प्रतीत।
6: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
5: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
6: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
5: ये भी एक विचित्र संयोग ही था।

0: कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
1: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
0: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
1: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
2: Stephen, happy birthday to you!
3: Happy birthday to you, Stephen! How are you?
4: Happy birthday, Stephen! Thank you,
5: congratulations!
4: Thank you, John. Thank you so very much. Hi, Martin. How are you?
2: Oh, fine.
4: Thanks for coming in. Please come in.
3: Oh, yes, sure. Yes. Why not?
2: Come. Yeah. Hey.
3: Come.
2: John, please come here.
3: Oh, sure.

0: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
1: Oh!

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं नहीं,
2: देखिए आप धीरे रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओह।

लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई

0: उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। '85 में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे, लेकिन

0: बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
1: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
2: प्रोफेसर डेनिस
3: जी,
2: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
3: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
2: ओह।
3: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
2: ये तो बड़ी दिलचस्प बात है, वाह अति सुंदर। और शायद धीरे धीरे इसी भाषा और शब्द संग्रह ने एक धारा प्रवाह वैज्ञानिक भाषा का रूप ले लिया होगा।
3: बिल्कुल ठीक। और फिर उन शब्दों की ध्वनि को मानवीय आवाज में रिकॉर्ड करके हमने स्पीच सिंथेसाइजर में संग्रहित कर लिया।
2: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
3: जी।
2: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
3: तो लीजिए सुनिए।
4: टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड द आउटलुक फॉर द डिसेबल्ड। पीपल लाइक मी कैन नाउ मूव अराउंड इंडिपेंडेंटली एंड दे कैन कम्युनिकेट।
1: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
0: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
1: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
0: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
5: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
1: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
0: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
6: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं, जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
1: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
7: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।

0: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
1: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग ना होने दें।
2: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
0: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
2: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए दीजिए आज्ञा।
3: नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10 बजे हैं और वक्त हो चला है विविध भारती के कार्यक्रमों का।

श्रोताओं, प्रत्येक सोमवार सेहतनामा कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं सेहत से जुड़ी समस्याएं और उनके निदान पर विशेषज्ञों से बातचीत। बालों की सुंदरता और इसके लचीलेपन को लेकर हम बड़े सजग रहते हैं और हर तरह से इनकी सुंदरता के लिए प्रयास भी करते रहते हैं, फिर भी बालों को लेकर एक समय के बाद कुछ न कुछ समस्याएं देखने में आ ही जाती हैं। पिछले हफ्ते आज ही के दिन बालों की समस्या और देखभाल इस विषय को लेकर डॉक्टर रचिता धूरत से यूनुस खान की बातचीत हमने आपको सुनवाई थी। आज इसी बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाते हैं।

0: अच्छा मुझे ये बताइए कि कई पुरुषों में जो बालों की समस्या वो दो तरह से होती है, एक तो ये कि बाल पीछे की तरफ सरकते चले जाते हैं और ये माथा जो है वो बड़ा होता चला जाता है, दूसरा जिसको हम हिंदी में चांद निकलना कहते हैं, बैल्डनेस आती है बीच के हिस्से में, इन दोनों को रोका जा सकता है, इनका कोई उपाय है या ये जेनेटिक है और ये खानदानी चीजें हैं तो इसको टाला नहीं जा सकता?
1: एक भ्रम है लोगों में,
0: अच्छा
1: कि जेनेटिक है तो ट्रीटमेंट नहीं है, ये भ्रम। अगर मैं कहूं कि डायबिटीज भी जेनेटिक है तो ट्रीटमेंट मत लीजिए, हो सकता
0: है, नहीं हो सकता है, मुश्किल हो जाएगी।
1: तो जरूरी समझना है कि जेनेटिक बीमारियां जो होती है साइंस ने इतना रिसर्च कर लिया कि उसमें ट्रीटमेंट लाई हुई है।
0: ओके।
1: और हमने ऐसे ट्रीटमेंट देखे हुए हैं कि जिसको रिस्पांस काफी तरह से होता है, सिर्फ ट्रीटमेंट का तरीका अलग अलग है, स्टेज वन स्टेज टू अलग अलग स्टेजेस में हमको ट्रीटमेंट देनी होती है। तो चांद निकला है, शायद मेडिकल लाइन इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं हो, उससे फर्क नहीं गिरेगा क्योंकि बहुत बड़ा चांद है,
0: बहुत बड़ा चांद है सिर पर बहुत बड़ा
1: चांद तो उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट है।
0: जी जी जी ओके।
1: उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट है,
0: उसकी भी बात हम आगे चलकर करने वाले हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो क्या है, उसकी बात आगे करते हैं। तो ये टाला जा सकता है, मतलब ये कि अगर कोई खानदानी मामला भी है, जेनेटिक मामला भी है, तो भी डॉक्टर के पास जाए
1: या क्योंकि ट्रीटमेंट है।

0: रिसर्च ने ट्रीटमेंट निकाली है उस पर
1: जी,
0: आपको लेना या नहीं लेना आपका डिसीजन है।
1: राइट बिल्कुल। अच्छा ये जो चारों तरफ बड़े सजीले विज्ञापन आते हैं जिसमें लहराते हुए बाल नजर आते हैं और ये शैम्पू लगाने से बाल चमकीले और वो कमाल कमाल के वर्ड्स का इस्तेमाल है जो हम यहाँ नहीं दोहराना
0: चाहते। तभी तो उससे विज्ञापन करते हैं। विज्ञापन का काम ही है कि आप देख के थक हो जाओ।
1: हाँ, कि ये रिचनेस आती है फलाना, अलग अलग टेक्निकल चीजें बताई जाती हैं कि ये विटामिन से भरपूर है और ये दादी नानी के नुस्खों से भरपूर है। क्या कोई शैम्पू सचमुच में बालों का भला करता है या बिना सोचे समझे शैम्पू का इस्तेमाल करने का मतलब है कि उल्टा असर हो जाएगा?
0: मैं उल्टा नहीं बता सकूंगी कि उल्टा असर होगा। शैम्पू बहुत माइल्ड तरीके से स्लोली काम करता है, इट्स अ सपोर्टिव। जैसे कुछ शैम्पू जो है कि हमारे स्काल्प का इकोसिस्टम होता है, हमारे स्काल्प पर कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे स्काल्प को हेल्दी बनाते हैं और हेयर को हेल्दी बनाते हैं। जब गंजापन आता है तो इसका जो ये है सपोर्टिवनेस या इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाती है। तो कुछ शैम्पू ये है इंग्रेडिएंट्स जो शैम्पू में होते हैं ये बालों के इकोसिस्टम को रेस्टोर करने का काम करते हैं स्लोली। पर कुछ शैम्पू ऐसे, अब कोई हार्श शैम्पू आजकल तो नहीं लगाता है, अच्छे वाले शैम्पू ही लगाते हैं, लेकिन वो शैम्पू में ये इकोसिस्टम को रेस्टोर करने की कैपेसिटी है या नहीं है आपको नहीं पता चलेगा।
1: जी जी,
0: आपको डॉक्टर ही बता सकेगा कि ये शैम्पू में ये सिस्टम है, आप ये लगाइए। नॉर्मल लोगों को देखना है कि आपका हार्श शैम्पू नहीं लगा। हार्श आप कैसे समझोगे? तो जब झाग ज्यादा होता है, हमारी मेंटेलिटी क्या है,
1: झाग ज्यादा है तो अच्छा है,
0: अच्छा है, पर वो ज्यादा झाग वाला शैम्पू आपका स्किन का हेयर का मॉइस्चर निकाल लेता है पूरा।
1: ओहो, जो हर धारणा जो है लोकप्रिय धारणा उसमें आज आप भयानक तोड़फोड़ कर रही हैं। जी ये क्योंकि हमें तो लगा कि वाह वाह क्या झाग वाला शैम्पू है।
0: एडवर्टाइज देखोगे तो झाग वाला शैम्पू से भरपूर ऐसे और लोगों को लगता है कि लेना चाहिए।
1: जी
0: तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए, जितना ज्यादा झाग उतना ज्यादा तुम्हारा मॉइस्चर
1: चला जाएगा। जी ये बहुत महत्वपूर्ण है। शैम्पू की फ्रीक्वेंसी क्या हो और उसका सही तरीका क्या है,
0: उसके लिए आपकी लाइफस्टाइल समझना जरूरी है। अगर आप रोज जिम जा रहे हो या पसीना आ रहा है तो आपको रोज करना चाहिए, करने के टाइम पर आपको ध्यान देना है कि वो शैम्पू माइल्ड तरीके का हो।
1: ये ऐसा झाग वाला नहीं हो,
0: झाग वाला नहीं चाहिए। अदरवाइज महिलाओं में 2 से 3 बार, पुरुषों में डेली या 3 से 4 बार। अभी जिसको स्केलिंग है, डैंड्रफ है, उसके लिए आप फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ानी पड़ती है, अलग टाइप का शैम्पू लेना होता है। और जब भी आप शैम्पू करें और आपके बाल ड्राई होते हैं तो पहले दिन या 1 घंटा पहले आपको ऑयल लगाना जरूरी है, कोकोनट ऑयल से। क्या होता है, कोकोनट ऑयल का एक कैपेसिटी है जो हेयर के अंदर के सेल तक जाके रुकता है। तो इससे उसमें से का मॉइस्चर है ना वो शैम्पू के टाइम पर नहीं निकलता जल्दी से।
1: ओके
0: तो ड्राई नहीं होते हैं,
1: बहुत महत्वपूर्ण बात है।
0: और फिर भी आपको लगता है कि ड्राई हो रहे हैं तो कंडीशनर लगाना चाहिए। भले ही आप 2 मिनट के लगाओ, 5 मिनट के लगाओ, लेकिन कंडीशनर लगाइए। पहले वाला कंडीशनर मतलब तुम्हारा ऑयल जो कोकोनट ऑयल है, बाद में वाला कंडीशनर मतलब अभी मार्केट में अच्छे वाले कंडीशनर आते हैं। इसके बावजूद भी आपके बहुत ड्राई है, लस्टरलेस है, तो आपको देखना चाहिए, उसको बोलते हैं हेयर शार्प डिसऑर्डर्स, मतलब आपकी शार्प की क्वालिटी कुछ खराब हो रही है। वो भी जेनेटिक होता है और नॉन जेनेटिक भी होता है।
1: ओके
0: तो वो एक एनालिसिस करके लेना जरूरी होता है।
1: जी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है। यहाँ हम एक गाने के लिए रुकते हैं।

जानते हैं, वो जानते हैं तुम्हारी बातें। तुम कह लो शर्म इसको, हम तो अदा

0: मजेदार ये है कि हम बातें बालों की कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और गाने भी जो है वो बालों से जुड़े सुनवाते चले जा रहे हैं। आपने कहा कि शैम्पू की फ्रीक्वेंसी की सारी बातें हो गई कि किस तरह से शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल करना चाहिए। आपने बड़ी सूझबूझ के साथ नारियल के तेल का जिक्र किया। आज के लड़के या कुछ हद तक लड़कियां भी बालों में तेल लगाने से परहेज करते हैं क्योंकि रोज बाहर जाना है वो गंदा दिखेगा, बाल चिपचिपे दिखेंगे। ये तेल लगाना कितना जरूरी है?
1: तो मैं कहूंगी तेल लगा के बाहर नहीं जाइए, रात को तेल लगाइए। सुबह आपको शैम्पू करना है तो जो दिन शैम्पू करना है उसके पहले रात को तेल लगा लीजिए।
0: जी,
1: तेल लगाने का और एक फायदा होता है, ये रिसर्च बोलती है। और ये जब मैं सोचती हूँ कि हमारे टाइम पर हम लोग तेल लगा के शैम्पू करते थे बचपन में,
0: बिल्कुल
1: एक क्या बोलते हैं माहौल रहता था, रूल था कि मम्मी आती थी अच्छे से तेल चंपी करती थी और दूसरे दिन हम शैम्पू करते थे। रिसर्च ने बताया है कि कुछ तेल ऐसे हैं जिसकी इकोसिस्टम मेंटेन होती है, जो मैंने बोला है इकोसिस्टम,
0: हाँ जी,
1: वो तेल से मेंटेन रहती है।
0: तो देखिए कि ये हमारी पुरानी परंपरा कितनी साइंटिफिक,
1: तभी साइंटिफिक नॉलेज नहीं था। तो अभी क्या हुआ कि पेरेंट्स वो टाइम के चले गए, अभी मॉडर्न पेरेंट्स आए हैं तो उनको ये साइंटिफिक नॉलेज नहीं है।
0: जी,
1: मैं तो कहती हूँ तेल लगाना जरूरी है,
0: बहुत जरूरी है
1: इकोसिस्टम के हिसाब से। अगर आपको बालों के इकोसिस्टम मेंटेन करने, इस सिंपल एक एग्जांपल देते हो, आप बालों को मॉइस्चराइजर, हाथों को मॉइस्चराइजर लगाते हो, क्यों लगाते हो?
0: रूखे हो जाते हैं।
1: स्काल्प को हम मॉइस्चराइजर क्यों नहीं लगाते? क्योंकि सीबम रहता है अपने बालों में, एक सीबम जो बालों में बहुत ज्यादा रहता है, सीबेसिस ग्लैंड बहुत रहता है, तो मॉइस्चर की जरूरत नहीं पड़ती इसलिए। लेकिन ओवर पीरियड जब हम धूप में जाते हैं, हमारी जब उम्र होती है तो इसका प्रमाण भी सीबम सिक्रेशन का कम हो जाता है। तो हम रोज नहीं लगा रहे ऑयल, पर बॉडी में हम रोज लगाते हैं स्नान करने के बाद, ड्राई होते हैं, तो कभी कभी सर के बालों को, स्किन को तेल लगाना जरूरी है।
0: ये फ्रीक्वेंसी क्या हो, इसका भी कंफ्यूजन दूर होना चाहिए।
1: हफ्ते में 2 से 3 बार।
0: ओ,
1: आप शैम्पू तो हफ्ते में 2 से 3 बार कर ही रहे हो। अब बहुत चिपचिप नहीं, थोड़ा सा, जैसे आप मॉइस्चराइजर बॉडी को लगा रहे वैसा समझ के लगाइए तेल।
0: जो लोग नहीं लगाते हैं बालों में तेल, चाहे वो अपनी मान्यता की वजह से या फैशन की वजह से या लापरवाही की वजह से, उनके बालों पर क्या असर पड़ता है?
1: देखो, सिर्फ बालों से नहीं, ये बालों का जो इकोसिस्टम सपोर्टिव सिस्टम है। आपका मेन कॉज क्या है? अगर हेयर फॉल का मेन कॉज अलग है, अगर मैंने उसको नहीं ठीक

0: किया तो सिर्फ तेल लगाने से काम नहीं होने वाला
1: जी, वो एक पूरा स्केल पूरा
0: एक होलिस्टिक अप्रोच करना चाहिए
1: जी बिल्कुल।
0: दूसरा मैं कह रही थी कि जो आपने देखेंगे ना जो तेल लगाते हैं रेगुलर तेल लगाते हैं उनका शायद बाल झड़ने का प्रमाण जल्दी ठीक हो जाता है
1: जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको फिर बोल दीजिए, बहुत सारे लोगों को समझ में आए।
0: जो बालों में तेल लगाते हैं, बालों में मतलब स्किन पर, जब बालों में हम तेल लगाते हैं वो कंडीशनिंग करके होता है, सर के स्किन को तेल लगाते हैं वो इकोसिस्टम इम्प्रूव करने का काम करता है,
1: उनके बाल सही सलामत रहते हैं,
0: रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं
1: जी। बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पर एक गाना आएगा और वो सावन की घटा फिल्म का गाना है, जुल्फों को हटा दे चेहरे से थोड़ा सा उजाला होने दे, सुनते हैं ये गाना।

0: इतने जुल्फों के गाने हम बजा रहे हैं और इतनी इम्पोर्टेंट बातें कर रहे हैं, आपने कई ऐसी पॉपुलर मान्यताओं में तोड़फोड़ कर दी जिनको हम मानते थे कि जैसे झाग वाला शैंपू, तेल ना लगाना, ये तमाम बातों को लेकर बड़ी उपयोगी जानकारी आपने दी। और बालों को लेकर जो फैशन है, मतलब तरह तरह के कलर्स लगाना, आजकल तो लोग पर्पल और नीला और हरा क्या क्या रंग बालों के कर लेते, वो कितना नुकसानदेह, अब इस पर आ जाते हैं। पहले
1: आपका बैंक बैलेंस है और आपको खर्चा करना है,
0: हाँ,
1: कितना खर्चा करना चाहते हो ताकि आपका बैंक बैलेंस थोड़ा नेगेटिव में जाए, ये आपको डिसाइड करना है।
0: बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है ये।
1: मतलब ये जो

0: कलरिंग करते हैं बहुत जो डार्क कलर्स अलग तरीका करते हैं।
1: पहले ये नहीं होता था लेकिन आजकल बहुत ही वो जो बम्बैया शब्द है अतरंगी कलर्स,
0: ये बढ़िया आपका फैशन है
1: जी,
0: पर ये फैशन आएगा आपको नुकसान के साथ आएगा।
1: राइट,
0: आपको चलने वाला है?
1: नहीं
0: नहीं, आप बोल रहे नहीं, पर किसी को चलने वाला भी हो सकता है
1: जी।
0: आप सोचे कि नुकसान के साथ आने वाला है तो ये बैगेज के साथ आएगा, आप तैयार है उसके लिए, गो अहेड।
1: बहुत सही बात है, मतलब ये जो लोग तरह तरह के बालों में कलर्स लगाते हैं चाहे वो गोल्डन कलर्स हो।
0: हाँ, लेकिन क्या होता है इन लोगों को बहुत ऐसे एक मन में इच्छा होती है, बहुत सारे
1: ट्रेंड के साथ चलना,
0: ट्रेंड के साथ चलना, तो मैं ट्रेंड के साथ नहीं चलूंगी तो कैसा लगेगा, मैं करके देखती हूँ। ठीक है, एक बार करके देखो, दो बार करके देखो, आप डिसाइड करो कि आपको डैमेज कितना हो रहा है, देन यू टेक अ कॉल कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हम ऐसे जनरलाइज मैं स्टेटमेंट नहीं कर सकते कि नहीं करो,
1: लेकिन करना है, देखना है कि कितना नुकसान हो रहा है।
0: हो रहा है नुकसान, आप वो नुकसान सहन करने को तैयार है, ठीक है, फिर आगे बढ़िए
1: जी। और एक उम्र के बाद, आजकल तो एक उम्र के पहले भी बाल सफेद हो जाते हैं और लोगों को जरूरत पड़ती है बाल काले करने की, और उसमें केमिकल कलर्स का इस्तेमाल कुछ लोग करते हैं जो बाजार में उपलब्ध होते हैं या आप जाके प्रोफेशनल से लगवाते हैं, और दूसरा तरीका है मेहंदी लगाने का। इन दोनों मुद्दों पर अपनी बात रखिए।
0: जो ग्रे होते हैं जिनके ग्रेइंग जो शुरू होती है 20 साल के पहले, उसको जेनेटिक बैकग्राउंड है
1: जी, उसको रोक सकते हैं,
0: कम कर सकते हैं, कभी कभी रिवर्स भी हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ तरह के लोशंस है मार्केट में जिसके रिजल्ट्स हमने देखे हुए हैं, पर इसका 100% नहीं उपयोग होता है, 40-50% इम्प्रूवमेंट होता है लोगों में। और जो उम्र के हिसाब से ग्रे बाल होते हैं उसको रिवर्स करने का अभी साइंस ने कोई तोड़ नहीं डाला है उसमें, तो उसको आपको कलर करना होता है। अभी कलर कौन सा करें, कलर में बहुत सारे वैरायटीज है, लेकिन एक स्टैंडर्ड कंपनी का जिससे ड्राई नहीं होते हैं और जिसकी एलर्जी नहीं है, कुछ लोगों को डाई की एलर्जी भी होती है तो उनको वो कलर रेंज सूट होता है, फिर बगैर वो इनग्रे पीपीडी फ्री वाला कलर लेना पड़ता है।
1: आजकल वो एक सेंटेंस बहुत चलता है ना, अमोनिया वाला कलर, और अमोनिया
0: से थोड़ा डैमेज कम हो जाता है
1: जी,
0: क्योंकि ये तो हेयर डाई है, अमोनिया रहेगा तो थोड़े ड्राई होते हैं बाल, डैमेज मतलब ड्राई होते हैं, तो अमोनिया फ्री से ड्राइनेस कम हो जाता है। जैसे ही आप वैसे ही जैसे आपका कलर डाई भी लाइट कलर का होगा, गोल्डन होगा, तो ड्राई बहुत ज्यादा होता है। मेहंदी लोग इसके लिए लगाते हैं कि वो ये कलर डाई से डरते हैं, पर अगर आप देखेंगे कलर डाई इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, साइड इफेक्ट्स वाले होने वाले प्रमाण बहुत कम है।
1: बिल्कुल,
0: पर मेहंदी लगाने से ड्राइनेस काफी ज्यादा आता है बालों में,
1: तो इसमें एक फैसला करना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सी चीज ठीक है।
0: अमोनिया फ्री अच्छे कंपनी का डाई
1: जी,
0: उसके साथ आपको कंडीशनर करिए तो आपके ड्राई नहीं होंगे बाल। तो ये जो डाई करना है कलर डाई, अगर आप ग्रे के लिए करना चाहते हैं तो नुकसान नहीं होता है, हम सभी लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ, पर आप बहुत अलग तरह के मतलब रेड वाले कलर करोगे तो आपके बाल ड्राई होते रहेंगे, फिर वो ड्राई बालों को ठीक करने के लिए आप दूसरी प्रोसेस करोगे, तीसरी प्रोसेस करेंगे, तो ये तो विशेष साइकिल चालू रहेगी।
1: बिल्कुल, तो इसलिए समझदारी से इस चीजों का इस्तेमाल करना जरूरी है। यहाँ पर एक गाने की बारी है।

हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ए शमा फिरती हो कहां, महफिल महफिल ए

0: ये जो हेयर कलर्स है, क्या ये कोई बड़ा नुकसान अचानक कर सकते हैं कि बालों का एकदम बड़ा पैच अचानक गायब हो गया?
1: अगर आपका कलर लो क्वालिटी का है, उसमें इरिटेशन बहुत ज्यादा है, रिएक्शन हो गई आपको, यस, कुछ लोगों को रिएक्शन होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ये रिएक्शन वाली बात हुई तो डेफिनेटली यस,
0: तो इसको लेकर सावधानी की जरूरत है। एक बहुत बड़ी और कॉमन समस्या हर उम्र के लोगों में है और वो डैंड्रफ की समस्या है, जिसको लेकर भी विज्ञापन इंडस्ट्री बहुत सक्रिय है। डैंड्रफ से जुड़ी भ्रांतियां दूर कीजिए।
1: डैंड्रफ के साथ बहुत लोगों को एक स्टिकी टाइप का डैंड्रफ होता है, किसी लोगों को फ्लेकी टाइप का डैंड्रफ होता
0: रहता है,
1: गिरता रहता है। लोगों में धारणा ऐसी है कि डैंड्रफ हुआ तो मुंह से हुए, ये गलत है, ये गलत है। वो डैंड्रफ फेस पर आता है और फेस में है, वो अलग है। मुंह से का पैथोजेनेसिस बिल्कुल अलग है और डैंड्रफ का अलग है
0: जी।
1: डैंड्रफ के प्रकार जो होते हैं उसमें आपको समझना चाहिए माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर है, क्योंकि उसके हिसाब से ट्रीटमेंट अलग होती है। यहां मैं सावधान करना चाहूंगी कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट मतलब हम स्कोप के नीचे देखते हैं, बहुत सारे आधे लोगों को स्कैल सोरेसिस होता है। ये स्कैल सोरेसिस अलग बीमारी है
0: जी।
1: जैसे हमारे बॉडी में सोरेसिस है, वैसे एक स्कैल सोरेसिस एक प्रकार है,
0: उसके बारे में भी बता दीजिए।
1: तो ये स्कैल सोरेसिस हमको टेस्ट करने मतलब ट्राइकोस्कोप से समझ में आती है कि स्कैल सोरेसिस है या डैंड्रफ है। जो जो लोगों को डैंड्रफ करके डायग्नोस हुआ, 50% लोगों में स्कैल सोरेसिस निकला, इसका हमने रिसर्च किया हुआ है। तो स्कैल सोरेसिस की ट्रीटमेंट अलग है, हालांकि उसको क्योर नहीं है, बट हम बिल्कुल कंट्रोल रख सकते हैं दवा से। दवा भी बहुत सिंपल है, बहुत हार्श दवा नहीं है, बट रिकरेंस इज वेरी कॉमन। तो लोग फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, तो उसको कुछ चीजें ऐसी होती है कि रिकरेंट होती रहती है। कंट्रोल करना हमारे, जैसे हम डायबिटीज की दवा लेते हैं, ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं, हम ऐसे बोलते हैं क्या कि मुझे खाना नहीं है, कितने सालों तक मैं खाऊं?
0: ऐसा तो कभी नहीं हो सकता,
1: ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो कुछ चीजों को हम एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए
0: जी। कई शैम्पूज इस तरह के विज्ञापन के साथ आते हैं कि वो डैंड्रफ के दुश्मन है, क्या ऐसा होता है?
1: शैम्पू डैंड्रफ के दुश्मन है कि शैम्पू डैंड्रफ के लिए है?
0: बताइए कि शैम्पू डैंड्रफ हटाते हैं या नहीं हटाते हैं?
1: नहीं, कुछ शैम्पू डैंड्रफ हटाते हैं, और बहुत बार कैसे होता है कि सेम तरीके का शैम्पू जब आप इस्तेमाल कर रहे हो और कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद वो शैम्पू काम करना बंद हो जाता है।
0: अच्छा,
1: आपको लगता है कि अब ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो इंग्रेडिएंट को कभी कभी ये मलेशिया फरफर करके एक फंगा होता है, वो काम नहीं करते, तो दूसरा इंग्रेडिएंट हुआ शैम्पू आप ले सकते हो। पर भी आपके नहीं जा रहे तो आपको देखना है कि आपका स्कैल्प सोरेसिस नहीं है ना। आपको नहीं पता चलेगा, दोनों स्कैल्प सोरेसिस और डैंड्रफ बहुत दिखने में सेम दिखते हैं। इससे अच्छा मैं मैसेज देना चाहूंगी कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू आपने ट्राई किया
0: जी,
1: आपको फर्क नहीं हो रहा है, तो आपको स्कैल्प सोरेसिस है या नहीं है इसकी जान लीजिए।
0: ओके, उसको आपको टेस्ट करवा लेना।
1: हाँ
0: है जी, ये एक थंब रूल होगा।
1: थंब रूल मतलब लोग ऐसे ही बहुत सालों तक एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करते हैं, एक छोड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और वह परेशान हो जाते हैं।
0: हाँ हाँ,
1: तो आपको देखना है कि आपको स्कैल्प सोरेसिस है कि नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये मैसेज जाना चाहिए,
0: ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और अब मुझे लगता है एक गाना करते हैं और उसके बाद हम हेयर ट्रांसप्लांट की बात करेंगे, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है,
1: बहुत बड़ा मुद्दा है।
0: यहाँ पिया का घर फिल्म का गाना आ रहा है, ये जुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है ना।

0: डॉक्टर, हमने ये इतनी सारी बातें की तो लोगों को ये समझ में आ गया कि क्या तरीका है बालों की देखभाल का, लेकिन कई बार ये होता है कि बाल तो चले ही गए और एक और बहुत ज्यादा चलन चारों तरफ है कि कोई एक व्यक्ति अपना ट्रांसप्लांट करवा के आता है और एकदम उसका रूप बदल जाता है और सब लोग उससे पूछने लगते हैं कि ये क्या किया, तो पता चला कि उसने ट्रांसप्लांट करवाए और बाल मतलब लुक जो है वो पुराना वाला आ गया। ये तरीका क्या जनरलाइज्ड सब लोगों के लिए कारगर है या ये कुछ कुछ लोगों पर काम करता है?
1: सब लोगों पर कारगर के लिए हमें जानना जरूरी है कि उसका अंडरलाइन कॉज क्या है।
0: जी,
1: अगर अंडरलाइन कॉज है एंड्रोजेंडिक एलोपेशिया या सिकेट्रिशियल एलोपेशिया बोलते हैं, उसमें हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है। अगर हेयर फॉल का कारण अलग है और आप नहीं

0: जानते हैं और हेड ट्रांसप्लांट करने से मतलब नहीं है। अभी सेफ्टी के इश्यू में अगर बात करें तो बहुत बड़ी मतलब हेड ट्रांसप्लांट ऐसी हो रहा है आजकल कि बहुत सेंटर पर टेक्नीशियंस हेड ट्रांसप्लांट करते हैं, टेक्नीशियंस एनेस्थीसिया देते हैं।
1: ओहो हो,
0: तो ये गलत बात हो जाती है क्योंकि कॉम्प्लिकेशन जो भी ये एक प्रोसीजर है जो लोकल में होती है। जैसे आपके यहाँ हम सूचर करते हैं, समझो आप एक सर्जन से सूचर करवाए हैं या कंपाउंडर से सूचर करना पसंद करोगे?
1: सीधी सी बात है।
0: लोकल एनेस्थीसिया देते हो, डॉक्टर को सब मालूम है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ, रिएक्शन हुआ, कैसे मैनेज करना है, कितने अमाउंट में लोकल एनेस्थीसिया देना जरूरी है, अंडरलाइन पेशेंट का हिस्ट्री क्या है, पेशेंट स्मोकर है या कोई कन्वर्शन की मेडिसिन ले रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, ये सब कौन कर सकता है? डॉक्टर ही कर सकता है।
1: यस।
0: सो अगर इसमें उदाहरण मैं देना चाहूंगी तो अगर मैंने आपको एक चक्कू दिया जो आप मूर्तिकार है, और एक चक्कू मैंने छोटे बच्चे को दिया, चक्कू चक्कू ही है पर छोटा बच्चे के हाथ में बहुत डेंजरस है और आप मूर्तिकार है, आप एक अच्छी मूर्ति बना सकते हैं तो आपके हाथ में बहुत सेफ है।
1: Yes.
0: तो आपका सर आपके किसके हाथ में दे रहे हैं वो जानना जरूरी है,
1: बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
0: यस yes.
1: बिल्कुल। ये हेड ट्रांसप्लांट की प्रोसेस क्या है और ये कितना महंगा है?
0: ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है
1: जी,
0: क्योंकि ये वन टाइम एक ही दिन में होता है ट्रांसप्लांट। और प्रोसेस ये है कि आपके जो पीछे के बाल होते हैं, मतलब हमारे गर्दन के पीछे के साइड के ऊपर के जो बाल होते हैं वो जल्दी नहीं जाते हैं, मतलब थिन नहीं जल्दी होते हैं, तो वहां से निकाल के रिपोजिशनिंग, बेसिकली वहां से बहुत घने होते, वहां से कुछ प्रमाण से 2000-3000-4000 हेयर फॉलिकल्स, मैं हेयर नहीं बोल रही हूँ, हेयर फॉलिकल्स, एक फॉलिकल में शायद दो भी हेयर हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, वो हम जितना एरिया होगा वो हिसाब से गंजे एरिया पर डालते हैं। अभी डालने का तरीका और लगाने का तरीका बताती हूँ। लोकल एनेस्थीसिया में वो रूट्स निकालने पड़ते हैं, तो रूट्स के साथ हेयर होते हैं, साथ में छोटे हेयर होते हैं क्योंकि ट्रिम करना पड़ता है
1: जी।
0: तो रूट्स को हम जैसे हम झाड़ की सैम्पलिंग करते हैं वैसे रूट्स को निकाल के हम गंजेपन को जगह पर एक निक देते हैं, स्लिप देते हैं छोटी सी, और उसमें हम डिपॉजिट करते हैं ताकि बॉडी उसको रूट्स को लिए और हेयर उसमें से बाहर निकले, बट हेयर निकलने के टाइम रहता है 6 से 9 महीना
1: जी।
0: उसके बाद वहां से बाहर, और आप उसको कोम कर सकते हैं, शेप नॉर्मल, मतलब आपके ओरिजिनल
1: बालों की तरह हो जाते हैं,
0: बिल्कुल ओरिजिनल,
1: जैसे एक पौधे को यहाँ से हटा के
0: वहां लगा दिया
1: जी जी। और आपने कहा कि एक महंगी प्रोसेस है,
0: ये थोड़ी महंगी प्रोसेस होती है,
1: क्या ये फेल्योर भी हो सकती है?
0: फेल्योर रेट बहुत कम है
1: जी,
0: अगर अच्छे सर्जन ने किया तो फेल्योर रेट बहुत कम है
1: जी। यहाँ हम एक गाने के लिए रुकते हैं।

0: डॉक्टर, इतनी सारी बातें हमने की, इसमें ना महिलाओं की बातें हमने की, पुरुषों की बातें की, अलग अलग उम्र के लोगों की बातें की, बातें टीनेज से शुरू हुई, बच्चों में बालों की जो समस्याएं इन दिनों में आप देख रहे हैं वो क्या हैं और क्या उनके निदान और सावधानियां हैं?
1: आप अभी सही पकड़े हो। बच्चों में बहुत कॉमन हो रहे हैं बालों की समस्या
0: जी।
1: उनके रीजन अलग है, जो बड़ों में है वो रीजन नहीं है बच्चों में। फंगल इन्फेक्शन है बच्चों में, बच्चों में एलोपेशिया एरियाटा कॉमन हो रहा है। ये दो चीजें बहुत सारे हमने कॉमन देखे, और जनरली पैंडेमिक के बाद एलोपेशिया एरियाटा बहुत कॉमन हो गया बच्चों में, जो अभी बड़ों में कम दिखाई देता है लेकिन बच्चों में ज्यादा दिखाई देता है। और इसमें छोटे छोटे ऐसे पैचेस, राउंड राउंड पैचेस, बहुत सारे राउंड राउंड पैचेस आते हैं। बच्चे स्कूल में जाना टालते हैं क्योंकि उनके स्कूल मेट्स उनको चिढ़ाते हैं। आप कभी भी देखेंगे तो कैप लगाए हुआ कोई बच्चा दिखेगा तो एक तो फंगल इन्फेक्शन होगा उसको, या तो एलोपेशिया एरियाटा होगा।
0: ओके,
1: फंगल इन्फेक्शन के लिए कैप जो पहनते हैं, कोई कैप पहनता है वो कैप शेयर नहीं करना चाहिए, उनकी कोम्ब शेयर नहीं करना चाहिए, और तुरंत ट्रीटमेंट इसके लिए जरूरी है कि कुछ फंगल इन्फेक्शन जो स्काल्प में होते हैं उससे परमानेंट हेयर डैमेज हो जाते हैं। परमानेंट मतलब वहां कभी बाल नहीं आएंगे।
0: अरे बाप रे।
1: हाँ, तो उसके लिए वो केरियन कहा जाता है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट जरूरी है। और इसकी ट्रीटमेंट ऐसी नहीं कि एक दिन दस दिन, इसकी ट्रीटमेंट कभी कभी चार हफ्ते से छह हफ्ते तक भी चल सकती है। फंगल इन्फेक्शन जो होता है बालों के नीचे के हिस्से तक जाके बैठता है, तो उसको निकालने के लिए टाइम लगता है। और ये छह हफ्तों तक मेडिसिन लेनी होती है, तो उनके टॉवल्स अलग, कोम अलग, सोप अलग।
0: अच्छा, इतना सब करना पड़ता है।
1: इतना सब करना पड़ता है
0: जी।
1: एलोपेशिया एरियाटा, अभी एलोपेशिया एरियाटा की जो बात करते हैं, सब लोग घर का सुनते हैं, इन्फ्लुएंसर का सुनते हैं, कुछ अलग अलग अलग चीजें यूज करते हैं जो नॉन स्पेसिफिक है। इसमें टाइम बहुत निकल जाता है, कभी कभी बहुत साल भी निकल जाते हैं, और जब तक हमारे पास आते हैं उनके पास छह साल हो जाते हैं। ये पांच छह साल इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये टाइम पर जो स्टेम सेल्स होते हैं उनकी जो रीग्रोथ की पोटेंशियल है वो कम होती जाती है।
0: जी जी,
1: जितना आपने टाइम गंवाया है उतना आपका हेयर ग्रोथ की चांसेस कम होती जाती है। तो इस पर रिसर्च अभी लेटेस्ट जो डेवलप्ड हुए है उसमें बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं जो बालों की ये जो एलोपेशिया एरियाटा पर इफेक्टिव रीग्रोथ 100% पॉसिबल होने के चांसेस है।
0: ओके, तो एक उम्मीद बंधी है।
1: यस, बट ट्रीटमेंट टाइम पर लेना, इट्स अ टाइम बाउंड डिसीज मैं कहूंगी।
0: हमारी पूरी बातचीत में ये बात बार बार आती है कि समय पर सावधान होकर इलाज की तरफ बढ़ना है। यहाँ हम एक गाने के लिए रुकते हैं।

0: इतनी लंबी बातचीत का जो आखिरी मकाम है, मुझे लगता है कि यहां ये बात करनी जरूरी है कि एक अच्छी लाइफस्टाइल में बालों की सामान्य रूप से देखभाल का क्या पैटर्न होना चाहिए। इसमें एक और चीज जोड़ देता हूं कि बदलते हुए मौसमों में भी किस तरह से हम अपनी रूटीन लाइफस्टाइल में बालों की देखभाल करते रहें, क्या आइडियल तरीका है?
1: आपका लाइफस्टाइल के साथ आपका शैम्पू कैसे यूज करते हो? आप कितने कड़ी धूप में जाते? बहुत बार कड़ी धूप में हम प्रोटेक्ट नहीं करते बालों को, तो कड़ी धूप में से भी आपके हेयर फॉल हो सकते हैं बहुत कड़ी धूप में। तो नॉर्मल शैम्पू, अच्छा वाला शैम्पू जो हार्श नहीं हो, बहुत झाग वाला नहीं हो, रूटीनली आपको 2 से 3 बार हफ्ते में करना चाहिए। साथ में अगर ऑयल लगा के करे 1 घंटा पहले या रात को ऑयल लगा के करे तो बेहतर है। खाने में आप ब्रेकफास्ट स्किप नहीं कीजिए, जो अभी आजकल आया ऑटोफेजी, ऑटोफेजी और 16-16 घंटे खाते नहीं है, उसका असर बालों पर गिरता है। तीसरी बात जो है कि बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं, तो हमारे इसमें अमाइनो एसिड्स की थोड़ी कमतरता होती है, क्योंकि हमारे वेजिटेबल्स में इतने अमाइनो एसिड्स नहीं होते हैं, तो अमाइनो एसिड लेना जरूरी है। फिर आपका प्रोटीन इंटेक भी, बहुत बार वेजिटेरियन लोगों का प्रोटीन इंटेक एडिक्वेट नहीं होता है, तो उस पर आपको ध्यान देना जरूरी है। ये नॉर्मल लोगों के लिए बोल रही हूं जिसके बाल नहीं झड़ रहे हैं
0: जी।
1: जब आपके बाल झड़ते हैं तो क्या कारण है, रीजन क्या है?

0: वो एनालिसिस करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो रीजन के हिसाब से ट्रीटमेंट अलग अलग होती है।
1: बिल्कुल।
0: और सोडा,
1: नींद
0: मॉर्निंग से हो गया, अभी शाम का टाइम, शाम को हेवी खाना नहीं खाना है। आप कहेंगे मैं 11 बजे नॉनवेज खा के सोता हूँ, आपके इंटेस्टाइन सोने के टाइम पर आप उसको इंटेस्टाइन को जगा रहे हो,
1: जी जी,
0: तो वो नहीं ठीक है। ओकेशनली ठीक है, पर हर बार डेली डेली होते रहेगा तो नहीं चलेगा। बाहर का आप बहुत सारा चीजें खाते हैं जो प्लास्टिक में आती रहती है, टेस्ट के लिए एक बार खा लिया ठीक है, पर आपने उसको आदत ही बना लिया तो फिर कैसे होगा।
1: बिल्कुल।
0: तो ये सारी चीजें ये नॉर्मल हेयर को मेंटेन करने के लिए है, बाकी तो फिर बीमारी के लिए तो हम लोग हैं।
1: तो मतलब ये है कि एक तो नॉर्मल जो हमारी एक लाइफस्टाइल को हमको पालन करना है और सावधानियां जरूरी तौर पर रखनी है। डॉक्टर रचिता धुरत, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी जानकारियां आपने बड़े विस्तार से दी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद। श्रोताओं, हसीन जुल्फों पर, खूबसूरत बालों पर न जाने कितने ही गीतकारों ने गीत भी लिखे हैं। जब हम सजते संवरते हैं तो अपनी हेयर स्टाइल को खास तरह से संवारते हैं। बालों के स्वास्थ्य की किस तरह से देखभाल की जाए कि इनकी सुंदरता बनी रहे, तो आज के सेहतनामा में बालों की समस्या और देखभाल, इस विषय पर डॉक्टर रचिता धूरत से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग आपने सुना। अगले सोमवार आज ही के दिन एक नए विषय को लेकर फिर हाजिर होंगे हमारे विविध भारती के स्टूडियो में। आपके स्वास्थ्य को लेकर फिर होंगे एक नए विशेषज्ञ, तो सुनते रहिए सेहतनामा। कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: किसने कहा है?
2: मधुसूदन लड़का आया है कलकत्ते से। गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: मधुसूदन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोले रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बचता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में, कभी उस पग में।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को बारूद में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था

0: कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों की 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा रंग तरंग। इस कार्यक्रम के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।
1: हम आकाशवाणी बांसवाड़ा की माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। 11 बजे हैं, प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के तहत आज हम सुनवा रहे हैं सोनू निगम के गाए गैर फिल्मी गीत।

भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं सुगम संगीत के अंतर्गत सोनू निगम के गाए गैर फिल्मी गीत।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

सोनू निगम के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

शुरुआती गीत हमने लिया है एआर रहमान के संगीत निर्देशन में दिल से फिल्म से। आवाजें हैं महालक्ष्मी अय्यर और उदित नारायण की।

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से ये गीत आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार हैं

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस दिए, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

फिल्म संगीत का अंतिम गीत आपको सुनवा रही हैं फना फिल्म से शान और कैलाश खेर की आवाज में। प्रसून जोशी के बोल हैं, जतिन ललित का संगीत।

फना फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से विविध भारती की कार्यक्रम।

0: वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयातित ऊर्जा और उर्वरकों पर देश की निर्भरता को स्वीकार करते हुए कहा है कि भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ढलने की क्षमता प्रदर्शित की है, इसके बावजूद उसकी विकास दर पटरी से नहीं उतरी। वित्त मंत्री ने भारत को एक जीवंत और प्रतिक्रियाशील अर्थव्यवस्था बताया जो बाहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। भारत कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के विश्व के बड़े आयातकों में से एक है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का आर्थिक प्रदर्शन विदेशी घटनाक्रमों के प्रति प्रतिक्रिया देने और अपनी विकास गति को बनाए रखने की उसकी क्षमता को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि को देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम बताया है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
1: देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा।
0: भारत ने सिंधु जल संधि पर विश्व बैंक द्वारा गठित मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह से ठुकरा दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के इस निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने मध्यस्थता पैनल को कभी मान्यता नहीं दी, न ही उसकी कार्रवाई में भाग लिया और न ही उसके निर्णयों से बाध्य होगा। भारत ने यह भी दोहराया कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जलविद्युत परियोजना स्थल पर कीचड़ से भरी सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के प्रयास कर रहे हैं। बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित बचे लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंप का उपयोग कर रहे हैं। इस बीच बाढ़ और भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 939 हो गई है। 3,925 लोग अब भी लापता हैं। इस बीच काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल में बाढ़ पीड़ितों के शवों की पहचान और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी साझा की है। दूतावास ने कहा कि यदि रिश्तेदार और परिवार के सदस्य नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध तस्वीरों और विवरणों के माध्यम से शवों की पहचान कर पाते हैं तो दूतावास शवों को सौंपने और स्वदेश वापसी के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करने में सहायता करेगा। केंद्रीय गोबरधन योजना आज से प्रभावी हो गई है। ये योजना 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय की है। भारत में कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली गिरावट के बाद वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 198 अंक बढ़कर 77,155 पर, जबकि निफ्टी 36 अंक की वृद्धि के साथ 24,116 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, ये प्रोग्राम आप सुनेंगे बस थोड़ी देर में।

0: सी अर्जुन की ये तर्ज थी। इंदिवर की रचना आपने सुनी मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म थी पुनर्मिलन और इस गीत के पहले श्रोताओ आप सुन रहे थे झुक गया आसमान। फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज थी, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन की तर्ज थी।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। हम

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: आनंद बख्शी का लिखा गीत मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, तर्ज थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।
1: अरे मेरे यार, अपने रंग हजार।

0: कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी, राजेंद्र कृष्ण की रचना आपने सुनी, किशोर कुमार की आवाज में फिल्म थी बनारसी बाबू।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

आशा भोसले की आवाज में आपने सुना दिल दिया दर्द लिया इस फिल्म का गीत। शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम यादों की महफिल।

कोई दिल किसी शय जलती है सुर्ख शोले की तरह, आप ये क्या हो बैठे मिलके बैठे।

0: सोनिक ओमी की बनाई तर्ज पर इसे गाया मोहम्मद रफी ने। आप सुन रहे थे आबरू, फिल्म का गीत जीएल रावल का लिखा।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली पहनी।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: गीत और संगीत था रविंद्र जैन का, महेंद्र कपूर की आवाज में फकीरा फिल्म का गीत आपने सुना।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
4: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
5: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
4: सखी सहेली?
5: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
4: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
5: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
6: सखी सहेली।

0: वर्मा मल्लिक का लिखा गीत आपने सुना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरफ से ये दो गाना था लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर का गाया फिल्म नागिन से यादों की महफिल। ये प्रोग्राम श्रोताओं यहीं संपन्न हुआ।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा सुरीला सफर, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओ, हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे साइकिल चलाने का मन न हुआ होगा कभी न कभी। भले ही ये पेट्रोल की गाड़ियों से तेज न चलती हो, लेकिन हर युवा हर बच्चों के लिए इसकी रफ्तार हवाओं से कम नहीं होती। जिंदगी में सबके पसंद की जितनी भी चीजें होती हैं, यकीन मानिए उसमें साइकिल तो एक होती ही होती है। तो अपनी प्यारी प्यारी सी साइकिल की बातें आज हमारे श्रोता ताजा कर रहे हैं, और इसके लिए जो हमारे नए श्रोता हैं उन्हें हमारे फेसबुक से जुड़ना होगा। लॉग ऑन कीजिए www.facebook.com/vbsmumbai और आप भी भेज सकते हैं अपनी प्यारी प्यारी साइकिल के बारे में कमेंट्स हमारे आज के सुरीला सफर कार्यक्रम में। तो सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है, और अब आज की इबारत आपकी नजर करते हैं। आज जो हमने फेसबुक पर इबारत पोस्ट की है श्रोताओं, वो कुछ इस तरह से है, जीवन के सफर का फलसफा सीखने के लिए, चलकर गिरना और गिरकर उठने के लिए, संतुलन की परिभाषा समझने के लिए, जोश और जुनून दिखाने के लिए, अपनी मंजिल पर जाने के लिए, कभी रास्तों पर मित्रों से रेस लगाने के लिए, हर वक्त हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, पापा मुझे कुछ सिखाने के लिए, मेरी पहली साइकिल मुझको दिला लाए, वो वाहनों का पीछे से हॉर्न बजाना, साइकिल चलाते हुए मेरा फूलों की गलियों में गुनगुनाना, सस्ती सी अच्छी सी और टिकाऊ सवारी, सच में साइकिल जैसी नहीं कोई लारी, फिर आया मोपेड का जमाना, खैर साइकिल मेरी न्यारी सी, दिखती बड़ी कमाल, पहिए इसके काले काले, नीली है कुछ लाल, धोकर इसको मैं चमकाता, रखूं सदा संभाल। तो हम सब ने अपनी अपनी साइकिलें जरूर धोकर चमका कर कम से कम श्रोताओ आज तो देखी होगी, और किन श्रोताओं का मन आज कर गया कि चलो आज साइकिल की सैर पर चलते हैं। तो आपको यादें अपनी ताजा करनी है साइकिल की, चलते हैं आज सुरीला सफर कार्यक्रम के इस सफर पर साइकिल के साथ। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

सुन रहे थे आपको ये बताना है कि ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुर जिस साइकिल में जा रहे हैं ये कौन से रंग की साइकिल है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज गद्यांश साइकिल की बातें हैं इसमें और बचपन और साइकिल का रिश्ता सिर्फ एक सवारी का नहीं बल्कि आजादी, रोमांच और पहली बार खुद पर भरोसा करने का एहसास था। संतुलन की पहली सीख थी, साइकिल सिर्फ लोहे का एक ढांचा नहीं थी, वो हमारी पहली सवारी और सपनों का पंख थी। आज भले ही कई चार पहिया गाड़ियां आ गई हों लेकिन जो सुकून और बेफिक्री उस दो पहिए की सवारी में थी वो फिर कभी नहीं लौटी। एक और श्रोता ने लिखा है, बचपन की स्मृतियों के गलियारों में साइकिल केवल लोहे, रबर और पैडल से बनी एक ढांचा नहीं बल्कि आजादी का पहला पंख और जीवन का पहला दर्शन होती है। जब पिता की उंगली थामे एक बच्चा पहली बार साइकिल की गद्दी पर बैठता है तो वो केवल यात्रा की शुरुआत नहीं करता बल्कि संतुलन, आत्मविश्वास और दुनिया को अपने नजरिए से देखने की कला सीखता है। तो यहाँ आपको बताना है श्रोताओं कि क्या आप साइकिल जब चलाते थे तो कभी आपने कैंची साइकिल चलाई है? ये कैंची साइकिल क्या होती है ये भी आपको बताना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि एक मजेदार बात है, पिताजी ने पहली साइकिल ली थी वो सेकंड हैंड थी जो मैं और मेरे पापा यूज करते थे। बाद में नौकरी मिली तो ट्रेन से उतरने के बाद कंपनी जाने के लिए साइकिल लेनी पड़ी। वो एक मित्र के साथ इन्होंने कुछ 45 रुपीज लिखा है कि उसमें ली थी जो सेकंड हैंड थी और मित्र का कहना था कि उसे मैं रोज डबल सीट खींचू। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे श्रोताओं जो उस वक्त जिनके पास साइकिल नहीं हुआ करती थी लेकिन लोग किराए की साइकिल पर हम बच्चे खूब साइकिल चलाते थे। ऐसे भी कुछ यादें अगर आपकी हैं तो जरूर हमें लिख भेजिए। साइकिल की सवारी करते हमारे ये कौन अदाकार हैं।

0: पसंद भी है, वादा भी है उसकी गली।
1: साइकिल अगर मौसम बहुत अच्छा हो श्रोताओ, यानी धूप कड़ी न हो, तो चलाने का मजा कुछ और ही होता है। आजकल कुछ ऐसा ही मौसम है। आजकल क्या आप साइकिल चला रहे हैं, तो हमें जरूर बताइए। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सुरीला सफर कार्यक्रम के समस्त प्रिय श्रोतागण, आप सभी को शुभ दिवस तथा स्नेह वंदन। और शब्द इन्होंने लिखे है, जीवन सफर मंजिल हो सकते हैं, साइकिल भी तो है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि आज मुझे याद आ रहा है कि ये सारे शब्द हो सकते हैं, साइकिल, पापा और सफर, ये लगते हैं मेरे लिए। तो ये इबारत बिल्कुल मेरी ही कहानी है। मैं खुद मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता हूँ और रोज अपनी दुकान पर साइकिल से ही जाता हूँ। जब भी रास्ते में गुनगुनाता हूँ, बचपन की यादें और पापा का सिखाया हौसला याद आ जाता है। और सच में साइकिल जैसी प्यारी और टिकाऊ सवारी कोई और नहीं। एक और श्रोता ने लिखा है कि बचपन और साइकिल का रिश्ता ही कुछ अलग सा था। आज भी याद आता है वो कभी कभी साइकिल से स्कूल जाना, वो मस्ती, वो लड़ाई, वो भाई बहनों का प्यार। साइकिल के साथ सिर्फ पहिए नहीं घूमते, हमारा बचपन, हमारी शरारतें और छोटी छोटी खुशियां भी दौड़ा करती हैं। गिर कर फिर उठना और आगे बढ़ते जाना, शायद साइकिल नहीं जिंदगी का पहला सबक सिखाया। अब इन कलाकारों को आपको पहचानना है श्रोताओ, और फिल्म पहचाननी है।

हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि प्रेम रोग फिल्म में ऋषि कपूर की साइकिल जो थी वो काले रंग की थी। जी हाँ, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि इसके पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया इशारा फिल्म का, उसमें जॉय मुखर्जी बहुत ही खूबसूरती से और बड़े मजे से साइकिल चलाते हुए चले जा रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि कैंची साइकिल वो साइकिल होती है जिसमें आधा पैदल मारना पड़ता है। बचपन में जब साइकिल तक पूरे पैर नहीं पहुंच पाते थे तो आधा पैदल ही मारा करते थे। जी हाँ, क्योंकि बड़े लोगों की जो साइकिल थी वो आसानी से मिल जाती थी श्रोताओं। और तब क्या होता था कि हम लोग छोटे होते थे, बड़े लोगों की साइकिल जब उठाकर चलाते थे तो पहुंच नहीं पाते थे, फिर कैंची साइकिल चलानी पड़ती थी। एक और श्रोता ने लिखा है, जी श्रोता मित्रों को नमस्कार। और साइकिल का बचपन में हर किसी को चाम रहता है, हमने भी किराए की साइकिल लेकर बहुत चलाई है। और कांची डंडा फिर सीट से आज भी साइकिल ही चलाता हूं। जी हाँ, और साइकिल में श्रोताओं अलग अलग तरह के जो लाइट्स होती थी वो पहले होती थी, उनकी कुछ अगर याद है तो आप जरूर बताएं। वैसे मेरे पास तो कुछ याद है कि साइकिल में किस तरह की लाइट्स हुआ करती थी, यानी कहें कि लाइट हुआ करती थी, किसी किसी साइकिल में होती थी पर ज्यादातर साइकिल में नहीं हुआ करती थी। एक और श्रोता ने लिखा है कि मैं विद्यार्थी दशक में 25 पैसे देकर पिताजी ने साइकिल सिखाई मुझे, बाद में हम 8x9 किलोमीटर साइकिल पर धूप में साइकिल पर जाते थे। उस वक्त सहेलियों के साथ जाते थे। सबसे बढ़िया साइकिल तो वो सर्कस में देखी जहां कई लड़कियां साइकिल पर सवार हो जाती हैं। जी हाँ, ये तो बड़ा कमाल का होता था। और एक घर के पास भी तो कभी कभी ऐसा खेल दिखाने लोग आते थे कि जिसमें कई कई दिन लगातार साइकिल चलाते रहते थे। ऐसा खेल आपने कभी अपने मोहल्ले में, कभी आपने शहर में देखा हो तो आप ये यादें हमसे ताजा कर सकते हैं। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज दिलचस्प गीत होंगे साइकिल पर। एक और श्रोता लिखते हैं कि साइकिल का दौर वो था मित्रों के साथ क्रिकेट खेलने या स्कूल जाना साइकिल से हुआ करता था। मैं आज भी सब्जी मंडी या दूरी कोई खरीदारी होती है तो साइकिल पर ही करता हूं, यानी कि पास की जो दूरी होती है उसके बारे में शायद ये बात कर रहे हैं। वैसे मेरे पास टू व्हीलर है लेकिन पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य के लिए साइकिल चलाना बहुत जरूरी है, इसलिए रोज नियमित साइकिल चलाता हूं।

0: ये डाकिया कौन है?
1: डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया।

0: क्या किया बाबू?
1: क्या री?
0: छह महीना हुई गवा, खतो नहीं लिखेंगे।
1: खतो नहीं लिखन? बोल क्या लिखूं?
0: बस जल्दी से अभी का लिख दो ना।

डाकिया डाक लाता था और जब उसके साइकिल की घंटी बजती थी श्रोताओं, तो क्या एक जुनून होता था कि लोग उसके पीछे जाते थे, घर के बच्चे हों या बूढ़े, कि शायद उनकी कोई चिट्ठी आई हो। तो इस तरह की भी कोई यादें अगर आपकी हो तो आप साझा कर सकते हैं। आप सुन रहे थे पलकों की छाव, फिल्म का गीत। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि राजेश खन्ना डाकिया के रूप में है। किशोर कुमार की खूबसूरत आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरफ से गुलजार का लिखा ये प्यारा सा गीत था। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि पहले साइकिल सिर्फ एक सवारी नहीं थी, बचपन की आजादी, पापा का प्यार और जीवन का पहला सबक थी। और एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन जब पहली बार कैंची साइकिल जब हमने चलाई, थोड़ा बहुत गिरा, फिर संभला, फिर धीरे धीरे साइकिल चलाने लगा। कैंची साइकिल का मतलब साइकिल के फ्रेश के अंदर एक पैर, धीरे एक पैर इधर एक पैर उधर करके कैंची साइकिल चलाई जाती थी और बचपन की यादें अभी भी हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि साइकिल में लाइट के लिए पिछले व्हील से चलने वाला डायनमो लगा होता था। लाइट जब चलती थी तो डायनमो व्हील के साथ चलता था और फिर उसको कुछ घर्षण से जो करंट मिलता था उससे ये डायनमो जलता था। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि साइकिल मेरे पापा की थी और हीरो डंडे वाली, मैंने वो सीखी थी। कई बार गिर के, कई बार किसी के ऊपर सीधे, बस तब से बंद हुई, एक बार तो खड़े ट्रक में घुस गई, बहुत पिटा था बाबा मेरे बाबा ने, मतलब इनके बाबा ने शायद इनकी पिटाई की। तो भाई ये तो बहुत ही खतरनाक है। जी हाँ, साइकिल चलाते समय बहुत ही ज्यादा सतर्कता की भी जरूरत होती है, क्योंकि हमें कई बार हम लोगों ने ऐसा भी देखा होता है श्रोताओं कि जो बच्चे होते हैं वो साइकिल की दौड़ जो है वो अन्य गाड़ियों के साथ लगाते हैं, तो ऐसा जरूर संभव हो सकता है। साइकिल जितनी हमें प्रिय होती है तो लगता है कि इसकी रफ्तार उसी हिसाब से होनी चाहिए, और होती भी वैसे तो वास्तविकता में नहीं है, तो इसलिए बहुत संभल कर चलाना चाहिए साइकिल। और एक और श्रोता लिखते हैं कि साइकिल पर पहले हम बैठ जाते थे, उतर नहीं पाते थे और बस गोल गोल चक्कर काटते रहते थे। जी हाँ, गोल गोल चक्कर काटने में ही तो हम गिरते थे और फिर सीखते थे, और गिरना, फिर उठना, फिर चलना, और इसी तरह से जो जीवन का एक फलसफा है कह सकते हैं साइकिल, वो भी हमें सिखाती।

होती है। वैसे साइकिल, आप क्या समझते हैं कि आज भी प्रासंगिकता इसकी बनी हुई है? तो आप हमें जरूर लिखें। और साइकिल क्या आज भी आप चलाते हैं, आपने सहेज रखी है? कितनी साइकिलें हैं श्रोताओं इस गीत में।

मेरे सितम फिल्म का ये गीत था। विश्वजीत और आशा पारेख पर फिल्माया गया। हमारे कुछ श्रोताओं ने 7 साइकिलें लिखी हैं, कुछ ने 8 लिखी हैं। तो कितनी साइकिलें हैं ये हम आप पर छोड़ते हैं, आप हमें बता सकते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि 26 साल पहले मैं और मेरे बड़े भैया ने बैनर छपाई का काम शुरू किया था। तो पहली साइकिल ली थी, फिर वो चोरी हो गई, लेकिन साइकिल की चाबी अभी भी संभाल रखी है। देखिए कितना प्यार होता है श्रोताओं साइकिल से। आपकी कौन से रंग की साइकिल थी आप अगर बताना चाहें तो आप जरूर बता सकते हैं। वैसे जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें 3 पहिए की एक लकड़ी की साइकिल आती है भी, और पहले भी आया करती थी। आजकल तो वॉकर आ गए हैं, लेकिन 3 पहिए की लकड़ी की साइकिल से बच्चे चलना भी सीखते थे। न सिर्फ साइकिल चलाना बल्कि वो चलना भी सीखते थे। ऐसी कुछ यादें हैं। वैसे आजकल आप किस तरह की साइकिल का इस्तेमाल करते हैं? एक और श्रोता लिखते हैं कि साइकिल बचपन की आंगनवाड़ी होती है। साइकिल सीखना चलाना बहुत अच्छा लगता है। मेरा बचपन में चाय साइकिल इनके पास थी। उस वक्त वो कांच पर गिर गए थे, अंगूठा कट गया था, 3 टाके आए थे, आज भी निशान है। तो भाई ऐसी भी बातें हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि

हमारा नमस्कार साइकिल बचपन में हमारे लिए केवल एक खेलने का जरिया थी, वही साइकिल आज रोजी रोटी और अपने परिवार चलाने का जरिया बन गई है। जी हाँ, साइकिल से चलना तो बहुत ही अच्छी बात है। श्रोताओ, क्या आप भी साइकिल से आजकल चलते हैं या फिर चलाना आपको अच्छा लगता है? एक और श्रोता ने लिखा है कि साइकिल आज भी अनगिनत यादों का प्रतीक है, जहां गति से ज्यादा दिशा, दिखावे से ज्यादा सादगी और गिरने के डर से ज्यादा उठकर दौड़ने का जुनून मायने रखता है। पिता के हाथों से मिली वो पहली साइकिल दरअसल जीवन की हर चुनौती से मुस्कुराकर पार पाने का पहला पाठ थी। एक और श्रोता ने लिखा है, जब स्कूल में थी तो किराए की साइकिल लेकर खूब चलाई, लेकिन अपनी साइकिल नहीं ले पाई। इस बात का मलाल मुझे है। अब इस उम्र में थोड़ा डर लगता है कि कहीं हाथ पैर न टूट जाए, लेकिन सुबह योगा में साइकिल जरूर चलाती हूँ और एकदम फिट रहती हूँ। जी हाँ, हम भी फिट रहते हैं और पर्यावरण भी इससे बहुत प्रभावित होता है। श्रोताओ, ये कौन जनाब है साइकिल पर?

0: बेटा देखे ना जा मुझको, देश मेरा है झांसी, लेकर तेरा लाल दुपट्टा ले लूंगा मैं फांसी। होए होए मरते मरते लिख जाऊंगा गवर्नमेंट को लेटर जी LETTER।
1: जो ये गीत फिल्म बहारें फिर भी आएंगी इस फिल्म से था, मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाज थी और जॉनी वॉकर पर फिल्म है गया ये गीत था। श्रोताओ अजीज कश्मीरी के बोल थे, सुरीले सफर के बहाने याद आ गई, साइकिल कभी नहीं होती पुरानी, भविष्य इसका उज्जवल, रंग बिरंगे रूप इसके आधुनिकता से, चपल चंचल सेहत को संवार कर प्रदूषण को रोके बन गई है सदा सफल, बचपन में सिखाती जवानी में हंसाती, आगे चलकर काम में आती, अदृश्य काल चक्र को यादों का अनुपम कारवां बनाती। ये हमारी एक श्रोता ने लिखा है। एक और श्रोता लिखती हैं, आज साइकिल की सवारी की जाएगी और साइकिल की सवारी सबसे सस्ती और स्वास्थ्यवर्धक है, इससे शरीर और मन स्वस्थ रहता है। आजकल कई तरह की साइकिलें आ रही हैं, सस्ती महंगी और रंग बिरंगी, और गीत भी इन्होंने लिखा है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि जब से होश संभाला तब से घर में साइकिल को देखता आ रहा हूं, पिताजी साइकिल से ही ड्यूटी जाया करते थे, मेरी उम्र 10 वर्ष की थी तो मेरे बड़े भाइयों की शादी एक साथ हुई तो उन्हें शादी में 2 साइकिल मिली, बस मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई, तब से गिरते पड़ते कितनी बार चोट खाई और अंततः साइकिल सीख ही गया। साइकिल चलाने का इतना जुनून सवार था कि 10वीं कक्षा में अपने दोस्त को बिठाकर पूरी दिल्ली को एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने वाला एकमात्र रिंग रोड साइकिल दौड़ाकर मात्र 3 घंटे में नाप दिया। तो इन्होंने अपनी बातें लिखी हैं। और साइकिल जब हम लोग चलाते थे श्रोताओ तो कई बार ऐसा होता था कि अपने दोस्तों को लिए बगैर साइकिल नहीं चलाते थे, और फिर घंटी बजाना, उन्हें बुलाना और साथ में जाना, ऐसे भी कोई यादें हैं तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। कुछ अभिनेता और अभिनेत्री जो दिखाए जाते हैं पर्दे पर साइकिल चलाते हुए, इनमें से कौन आपको अच्छे लगते हैं, यानी साइकिल चलाते हुए कौन से अभिनेता या अभिनेत्री आपको बड़े स्टाइलिश लगते हैं? ये अजब सी स्टाइल है धर्मेंद्र जी की, ऐसी साइकिल आपने चलाई है क्या?

ये गजब तरीके से धर्मेंद्र जी ने साइकिल चलाई है श्रोताओं, और ऐसी साइकिल यानी उल्टी साइकिल बहुत सारे लोग चलाया करते थे, तो क्या आपने भी कभी चलाई है? तो आप जरूर लिखें। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म औरत का जो गीत हमने आपको सुनवाया नाजिमा और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक आपने लिखा है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि हाँ, मैंने भी कैची साइकिल चलाई है। और एक और श्रोता लिखते हैं, साइकिल भी क्या चीज थी बचपन, क्या आज भी साइकिल को लेकर उतनी ही पॉजिटिव हूँ जितना अपने बचपन में थी। जब पहली बार साइकिल पर बैठे थे तो लगता था कि साइकिल नहीं हवाई जहाज है और इस पर बैठकर चाहे जहां तक उड़ सकते हैं। वो चैन के दिन जब साइकिल से सारा शहर नाप लेते थे, आज भी मेरे पास एक गुलाबी साइकिल है। साइकिल हमारी दोस्त ही नहीं, ये तो पर्यावरण की भी सच्ची साथी है। और साइकिल चलाइए और अपनी और प्रकृति की सेहत बनाइए। एक और श्रोता लिखते हैं कि कुछ चीजें उम्र के साथ पुरानी नहीं होती, बस यादों की अलमारी में और तहजीब से रख दी जाती हैं। मेरी पहली साइकिल भी कुछ ऐसी ही थी, उसने मुझे रास्तों से ज्यादा जिंदगी का संतुलन सिखाया था। गिरना भी उसी ने सिखाया और उठकर फिर चलना पढ़ना भी। और पापा के हाथ पीछे, पापा का हाथ था सामने खुली हुई गली। और कुछ इन्होंने अपनी बात भी लिखी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरे पापा ताऊ दादा यदि सबने नौकरी अधिकतर साइकिल के द्वारा की है और सेवा उपरांत भी उपयोग किया है। हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज तक साइकिल से जाके पढ़ाई हम लोगों ने की और बाइक भी थी। साइकिल से घूमना जाना आज भी जारी है और अब पापा नहीं चला रहे, फिर भी हम लोग उन्हें बताते हैं साइकिल जा रहे हैं, वो ऐसे सेफ समझते हैं। यानी कि इन्होंने कहा होगा कि शायद हम साइकिल से जा रहे हैं तो वो सेफ समझते हैं, और अच्छी बात है ये।

0: हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि साइकिल की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है, शहरों में भी और गांवों में भी। भले बाइक से फराटा लोग आज दिखाते हैं, लेकिन पेट्रोल की महंगाई ने तो आम लोगों को सिखा दिया कि 4-5 किलोमीटर तक जाना है तो साइकिल ही ठीक है। हम आज भी इस उम्र में साइकिल चलाते हैं, जो एक तरह का व्यायाम कराती है और पैसे भी बचाती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि हमारे जमाने में लकड़ी की गुड़गुड़ी चलाई जाती थी, नाना जी ने दी थी, फिर भाई हुआ तो बाबा ने 3 चक्के वाली साइकिल खरीदी। अब नवासे के जमाने में चलना क्या सीखेंगे, तो साइकिल खरीदी, अब तो स्कूटर की मांग है।
1: सूरज बैठा अपनी गठड़ी खोल,

0: हिम्मत वा गुरु हिम्मत है भगवान
1: में मरता जा मित्रा
0: सजता करता जा मित्रा
1: किसी से झुकाता चल मित्रा
0: के जग पर चाहता जा मित्रा
2: जीवन चलने का नाम।
3: मनोज कुमार शोर फिल्म में 7 दिन तक साइकिल चलाते हैं, श्रोताओ ऐसा नजर आता है, ऐसा दिखाया गया है। आप सुन रहे थे ये गीत मन्ना डे, महेंद्र कपूर और श्यामा चित्र की आवाज में। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि लकड़ी वाली 3 पहिए की साइकिल पर हम तो 2 बहनों ने चलाना सीखा, पर अब वो नहीं दिखती। मेरी पहली साइकिल काले रंग की थी, स्कूल जाते थे भीगते पानी में और धूप में कोहरे में। एक और श्रोता लिखते हैं कि बच्चे के लिए लकड़ी की तिपैया साइकिल को हिंदी में गडूला और मराठी में पांगुल गाड़ी कहते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि जॉनी वॉकर जो गीत हमने आपको सुनवाया था, इन्होंने ही लिखा है कि

श्रोताओं, ऐसा शायद ही कोई हो जो साइकिल चलाते चलाते कुछ गुनगुनाता ना हो, और ये आदत शायद वहीं से पड़ती है। आज भी जब कभी हम कोई गाड़ी चलाते हैं तो गुनगुनाते हैं। आप कौन सा गीत गुनगुनाते थे जब साइकिल चलाते थे?

तेरे मेरे सपने इस फिल्म का गीत था, देवानंद और मुमताज पर फिल्माया गया, नीरज के बोल थे, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ, रिटायर्ड लाइफ जी रहा हूँ और साइकिल से जो है सुबह निकलता हूँ, मॉर्निंग एक्सरसाइज भी हो जाती है, ऐसा इनका लिखना है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज भी सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान 4 किलोमीटर साइकिल चलाकर यूको पार्क जाता हूँ, फिर वहाँ मॉर्निंग वॉक कर साइकिल से ही वापस लौटता हूँ। ये मेरी डेली रूटीन में शामिल है जिससे अपने तरोताजा अपने आप को महसूस करते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि स्कूल से लौटते वक्त साइकिल पर तीन तीन दोस्त बैठकर आते थे, अन्य दोस्तों के साथ रेसिंग भी करते थे। एक और श्रोता ने लिखा है कि फिल्म लीडर में दिलीप कुमार ने जो उल्टी साइकिल दौड़ाई है उसकी बात इन्होंने लिखी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि हम कॉलेज

पड़ोसन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं, सहरा बानो नजर आती है। श्रोताओं, आपके तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए, आपके तमाम कमेंट्स के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती के संग सुरीला सफर कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

श्रोताओं नमस्कार। त्रिवेणी में आज बातें सिर दर्द की। सिर दर्द कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वो दर्द जो कि हमारे सिर के अलग अलग हिस्सों में कई अलग अलग कारणों से होता है। आमतौर पर सर्दी, जुकाम, ठंड, एसिडिटी, मौसम के बदलने का असर सिर दर्द के रूप में सामने आता है। इसके कारण कई बार हमें बिल्कुल बेचैनी का सामना करना पड़ता है। सिर दर्द के कई कारण भी हो सकते हैं और उसी के अनुसार उनका इलाज भी होता है, पर आम तौर पर सिर दर्द के दौरान सीधा सा उपाय पेय पदार्थों का सेवन और स्क्रीन से दूरी ही है। बस आंखें बंद करके लेट जाइए और हो सके तो किसी से सिर पर हल्के हाथों से तेल की मालिश भी करवा सकते हैं, जो कि आपके सिर दर्द से आपको राहत दिलाने में कारगर होगा।

हटे जब पड़े हाथ एक झगड़ा, प्यार का हो बे झगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। सुन सुन सुन अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन सुन सुन अरे बाबू।

सिरदर्द के स्वास्थ्य संबंधी कारणों की बात तो हमने की, लेकिन कुछ सिरदर्द अलग तरह के होते हैं, जैसे कि कुछ आदतें और कुछ लोग भी कई बार सिरदर्द की श्रेणी में आते हैं। सिरदर्द कहलाने वाली आदतों में शुमार हैं चुगली, बेवजह के सवाल जवाब या नकारात्मकता का पिटारा, जो कई बार हमें सामान्य नहीं रहने देता। वैसे ही कुछ लोगों की फितरत भी इस तरह की होती है, जो हमें कई बार सिरदर्द की हद तक ही परेशान कर देती है। इस तरह के सिरदर्द की खासियत या कहें मुसीबत ये होती है कि इनसे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल होता है। ना तो कोई चंपी काम आती है और ना ही कोई दवा। इनसे बचने का सीधा सा उपाय है कि ऐसे व्यक्ति को देखते ही हो जाइए 9-2-11, वरना आप भी यही कहेंगे

जैसे कुछ आदतें और लोग सिरदर्द होते हैं, उसी तरह से कई काम भी हमें सिरदर्द ही लगते हैं। जैसे बैंक, ऑफिस या स्कूल में तरह तरह के कामों के लिए अलग अलग फॉर्म भरना, किसी के बड़े से खत का जवाब देना, किसी के इत्मीनान से कहे जा रहे वॉइस मैसेज को सुनना और भी न जाने क्या क्या। सबके अपने अपने अलग सिरदर्द होते हैं, हो भी क्यों ना, सबके सिर अलग अलग हैं और उनके दर्द झेलने की क्षमता भी। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि सिरदर्द चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो या हो किसी आदत, काम या व्यक्ति संबंधी, उससे जितनी जल्दी छुटकारा पा लिया जाए जीवन उतना ही आनंदपूर्ण हो जाता है। जीवन में आनंद बढ़ाने और हर प्रकार के सिरदर्द को कम करने का एक कारगर उपाय है संगीत। अच्छा संगीत आपको स्वस्थ और आनंदमय रखता है। जब

तो हमारी यही है कामना कि आपको जीवन भर न करना पड़े किसी भी तरह के सिर दर्द का सामना। और इसी के साथ आज की त्रिवेणी संपन्न होती है। अब दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड खत्म करने का आह्वान किया। भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के लिए मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे चरण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 987 हुई। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है और छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट। झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, आतंकवादियों की भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की नीति और दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष भारत ने शंघाई सहयोग संगठन सभ्यता संवाद मंच का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इसका पहला सत्र इस वर्ष भारत में आयोजित किया जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: आज किर्गिस्तान में हुए शिखर सम्मेलन के बाद शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं ने बिश्केक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। संगठन की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी बिश्केक घोषणा पत्र के साथ साथ सदस्य देशों

0: ने संस्थागत ढांचों को बेहतर बनाने और नए सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने के उद्देश्य से व्यापक प्रस्तावों पर भी हस्ताक्षर किए। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयातित ऊर्जा और उर्वरकों पर देश की निर्भरता को स्वीकार करते हुए कहा है कि भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ढलने की क्षमता प्रदर्शित की है, इसके बावजूद उसकी विकास दर पटरी से नहीं उतरती। वित्त मंत्री ने भारत को एक जीवंत और प्रतिक्रियाशील अर्थव्यवस्था बताया जो बाहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम बताया है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
1: देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा।
0: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 987 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा बलों ने देश के 8 जिलों से और शव बरामद किए हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 583 विदेशियों और कई सुरक्षा कर्मियों समेत करीब 4000 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि लगभग 12000 लोगों को बचा लिया गया है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल में बाढ़ पीड़ितों के शवों की पहचान और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी साझा की है। दूतावास ने बताया कि नेपाल सरकार के अनुसार विदेशी नागरिकों के शवों को सौंपने के लिए कई चरणों की आवश्यकता होती है। इनमें शवों का दस्तावेजीकरण, तस्वीरें और विवरण रिकॉर्ड करना, पोस्टमार्टम, मृत्यु के कारण का सत्यापन, औपचारिक पहचान, उंगलियों के निशान, डीएनए और अन्य फोरेंसिक नमूनों का संग्रह, मृतक के पासपोर्ट या पहचान पत्र का सत्यापन और दूतावास या वाणिज्य दूतावास के साथ समन्वय शामिल है। दूतावास ने कहा कि यदि रिश्तेदार और परिवार के सदस्य नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध तस्वीरों और विवरणों के माध्यम से शवों की पहचान कर पाते हैं तो दूतावास शवों को सौंपने और स्वदेश वापसी के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करने में मदद करेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नेपाल त्रासदी के दौरान मानवीय सहायता और बचाव कार्यों में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। बल के शपथ ग्रहण समारोह पर अपने लिखित संदेश में श्री शाह ने कहा कि संकट के समय एसएसबी की त्वरित, समन्वित और संवेदनशील कार्रवाई उसके आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व का जीवंत प्रमाण है। समारोह में गृह सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा गृह मंत्रालय और सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। एसएसबी के 18 जवानों को वीरता पदक और 5 जवानों को विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए गए। गृह सचिव ने एसएसबी की आवासीय परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे रेलवे सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। कवच स्वदेशी रूप से निर्मित स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के 21 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के लिए 233 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस आधुनिक प्रणाली से पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नल के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। ये स्वदेशी स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को भी सुगम बनाएगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज कहा कि सरकार ने 2029 तक

0: 3 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्टडीज के दूसरे वार्षिक ट्राइडेंट व्याख्यान में श्री सेठ ने कहा कि देश का रक्षा उत्पादन लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसने भारत की बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू आज शाम अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा उड़ान अहमदाबाद से रवाना होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये उड़ान दिल्ली होते हुए दुनिया भर में अलग अलग स्थानों तक यात्री सेवा उपलब्ध कराएगी।
1: अहमदाबाद में इस फैसिलिटी की शुरुआत के साथ गुजरात का यह प्रमुख शहर भारत के बढ़ते हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में वाराणसी और अमृतसर के बाद तीसरा क्षेत्रीय केंद्र बन जाएगा। यह पहल सरकार की उस व्यापक योजना का हिस्सा है जिसका मकसद छोटे और गैर मेट्रो शहरों से विदेश जाने वाले यात्रियों के हवाई सफर को आसान और सुविधाजनक बनाना है। इजी कनेक्ट सुविधा के तहत यात्री अब अपने आखिरी विदेशी गंतव्य के लिए चेक इन, सामान जमा करने से लेकर कस्टम और इमिग्रेशन जैसी सभी जरूरी औपचारिकताएं सीधे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही पूरी कर सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि दिल्ली जैसे प्रमुख हब एयरपोर्ट पर उतरने के बाद यात्रियों को अपना सामान दोबारा लेने, फिर से सुरक्षा जांच कराने या इमिग्रेशन की लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे सीधे अपने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के प्रस्थान गेट तक जा सकेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि हर गुजरते साल के साथ एआई समाज में तेजी से शामिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब कम उम्र के विद्यार्थी भी पढ़ाई और रोजमर्रा के कामों में एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। श्री जोशी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के 66वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है। ये चैनल वर्ष 2001 में 1 सितंबर को शुरू हुआ था। ये एआईआर एफएम गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है। एफएम गोल्ड पर समाचार, समसामयिक मामलों और मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। एक रिपोर्ट।
2: श्रोताओं, इस धुन को सुनते ही आपके मन में आकाशवाणी की अमर विरासत से जुड़ा एक अद्भुत उत्साह उमड़ने लगा होगा। जी हाँ, ये वही धुन है जिसने पीढ़ियों को ज्ञान और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी से जोड़ा। पिछले कुछ वर्षों में एफएम गोल्ड आकाशवाणी की प्रमुख रेडियो सेवाओं में से एक बनकर उभरा है। इस चैनल पर नियमित समाचार बुलेटिन और सुर्खियाँ प्रसारित होती हैं। साथ ही इस चैनल पर समसामयिक और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। एफएम गोल्ड के कुछ लोकप्रिय कार्यक्रमों में स्पॉटलाइट, मार्केट मंत्रा, स्पोर्ट्स स्कैन और कंट्री वाइड शामिल हैं। वहीं आज सवेरे और परिक्रमा जैसे कार्यक्रम भी श्रोताओं को खासे पसंद आते हैं। ये तो बात हुई एफएम गोल्ड के प्रमुख कार्यक्रमों की, लेकिन इसके अलावा भी इस चैनल ने पिछले 2 दशकों में श्रोताओं को मनमोहक संगीत से मनोरंजित किया है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के ध्येय वाक्य के साथ आकाशवाणी लगातार जनता के बीच विश्वसनीय और सटीक जानकारी का माध्यम बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
4: मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर जलभराव के कारण आमजन को आवाजाही में परेशानी हो रही है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण संपर्क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध हैं। उधर अल्मोड़ा में भारी बारिश के चलते सोमेश्वर के बड्यूडा में देर रात एक मकान के भूस्खलन की चपेट में आने से 3 लोग की मृत्यु हो गई। वहीं देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में तेज बहाव में आने से एक वाहन में सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: झारखंड में तेज बारिश जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ का खतरा

0: बढ़ गया है।
1: मौसम केंद्र के अनुसार आज झारखंड के लगभग सभी हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ मध्यम से भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में अगले 24 घंटे के लिए कम से मध्यम स्तर के फ्लैश फ्लड का खतरा जताया है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अचानक तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और फ्लैश फ्लड की स्थिति बन सकती है, जिसे देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं रांची, खूंटी, चतरा और सरायकेला खरसावा में येलो अलर्ट जारी करते हुए कहीं कहीं भारी बारिश, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: घरेलू शेयर बाजारों में आज दोपहर कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 44 अंक की गिरावट से 76,915, जबकि निफ्टी 51 अंक की गिरावट के साथ 24,030 पर कारोबार कर रहा था। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में विश्व वरीयता प्राप्त एरिना सबालेंका ने न्यूयॉर्क में कोलंबिया की कैमिला ओसोरियो को पराजित कर दिया है। सबालेंका का अगला मुकाबला रूस की पोलिना यात्सेन्को से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड खत्म करने का आह्वान किया। भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे चरण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 987 हुई। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है और छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट। झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: लता मंगेशकर की आवाज में आम्रपाली फिल्म का गीत था हसरत जयपुरी के बोल, संगीत था शंकर जयकिशन का।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन।

0: महेंद्र कपूर और आशा भोसले का गाया ये दुगाना आपने सुना गुमराह फिल्म से। साहिल ध्यानवी के बोलों को शुरू में ढाला रवि ने।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना हम

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे संगीता श्रीवास्तव के साथ।

हसन जयपुरी के बोलों को सुनो में ढाला शंकर जयकिशन ने मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे फिल्म थी प्यार ही प्यार। फिल्म पेइंग गेस्ट किशोर कुमार की आवाज़।

माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना, माशा अल्लाह कहना।

तर्ज ये तो गाना मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर का गाया फिल्म अनजाना से, और यही है सदाबहार नगमे प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। श्रोताओं, इस कार्यक्रम से संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: सखी सहेली सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आरती, आज तुम हमारे साथ हो तो तुम्हें भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: मंजरी, आपको और साथ ही सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: और बताओ कैसी हो?
1: बिल्कुल ठीक हूँ।
0: बहुत दिनों बाद सखी सहेली के मंच पर मिलना हो रहा है।
1: ऐसे तो हम लोग बात करते रहते हैं, लेकिन मिलना जो होता है ना वो यहाँ पे ही होता है।
0: और साथ में जब बात करना होता है, विषय बताने होते हैं, तो भी बड़ा मजा आता है। जैसे कि भाई देखो, आज का जो विषय है मुहावरों की दुनिया, तो मुंह में पानी आना, तो इस पर भाई आप लोग अपनी अपनी छोटी छोटी सी बातें लिखिए कि
1: कब को क्या देख के मुंह में पानी आ जाता है।
0: तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है ना। और देखो, हल्की फुल्की बातें

0: में हम करेंगे मुफ्त का लालच,
1: यानी कि एक के साथ अगर हमें एक फ्री मिल रहा है हमें इसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम उसको ले लेते हैं।
0: ये सब चीजें देखो, कपड़े पहनने, वस्तुओं से लेकर के कुछ खाने पीने भी होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना। तो बस अपनी अपनी यादें ताजा कीजिए। और सखी विशेष में क्या लेकर के आई हूँ आरती?
1: आज हम सखी विशेष में हम बात करेंगे छाया नंजप्पा जी के बारे में, जो कि संस्थापक है नेक्टर फ्रेश की, उनके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही आज हम बात करेंगे दैनिक आहार और पोषण, हमारी थाली में पोषण कितना होता है और जो चीजें हमारे नुकसान करने वाली हैं वो कितनी होती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे।
0: बिल्कुल, क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि हम जो खाना खा रहे हैं दैनिक रूप से, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कैसा खाना चाहिए, है ना।
1: बिल्कुल,
0: तो ताजा बासी इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले तो हम भाई चलेंगे गीत की ओर।
1: संगीत के बिना तो सब बातें अधूरी हैं।

0: हूँ तो भाई आरती तेरे कारण तेरे कारण। ये जो भाई ये चीजें होती है ना ये घरों में बहुत होती है कि तुम्हारे कारण
1: तुम्हारी वजह से हुआ जो भी हुआ
0: तुम्हारी वजह से जो भी हुआ किचन में आप ये बनाए वो बनाए ये सब चलता रहता है। और देखो जब हमारी जिंदगी में रोज ही ये सब चीजें होती रहती है कि भाई क्या बनाएं क्या खाएं तो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी थाली में कैसा खाना हो जो विटामिन प्रोटीन्स मिनरल से भरा हुआ हो, यानी कि दैनिक आहार और जो पोषण है उसमें हमें एक समय में नाश्ते में अच्छा खासा मिल जाए, फिर लंच में मिल जाए जो हम दोपहर का भोजन जिसे कहते हैं उसमें अच्छा खाना हो और रात का खाना, तो इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। खासकर हम गृहिणियों को और तुमको भी याद रखना पड़ता है ना कि चटपटा कितना खाना है सादा कितना खाना है।
1: अच्छा चटपटा मुझे ध्यान रखना है।
0: चटपटा तुम्हें बहुत पसंद है इसलिए तुम याद रखो है ना। और अक्सर हम खाना तो पेट भरने के लिए खाते हैं ना, लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि हमारा भोजन हमारे शरीर को सही पोषण भी दे रहा है कि नहीं, है ना। आप पेट भरने के लिए ना खाएं, जीने के लिए भी खाकर सोचें, है ना।
1: बिल्कुल।
0: और क्या कहते
1: और है? कहते भी हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचारों का निवास होता है और स्वस्थ शरीर की शुरुआत होती है एक संतुलित और पौष्टिक आहार से। और पोषण का अर्थ ही होता है कि भोजन के माध्यम से शरीर को आवश्यक तत्व मिलने जितने भी हो सके और जिससे कि हमें ऊर्जा मिल सके और शरीर का विकास हो और हम तभी तो स्वस्थ रह पाएंगे।
0: बिल्कुल स्वस्थ रह पाएंगे, क्योंकि हमारा जो रोज का भोजन होता है उसमें अलग अलग तरह के पोषक तत्वों का होना बहुत जरूरी है। जैसे हमने अभी कहा ही था कि प्रोटीन विटामिन से तो कार्बोहाइड्रेट भी शरीर को ऊर्जा देता है तो वो भी होना चाहिए। और प्रोटीन डाइट जिसे कहते हैं, प्रोटीन जो शरीर की वृद्धि और ऊतकों की देखभाल करने में मदद करता है और वसा जो ऊर्जा का एक स्रोत है और शरीर के लिए वो बहुत आवश्यक भी है, तो विटामिन और खनिज जो शरीर के सामान्य कार्यों और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है तो अपने खाने में उन चीजों को देखें। और जो हमारी सब्जियां वगैरह होती हैं जो भी अनाज है तो आप चाहे तो एक चार्ट बना करके किचन में चिपका लीजिए कि भाई इसमें ये चीज पाया जाता है तो हम बदल बदल की ये चीज बनाएंगे।
1: बिल्कुल, जितनी रंग बिरंगी आपकी थाली होगी ना हमारी उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। तो क्योंकि वो सिर्फ स्वादिष्ट खाना ही नहीं बल्कि पौष्टिक और विविध भोजन भी जरूरी होता है कि एक ही तरीके का खाना खाकर हम वैसे भी ऊब जाते हैं, तो हमारी थाली जितनी ज्यादा रंग बिरंगी होगी उतना ही हमें खाने में अच्छा लगेगा। और जिसमें कि होनी चाहिए क्या क्या चीजें, हरी सब्जियां, मौसमी फल होने चाहिए, दालें होनी चाहिए, अनाज और बहुत से पौष्टिक जो खाद्य पदार्थ है उनको अपनी दिनचर्या का हमें हिस्सा बनाना चाहिए। खासकर दालें तो बहुत जरूर होनी चाहिए, चाहे बच्चों चाहे बड़े हो सबको दाल तो खानी ही चाहिए।
0: बिल्कुल। और सुबह का नाश्ता भी बहुत जरूरी होता है, वो भी समय से करने के लिए, क्योंकि रात भर हम जो रात में खाकर सोते हैं सुबह तक तो वो हजम हो जाता है, लेकिन नाश्ता ही देर करेंगे तो आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। तो उस समय आप नाश्ता एक पौष्टिक लीजिए, पोहा उपमा ये सब चीजें ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, है ना, चीला वगैरह में मूंग का चीला ले सकते हैं। और दोपहर के भोजन में अनाज दाल जैसा तुमने कहा है और दही के साथ साथ प्रोटीन और अन्य सब्जियां भी शामिल करें। और शाम को जरूरत से ज्यादा तले भुने या अत्यधिक मीठे खाद्य पदार्थों के बजाय पौष्टिक विकल्प चुनना चाहिए, क्योंकि हम काम करके थक जाते हैं तो हमें खाना खा के रात को सोना भी है, तो जब हम तेल वाला मिर्च मसाले का खाएंगे तो हमें तकलीफ बढ़ेगी ही बढ़ेगी।
1: और वैसे भी शाम के समय थोड़ा सा हमारी जो पाचन क्रिया होती है थोड़ी धीमी हो जाती है, तो उस हिसाब से हमें बहुत ही हल्का और सुपाच्य खाना खाना चाहिए। और जैसे सैलेड हम खा सकते, सलाद खा सकते हैं, है ना, या कोई हरी या सब्जी कोई अपने हमने हरी बनाई हरी सब्जी बना रखी तो उसको खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं, तो इस तरीके की चीजें हमें खानी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और इसके अलावा हमारे शरीर के लिए पानी भी बहुत जरूरी है, तो दिन भर पर्याप्त पानी पीना भी बहुत जरूरी होता है।
0: ये तुमने बिल्कुल सही कहा कि कम से कम 7-8 गिलास पानी आप जरूर पिए कि जिससे आपके अंदर शरीर की जो गंदगी है वो बाहर निकले।
1: घूट कर पानी पीजिए, और जरूरी नहीं कि आप एकदम से बहुत सारा पानी पी लें, क्योंकि फिर हमारे शरीर को उसको भी करने में बहुत टाइम लगेगा, परेशानी होगी, तो आप थोड़ा थोड़ा पानी करके पीजिए।
0: और पानी जब भी पिए ना तो बैठ कर पिए, धीरे धीरे पिए। तो फिलहाल तो हम लोग एक गीत सुन लेते हैं।

0: तो अंतराल के बाद फिर सभी का स्वागत है और कार्यक्रम चल रहा है आरती सखी सहेली। तो हमारे साथी जो लगे उन्होंने क्या क्या संदेश लिखकर भेजे हैं?
1: बहुत कुछ लिखा है एक हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि दैनिक आहार बहुत हल्का और पौष्टिक होना चाहिए, वही शरीर को स्वस्थ बनाता है। कभी कभार एक आध बार चल जाता है। मैं भी सुबह की शुरुआत अपनी जो वैसी चाय होती है उससे करती हूं और दिन में दाल चावल हरी सब्जी रोटी और रात में सब्जी डालकर ज्वार की दलिया खाती हूं और कभी कभार तीज त्योहार पर पूरी सब्जी खा लेती हूं।
0: क्या बात है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि दैनिक आहार और पोषण, रोजमर्रा के जो हम खाना खाते हैं उसमें पोषण होना बहुत जरूरी है क्योंकि वही हमारे सेहत को एक अच्छी गति प्रदान करता है। उसमें पोषण हम किस तरीके से ला सकते हैं? दैनिक आहार में पोषण लाने के लिए हर तरीके की चीज खाएं, चावल रोटी, लेकिन कहते हैं चावल और रोटी को कभी भी एक साथ नहीं खाना चाहिए, इसीलिए चावल और रोटी को कभी भी एक साथ नहीं खाना है। और अपने आहार में अनाज, हर प्रकार की दालें, राजमा, चना, मूंग, इस तरह की चीजें आप शामिल कर सकते हैं। दूध, दही ले और जो मतलब जिस तरह के निरामिष या शामिष भोजन वैसे करते हैं तो वो करें आप। और जंक फूड और तली चीजों से दूर रहें और घर में ही पोषक तत्वों से भरा स्वादिष्ट खाना जो बनता है वो आप खा सकते हैं। मूंग का दाल का चीला है और सिस्टम भी आपका सही रहता है, सेहत सही रहती है। और बहुत से खाने भी आप खोज सकते हैं कि क्या क्या हमारे लिए, सूजी का उपमा वगैरह, चीला, ये सब खा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं।
1: हमारे एक साथी जो कहते हैं कि दैनिक आहार और पोषण में भोजन में रंग बिरंगी सब्जियां और फल आप खा सकते हैं, 8 से 10 गिलास पानी पीजिए और बहुत ज्यादा चीनी और मैदे वाली चीजों से दूरी बनाकर रखिए। और खाने को स्वाद के लिए नहीं बल्कि जरूर

0: उसके अनुसार खाइए।
1: बिल्कुल। और जैसे कि दैनिक आहार और पोषण हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, ऊर्जा स्तर और मानसिक विकास का मुख्य आधार है, आहार है, और ये वो भोजन है और पेय है जिसे हम नियमित रूप से सेवन करते हैं। पोषण जो है ये शरीर द्वारा भोजन और पोषक तत्वों को ग्रहण करने और उनका उपयोग करने की प्रक्रिया है जो हमें ऊर्जा देती है और स्वास्थ्य को बनाए रखती है। और भाई इस की जानकारी हम एक दूसरे से ले सकते हैं, घर में जो परिवार के अन्य सदस्य भी होते हैं ना, आरती बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो भी बताते हैं कि देखो ये चीज खाओ, गर्मी में ऐसी चीजें खाओ कि आपका तन में शीतलता बनी रहे, और जैसे कि बारिश के समय है तो इस तरह की कहा जाता है कि कुछ ऐसी चीजें खाओ कि आपको थोड़ी सी गर्मी में रहे, और सर्दी में तो कहा ही जाता है कि गर्म पदार्थ खाने, तो उन सब चीजों का आप बड़े बूढ़ों से भी आप सीख सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी किताबें भी आ गई हैं, आप सोशल मीडिया या आप उससे भी जानकारी नेट से भी, इंटरनेट से भी ले सकते हैं। तो
0: बिल्कुल, और वैसे भी अगर हम बाहर की चीजें खाते हैं या जैसे कि अपने घर का खाना छोड़कर हम बाहर का खाना खाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा प्रयोग किया हुआ जब तेल भी उसमें उपयोग किया जाता है क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें बन चुकी होती हैं और लगातार वो तेल खोल रहा होता है, गर्म हो रहा होता है, तो वो तो आपको नुकसान पहुंचाने ही वाला है वैसे भी। और हम जो भी चीजें बाहर की खाते हैं उसमें कितना तेल, कितना नमक तेज है या कितना तेल बहुत ज्यादा है या कितना मिर्ची तेज है, मतलब वो जो चीजें हैं मसाले हैं वो कौन से हिसाब से डाले गए वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना कि हम बाहर का खाना जितना हो सके उतना कम खाएं, अपने घर पे ही आप अच्छा ताजा भोजन खाएं और सुपाच्य अच्छा हो, जो हल्का हो, जो पचने में आसान हो, ऐसा भोजन खाना चाहिए।
1: बिल्कुल। और खुला जब भी खाना किचन में बने आप बना के रखती हैं तो उसको ढककर रखें, कभी भी खुला मत रखें, और हो सके तो आप बिल्कुल बासी खाने को मतलब ना ही खाएं तो अच्छा है, ताजा ही भोजन का जैसा तुमने कहा ही है। और बच्चों को भी यही सिखाएं कि आप भी ताजा खाना खाइए, हम बना रहे हैं नहीं कि अभी नहीं खाएंगे तभी नहीं खाएंगे, बच्चे करते ना अक्सर ऐसा कि नहीं अभी मन नहीं कर रहा है, अभी पेट भरा हुआ है, या कोई भी बहाने कर देंगे कि अब मोबाइल छोड़ के उन्हें खाना खाने के लिए भूल दिया गया है तो इस तरह की चीजें ध्यान रखे। और साथ में जब खाना खाने के लिए आप लोग बैठते हैं, खाना खाने सब लोग, हम सभी लोग बैठते हैं, तो उस समय इन सब चीजों से को अपने आप से दूर कर दें, मोबाइल वगैरह, कि सिर्फ खाने पर आप ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं,
0: वो हमारे स्वास्थ्य के लिए जो हम खा रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। तो जब हम अपने हाथों से खाना अपने मुंह तक पहुंचाते हैं वो जो खाना होता है ना वो एक अलग सा रिश्ता बनाता है, हमारे हाथों से हमारे मुंह तक आता है खाना, तो उसकी वजह से ना हमारे शरीर पे बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
1: अच्छा, जो बनाता भी है ना एक घंटे दो घंटे करके मेहनत करके जो हमारी सखियां बहनें सब बनाते हैं हम लोग, तो उनकी तारीफ करने के लिए भी आप सोचिए ना कि अब जब स्वाद से खाएंगे तभी तो आप तारीफ कर पाएंगे। अगर आपका ध्यान मोबाइल में लगा है या टीवी में लगा है तो आप तो खाने का स्वाद ही नहीं ले रहे, पता नहीं चल रहा है ना, तो वो चीज भी बहुत ध्यान रखना है। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि दैनिक आहार बहुत हल्का और पौष्टिक होना चाहिए, वो शरीर को स्वस्थ बनाता है, कभी कभार एक आध बार चल जाता है, मैं भी सुबह की शुरुआत मतलब हर्बल चाय से करती हूँ। तो ये देखो ये चीज बहुत अच्छी बात है, और तुमने भी इसको बताया ही था आगे इसी संदेश को, तो बहुत अच्छी सी बात है कि इस तरह ध्यान रखना चाहिए अपना। और हम ध्यान रख लेते हैं बातों के बीच में
0: एक गीत का।

0: तो भाई देखो आरती, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया तो भाई आज कौन सी सखी विशेष की तुम बात करने वाली हो?
1: मैं हम बात करने वाले हैं आज छाया नंजप्पा जी की
0: जी।
1: तो छाया नंजप्पा राजप्पा की, जो कि भारत की जानी मानी महिला उद्यमी में से शामिल हैं, और इनका जन्म हुआ था दक्षिण कूर्ग नलकरी में। उनका बचपन अपेक्षाकृत पारंपरिक और सुरक्षित वातावरण में बीता था। उन्होंने मैसूर में अपनी शिक्षा पूरी की, हालांकि उनकी जो औपचारिक शिक्षा थी वो आगे बहुत समय तक जारी नहीं रह सकी, लेकिन उन्होंने सीखना नहीं छोड़ा और पत्राचार के माध्यम से उन्होंने मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया।
0: छाया के जीवन में एक कठिन दौर तब आया जब उनके पिता का निधन हुआ और बाद में उनका विवाह भी असफल रहा, और इन कठिन परिस्थितियों ने उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। और उनका उद्देश्य केवल अपना व्यवसाय शुरू करना नहीं था, बल्कि अपने गृह क्षेत्र के लोगों, विशेषकर ग्रामीण और आदिवासी समुदायों के लिए रोजगार और आय के अवसर पैदा करना भी था।
1: बिल्कुल, छाया ने जब अपनी शुरुआत करी थी अपने उद्यम की, तो उनके पास ना तो पारिवारिक व्यवसाय की पृष्ठभूमि थी और ना ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का कोई लंबा अनुभव। उन्होंने शहद के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए सेंट्रल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि CBRTI पुणे में प्रशिक्षण लिया। इसी दौरान उन्हें मधुमक्खी पालन और शहद प्रसंस्करण की तकनीकी जानकारी भी मिली,
0: और उन्होंने छोटे स्तर से शुरुआत की और धीरे धीरे शहद की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग का व्यवसाय विकसित किया। उनके व्यवसाय की शुरुआत विशेष रूप से शहद और कृषि आधारित खाद्य उत्पादों से हुई, और कंपनी की शुरुआत में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड KVIC समर्थित ग्रामीण उद्यम के रूप में विकसित किया गया।
1: उनकी कंपनी का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ बनाना है, खाद्य उत्पाद बनाना है। बाद में कंपनी ने अपने उत्पादों का विस्तार किया, जिसमें शहद, जैम, सॉस, चिया सीड्स, प्राकृतिक सिरका, सेब का सिरका, कॉफी और मसालों जैसे उत्पाद हैं। छाया के उद्यम में का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है ग्रामीण रोजगार और छोटे किसानों और सभी समुदायों को उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण की प्रक्रिया में प्रशिक्षित करके आर्थिक अवसर उपलब्ध कराना।
0: बिल्कुल, और उनकी कंपनी ने वन समुदायों से प्राप्त शहद की खरीद और उसे बाजार तक पहुंचाने में भूमिका निभाई। उनका मॉडल किसानों, शहद संग्रह करने वाले समुदायों, खाद्य उपयोग और उपभोक्ताओं को एक दूसरे से जोड़ने पर केंद्रित रहा है, और उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के कम शिक्षित और कम प्रशिक्षित लोगों को काम के दौरान प्रशिक्षण देकर उन्हें खाद्य प्रसंस्करण और उत्पादन की प्रक्रिया से जोड़ा।
1: बिल्कुल, और यही वजह है कि उनकी जो उद्यमिता है उसको सामाजिक उद्यमिता का उदाहरण भी माना जाता है। उनकी कंपनी को

0: वी कनेक्ट इंटरनेशनल के उनको के विमेन ओन्ड लोगो का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला ब्रांड बताया गया है। ये पहचान महिला उद्यमिता और महिला स्वामित्व वाले व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जोड़ने के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल, और उनकी कंपनी ने धीरे धीरे बड़े होटल समूहों, खुदरा संस्थानों और आयुर्वेद और फार्मा क्षेत्र के ग्राहकों तक अपनी पहुंच बनाई। और उनकी कंपनी ने केवल कच्चे शहद की बिक्री तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि गुणवत्ता, पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान दिया। और छाया ने भारतीय बाजार में उच्च गुणवत्ता वाले पैक किए गए शहद और अन्य खाद्य उत्पादों को स्थापित करने पर भी उन्होंने जोर दिया।
0: बिल्कुल, और छाया नंजप्पा नेशनल बी बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़ी रही हैं और केवीआईसी के हनी मिशन की नेशनल लेवल एडवाइजरी कमेटी की सदस्य भी रही हैं। वो एसोसिएशन ऑफ बिजनेस वीमेन इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारत की कंट्री प्रेसिडेंट और कर्नाटक की स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में भी सूचीबद्ध हैं।
1: और देखो, इनके बहुत सारे काम हैं, इन्होंने मतलब इस तरह से जो किया है वो सबके लिए एक मिसाल है। और हम लोग इनके बारे में और भी बातें करेंगे आरती, लेकिन अभी एक समय हो रहा है, धीरे धीरे एक अंतराल का समय हो रहा है, तो हम लोग एक छोटा सा अंतराल लेते हैं, फिर हम इनके बारे में आगे बातें करेंगे।

0: अंतराल के बाद फिर सभी का स्वागत करते हैं और हम लोग बात कर रहे थे छाया जी के बारे में। तो क्या बातें चल रही थी आरती?
1: बिल्कुल, छाया नंजप्पा विभिन्न संस्थाओं और मंचों से भी जुड़ी रही हैं। वो नेशनल बी बोर्ड से जुड़ी हैं और हनी मिशन की राष्ट्रीय स्तर के सलाहकार भी हैं, और जैसे कि हमने बताया था अभी, और उन्होंने बहुत ही अलग अलग जगहों पे पूरा उन्होंने उसका वक्ता के रूप में भी भाग लिया है। और साथ ही ग्रामीण और आदिवासी समुदाय के विकास के साथ छाया ने पारंपरिक कला और कारीगरों को बाजार से जोड़ने की दिशा में भी पहल की है। और नमन नामक पहल का उद्देश्य ग्रामीण और आदिवासी कारीगरों की कला और सांस्कृतिक विरासत को बाजार और उपभोक्ताओं तक पहुंचाया है। छाया नंजप्पा को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मान प्राप्त हुए हैं, जैसे कि प्रियदर्शनी अवार्ड, सार्थक नारी अवार्ड के सम्मान से भी उनको सम्मानित किया गया था।
0: क्या बात है। और हमारे साथियों ने भी लिखकर भेजा है कि छाया नंजप्पा ने मैसूर कर्नाटक में शहद प्रसंस्करण इकाई की शुरुआत की। वो देश में इस प्रकार का प्लांट स्थापित करने वाली पहली महिला उद्यमी बनी। कंपनी ने केवल शुद्ध शहद से शुरुआत की, लेकिन बाद में किसानों की सहायता के लिए जैम, सॉस, कॉफी, चिया सीड्स जैसे 35 से अधिक प्राकृतिक खाद्य उत्पादों का विस्तार किया। नेक्टर फ्रेश देश की पहली ऐसी कंपनी है जिसने बिना कृत्रिम रंगों और प्रिजर्वेटिव के जैम का निर्माण किया। बहुत सुंदर सी बात है ये।
1: बिल्कुल। और साथ ही छाया नंजप्पा जी ने पहली बार शहद और जैम के लिए पॉलीप्रोपलाइन ब्लिस्टर चिपलेट्स और तकनीक का उपयोग अन्य ब्रांड्स के रूप में किया था अपने। इनके ब्रांड ने भारत में कई विदेशी और 20 साल पुराने स्थापित ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया था। आज इनके उत्पाद भारत के प्रमुख प्रीमियम होटल में भी सप्लाई किए जाते हैं। ये हमारा एक संदेश मिला है हमें
0: श्रोता ने। और आते हमारे साथी और लिखते हैं कि हर बार जगह बदलने पर लाखों का नुकसान होता था। इसके अलावा उपकरणों की टूट फूट के कारण कुशल कर्मचारी कम हो जाते थे और नए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना पड़ता था। इसलिए हमेशा आशावादी रहने वाली छाया कहती हैं, हर बार जब हम नए लोगों को प्रशिक्षण देते हैं तो उनके साथ मेरे संबंध और भी मजबूत होते जाते हैं। बहुत सही बात है, जब हम इस तरह से किसी को भी सिखाना चाहते हैं ना, तो वो एक टीम बन जाती है और टीम के अंदर एक आपसी जो सद्भाव होता है, एकता होती है, अनुशासन होता है और आप सबका सहयोग होता है, तो उससे ही वो काम अच्छा निखर के आता है।
1: बिल्कुल। और इस समय हमें अपने सखियों को अपने सखाओं के साथ थोड़ा सहयोग करना चाहिए, उन्हें गीत सुनाना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: उड़ जा काले कावा
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती कैसेट लेने।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: तो भी आरती, अब हम लोग किस विषय की ओर आगे बढ़ने वाले हैं?
5: अब हम आगे बढ़ने वाले हैं मुफ्त की ओर।
4: अच्छा, सबसे प्यारा विषय लगता है तुम्हारा
5: मुफ्त की ओर। कई बार होता है ना कि हम लोग कभी कभी लालच में भी जाते हैं। अच्छा सेल लगी है, अच्छा मुफ्त मिल रहा है सामान, चलो चलो ले लेते हैं, कुछ चीजें अच्छी मिल जाएंगी। तो ये जो लालच होता है ना हमारा, इसकी वजह से हमें बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है।
4: ओवर बजट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं और हम लेते चले जाते हैं सामान। ये नहीं सोचते कि हमारे घर में स्टोर जमा हो जाएगा, अलमारी भर जाएगी, है ना।
5: इससे बस घर भी तो घर में भी सब सामान इतना ज्यादा जमा हो जाता है ना, जिसको इसका प्रयोग नहीं, हमारे पास जब उसका हमें उपयोग नहीं करना है तो हम जबरदस्ती में उसको भरते ही तो हैं।
4: बिल्कुल।
5: और दूसरी चीज है, कभी कभी खाने में जब हम ये काम करते हैं ना कि इसके साथ में ये मुफ्त है या ये हम इतना खा सकते हैं, ये थाली मुफ्त है या बड़ी थाली लेंगे तो आपको कम पैसे देने पड़ेंगे।
4: और कई बार क्या होता है कि हम उसके चक्कर में ज्यादा ऑर्डर दे देते हैं, फिर अंत में होता है कि भाई इसको पैक कर दीजिए, हम घर ले जाएंगे। तो ये सारी चीजें भी होती, तो मुफ्त का लालच जो है वो हर जगह अप्लाई नहीं करना चाहिए। और ऐसा ही होता है ना कि मुफ्त मिले तो बुरा क्या है, यही सोचकर कई बार हम ऐसी चीजों के पीछे दौड़ने लगे।

0: जाते हैं जिनकी वास्तव में हमें आवश्यकता भी नहीं होती है, और मुफ्त शब्द सुनते ही मन में बड़ा उत्साह सा जाग उठता है और हम बिना सोचे समझे उस वस्तु या अवसर को पाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और यही मुफ्त का लालच कई बार नुकसान का कारण बन जाता है।
1: बिल्कुल, बाजार में जो आकर्षक ऑफर रहते हैं, फ्री गिफ्ट्स रहते हैं, एक के साथ एक मुफ्त जैसी योजनाएं रहती हैं, वो बहुत ज्यादा लुभावनी लगती हैं और कई बार हम जरूरत से ज्यादा खरीदारी कर लेते हैं, और क्योंकि कुछ मुफ्त मिल रहा होता है साथ में हमें, और बाद में पता चलता है कि जिस चीज को पाने के लिए इतना खर्च किया उसकी हमें आवश्यकता ही नहीं थी। और आजकल तो इंटरनेट की दुनिया में भी मुफ्त के लालच से सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि इस समय नकली इनाम, आकर्षक ऑफर और संदिग्ध संदेश लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। इसलिए किसी भी मुफ्त चीज के पीछे भागने से पहले उसकी सच्चाई और अपनी आवश्यकता को समझना चाहिए।
0: बिल्कुल, और कई बार हम कहीं दुकान पर लेने जाते हैं आरती, तो वहां पर एक दिखाएंगे कि आप स्क्रैच कार्ड है, आप इसको स्कैन कर लीजिए, स्क्रैच कर दीजिए तो आपको ये चीजें मिलेंगी। तो भाई वो चीज कभी ना करें, लालच में ना पड़े। और कहा भी गया है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती,
1: बिल्कुल,
0: और हर मुफ्त मिलने वाली वस्तु वास्तव में लाभदायक नहीं होती। समझदारी इसी में है कि हम लालच के बजाय विवेक से निर्णय लें, क्योंकि कई बार मुफ्त का लालच हमें इतना महंगा पड़ जाता है आरती कि बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। और जो चीज बिना सोचे समझे मुफ्त में मिल रही हो उसके पीछे छिपी कीमत को पहचानना भी बहुत जरूरी है ना। और हमारे साथी क्या लिखते हैं?
1: हाँ, एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि मुफ्त का लालच इंसानी फितरत का एक ऐसा हिस्सा है जो अक्सर हमें हल्की फुल्की मुश्किलों में डाल देता है, कभी कभी भारी मुश्किल में भी डाल देता है। विज्ञापन दाता और दुकानदार हमारी इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, और मुफ्त की हर चीज की एक छिपी हुई कीमत होती है, चाहे वो आपका कीमती समय हो, फोन का डेटा हो, या घर में बढ़ने वाला कबाड़। इसलिए अगली बार जब भी फ्री का बोर्ड देखें तो खुद से पूछें, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? बहुत सही बात कही।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और मुफ्त का लालच इस विषय की सबसे बड़ी खूबी इसका आम जीवन से जुड़ा होना है। हमारे साथी लिखते हैं कि लोग 100 रूपये की मुफ्त चीज पाने के लिए 500 का ऐसा सामान खरीद लाते हैं जिसकी उन्हें कभी जरूरत ही नहीं होती। घर की अलमारियों में बंद पड़ी बेकार वस्तुएं इस मुफ्त के लालच का जीता जागता सबूत है, और ये हमारे खोखले प्रदर्शन और दिखावे की संस्कृति पर करारा प्रहार भी है। मनोवैज्ञानिक पहलू लेखन में इस बात का गहरा अर्थ मिलता है कि मुफ्त केवल एक ऑफर नहीं बल्कि एक मानसिक जाल है, क्योंकि कंपनियां जानती हैं कि मुफ्त का लालच देकर किसी भी फालतू चीज को बेचा जा सकता है। ग्राहक को लगता है कि उसने पैसे बचा लिए हैं, जबकि असल में वो अपनी जेब को वो ढीला कर चुका होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि घर में बहुत सारे मान लो तवे रखे हैं, लेकिन फिर भी हम गए नहीं, हमें तो कुछ दूसरी ब्रांड का चाहिए, वो ले आए, तो बेचारे दो तवे जो ऑलरेडी आपके उसमें रैक में रखे थे वो अफसोस मना रहे हैं कि कब मुझे जलाओगे, कब मुझे गर्म करोगे।
1: उनका तो मौका ही नहीं पड़ता।
0: इसलिए कहा जाता है कि घर में जितनी चीजें हैं अगर एक है तो उसकी बड़ी कद्र होगी, बहुत ज्यादा चीजें होती तो किसी ना किसी की तो बेकदरी हो ही जाती है।
1: बिल्कुल,
0: है ना।
1: और हमारे साथी जो कहते हैं कि मुफ्त का लालच इंसानी फितरत का एक ऐसा कमजोर पहलू है जिस पर दुनिया का पूरा बाजार टिका हुआ है, ये विषय आज के उपभोक्तावादी समाज का कड़वा सच दिखाता है, जिसे बेहद हल्के फुल्के और हास्यास्पद शैली में आप कह सकते हैं कि जैसे कि एक के साथ एक मुफ्त या मुफ्त डिलीवरी जैसे शब्द इंसानी दिमाग पर किसी जादू की तरह काम करते हैं। और इसीलिए कहा गया कि मुफ्त का शब्द सुनते ही इंसान की तार्किक बुद्धि काम करना बंद कर देती, क्योंकि जहां हमने सुना मुफ्त है बस फिर सोचते नहीं है।
0: हम जो महिलाएं ना, माफ कीजिएगा, हमने अपने को भी शामिल किया, हम लोग मुफ्त के चक्कर में चले जाते हैं कि भाई वो साड़ी वहां पे एक के साथ एक मिल रही है, ले लेते हैं, या कुछ भी कान की चीजें हुई, झुमका शुमका चूड़ी कंगन, ऐसी चीजें पे हम लोग बिल्कुल आकर्षित हो जाते हैं, यानी चमक दमक में बस
1: खो जाते हैं।
0: फिलहाल तो हम खोते नहीं है, हम सुनते हैं एक गीत।

0: तो भाई आरती देखो, मुंह में पानी आना, अब सोचो अगर हमने कोई नाम ले लिए तो तुम्हारे मुंह में क्या पानी आएगा क्या?
1: बिल्कुल बिल्कुल, मेरे तो तुरंत आ जाता है जहाँ समोसे की बात चलती है।
0: समोसा तो छोड़ो, इमली, कैथा, बेर, कमरक,
1: बस करो,
0: चूरन, पानी के बताशे, तुम्हारे तो पानी आ गया, मुझे तो सामने दिख रहा है, लेकिन हमारे जो साथी है, सखियां है, तो वो बताए कि ये सब चीज जो मैंने नाम ली है, सबने आसपास देखी भी है, तो खाई भी है ना अपने स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, तो किसके किसके मुंह में पानी आया ये बताए, है ना? और हमारे साथी लिखते, मुंह में पानी आना हिंदी साहित्य में मुहावरों का एक विशेष स्थान है। ये हमारी भाषा को सुंदर, सजीव और असरदार बनाते हैं। ऐसा ही एक बेहद लोकप्रिय और मजेदार मुहावरा है मुंह में पानी आना, और इस मुहावरे का सीधा संबंध हमारी जीभ, स्वाद और मन की इच्छा से है। और किसी भी पार्टी समारोह में, शादी ब्याह में जाते हैं, या फिर वो जमाना याद आता है पत्तल पे जो खाना परोसा जाता था, पंगत में हम बैठते थे, तो वहां पर सब चीजें देख के तो मुंह में पानी आता था, रायता आ गया या रसगुल्ला आ गया तो फिर पूछो मत, है ना? तो चलो आगे हमारे साथी क्या लिखते हैं।
1: एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि इस मुहावरे का अर्थ है किसी स्वादिष्ट चीज को देखकर या उसके बारे में सोचकर मन ललचा जाना। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब हम अपनी मनपसंद खाने की चीज को देखते हैं तो हमारे दिमाग को संदेश मिलता है और मुंह में लार बनने लगती है। इसी स्वाभाविक शारीरिक प्रक्रिया को भाषा में एक खूबसूरत मुहावरे का रूप दिया गया है। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इस मुहावरे का प्रयोग अक्सर करते हैं।
0: बिल्कुल, देखते हैं
1: आपके समाज चीज को देखिए, इतना अच्छा आपने रेसिपी बनाई है कि एकदम मुंह में पानी आ गया।
0: या बगल वाला कुछ बना रहा हो, उसकी महक दूसरे के उसमें घुस जाए, घर में इसकी नाक में वो सुगंध ले गया, भाभी जी आपने बहुत अच्छा बनाया था, मुझे तो लग रहा था कि बस खाने को मिल जाए, मेरे तो मुंह में पानी आ गया था। ऐसी बातें भी होती है। और हमारे साथी लिखते हैं, मुंह में पानी आना मुहावरा हमारी सहज मानवीय प्रवृत्तियों को दर्शाता है। यह हमें याद दिलाता है कि इंसान चाहे कितना भी गंभीर क्यों ना हो, अच्छी चीजों को देखकर उसका मन मचल ही जाता है, और ये मुहावरा हमारी आम बोलचाल को सरल, रोचक और जीवंत भी बनाता है।
1: बिल्कुल। और एक और साथी हैं जो लिखते हैं कि ये हिंदी भाषा का बहुत ही

0: अच्छा मुहावरा है और इसका संबंध हमारे खाने पीने की इच्छाओं से है। और साथ ही इसके अभी इन्होंने पूरी लिखा हुआ चीजें लिखी हुई हैं कि किसी भी चीज के बारे में हम देखते हैं या सोचते हैं, जैसे कि गोलगप्पे हो गए, मिठाई या अचार, इनको देख के हमारा जो दिमाग है वो प्रतिक्रिया करता है और तुरंत हमारे मुंह में पानी आ जाता है।
1: भाई देखो, ये चाट पकौड़े ये सब जब जाते हैं ना मेले ठेले में जिसे कहते हैं बाजार में, तो ये सब चीजें देख के तो बिल्कुल पानी आना स्वाभाविक ही होता है। और मुंह में पानी आना ये मुहावरा लालच या इच्छा जैसी अमूर्त भावनाओं को एक शारीरिक क्रिया के माध्यम से बेहद सरलता से व्यक्त करता है। इसका प्रयोग केवल भोजन तक सीमित नहीं है, किसी भी आकर्षक वस्तु, धन या अवसर को देकर पैदा होने वाले लालच के लिए इसका खुलकर प्रयोग होता है। सरल शब्दों के कारण ये आम बोलचाल से लेकर साहित्यिक रचनाओं तक में समान रूप से बिल्कुल फिट बैठता है। और हम सोचते हैं यहां पर हम लोग एक गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।

तो हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे घर में बस हमारे बड़े भाई हैं जिनके मुंह में गोल गप्पे देखकर पानी आ जाता है। गोल गप्पे देखकर फिर वो नहीं रखेंगे, मतलब नहीं रखेंगे अब 80

0: साल के हो गए फिर भी नहीं मानते, मतलब रुकते नहीं हाँ. होंगे, उनको ऐसा लगता है ना.
1: एक और साथी जो कहते हैं कि मुंह में पानी आना इस मुहावरे का अर्थ है जीभ ललचाना या किसी चीज को खाने की तीव्र इच्छा होना. अक्सर हम सबके मुंह में कुछ न कुछ देखकर तो पानी आ ही जाता है. और मेरे लिए वो क्या है वो मैं बताती हूँ. मेरे लिए वो है घर का चावल दाल और चोखा, जिसको देखकर मुंह में पानी आ जाता है. बहुत सिंपल खाना है पर मुझे बहुत पसंद है. कह सकते हैं कि ये मुहावरा हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग होता है जब हम अपने किसी मनपसंद खाने की चीज को देखते हैं और हमारे मुंह में पानी आ जाता है. वाक्य प्रयोग मतलब अगर जब भी हम बारिश का मौसम हो तो क्या होता है चाय और पकौड़े की एकदम से लगता है ना याद आ जाती है. तो पकौड़ों की जब याद आती है या खुशबू आ रही होती है हमारे एकदम तो एकदम मुंह में पानी आ जाता है ना.
0: बिल्कुल. और एक साथी लिखते हैं कि भाई मुझे तो खाने पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है पर मिठाई देखकर मुंह में पानी जरूर आ जाता है. अच्छा कह भी रहे हैं खाने पीने में इंटरेस्ट है लेकिन मिठाई देख के हो जाता है पानी. ये तो भाई आपने कमाल की बात करी. और इसी तरह लिखते हैं कि बचपन में मैं कच्ची इमली और कच्ची बेरी जब भी देखता था मेरे मुंह में पानी आ जाता था, खूब चटकारे कर खाता था. मैं अभी सखी सहेली प्रोग्राम में ये कमेंट लिख रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, अभी भी मेरे मुंह में पानी आ गया. और कच्ची इमली और कच्ची कैरी खाना कम हो गया, नहीं तो ज्यादा खाने से दांत खट्टे हो जाते हैं. क्या बात है.
1: और एक हमारे और श्रोता है जो लिखते हैं कि मेरे पापा जब भी अपने हाथों से घेवर बनाते थे तो मेरे मुंह में पानी आ जाता था.
0: तो चलो भाई इसी के साथ साथ हम लोग एक गीत की ओर बढ़ चलते हैं.

0: तो आरती देखो, बातें करते करते प्रोग्राम का समय कैसे बीत चला पता ही नहीं चला। तो लेते हैं सबसे विदा सभी को मंजरी वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में आज के सितारे हैं जाने माने अभिनेता जमील खान। इनकी वेब सीरीज गुल्लक तो आपने देखी होगी, और भी बहुत सारी फिल्में हैं। तो आइए सुनते हैं अभिनेता जमील खान से अनुराधा उपाध्याय की ये बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक ऐसे कलाकार को जिन्होंने रंगमंच की सादगी से अपना सफर शुरू किया, सिनेमा और स्क्रीन पर अपने किरदारों से जाने गए और एक बहुत ही खूबसूरत शो गुल्लक के जरिए लाखों दिलों का हिस्सा बने हैं। हम बात कर रहे हैं गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान जी की। जमील खान जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का, मुझे आमंत्रित करने का। ये मेरे लिए बाइस फख्र चीज है कि मैं विविध भारती के लिए आज यहाँ मौजूद हूँ और दिल खोल के बातें करूंगा।
1: बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं, दिल खोल के बातें कीजिए, प्यार भरी बातें कीजिए। तो शुरुआत हम चाहेंगे, जैसे हम विविध भारती के परिसर में आए, बहुत सारी चीजें आपने देखी, कुछ रेडियो
2: मेरी यादें हैं उसकी बात है। तो देखिए, मैं बोर्डिंग स्कूल निकल गया था तीसरी क्लास से ही
1: जी,
2: तो उतना ज्यादा रेडियो से नाता नहीं रहा, लेकिन जब मैं छुट्टियों में आता था तो मुझे याद है हमारे घर में, मैं सबसे छोटा हूं भाइयों में, लेकिन जो म्यूजिक बजता था वो रेडियो पर बजता था आमतौर पे, या कैसेट प्लेयर्स होते थे उस जमाने में, तो वो भाई बहन वो चलाते थे। और रेडियो मुझे याद आता है कि अम्मी हमारी जो है ना वो गुनगुनाती थी हल्के हल्के,
1: कुछ भी काम करते हुए वो यादें हमेशा बरकरार रहती हैं।
2: तो वो एक बड़ी मीठी याद है कि अम्मी काम कर रही हैं और कुछ गुनगुना रही हैं, पीछे कहीं रेडियो बज रहा है और साथ साथ वो भी गुनगुना रही हैं। तो वो अम्मी से बहुत ज्यादा रिश्ता जुड़ा है रेडियो और गानों का, तो वो मेरी बहुत मीठी याद है बचपन की। और अब जो है वो गाड़ी में खास तौर से मैं रेडियो बहुत सुनता हूँ, और उसके अलावा घर पे कभी कदार चलता है। आजकल तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं जिस पर आप गाने सुनते हैं
1: जी।
2: लेकिन जो एक
1: सफर का साथी,
2: हाँ सफर का साथी जो है, और एक क्लासिकल जो गाने जो हैं जिनसे कि बहुत गहरा मरासिम है, वो विविध भारती जैसे चैनलों पर मिलता है। और पुराने गाने हों चाहे नए गाने, वो खासतौर से पुराने गाने

0: जो नॉस्टैल्जिया क्रिएट करते हैं वो ऐसे चैनलों पर ही सुनने को मिलता है और मैं सदा शुक्रगुजार रहूंगा।
1: नॉस्टैल्जिया की बात की तो आपके बचपन से शुरुआत करते हैं, आपने कहा ही बहुत कम उम्र में आप हॉस्टल चले गए थे, घर का परिवेश कैसा था और स्कूल के दौरान या उस वक्त? हॉस्टल की यादें तो खैर खूबसूरत रहती है, हमेशा याद रहती है, बट एक्टिंग का क्या तभी से आपने सोच लिया था अभिनय में जाना है, या तब तक किस तरह से आपका झुकाव इस तरफ हुआ, या घर से कैसा योगदान मिला?
0: मेरे पूरे खानदान में किसी का किसी भी आर्ट फॉर्म से कोई ताल्लुक नहीं रहा।
1: अच्छा,
0: दूर दूर तक बिजनेस व्यवसाय जो है वो रहा है। हालांकि मेरे नाना और दादा दोनों इंडियन पुलिस सर्विस में रहे हैं, और अगर सर्विस क्लास जो रहे हैं वो पुलिस सर्विस से ताल्लुक रहा है। मेरे दादा का इंतकाल हो गया काफी जल्दी, वो जब स्कूल में थे तो उन्होंने पढ़ाई भी कर रहे थे और नौकरी शुरू कर दी। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने ये कालीनों का बिजनेस शुरू किया, पहले ट्रेडिंग से शुरू की और फिर उसके बाद एक्सपोर्ट करने लगे, और एक्सपोर्ट करते करते ऊपर वाले का बड़ा करम रहा कि भदोही के टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर्स में उनका शुमार होने लगा।
1: क्या बात है।
0: अब मैं सुनता हूँ, ये सब मेरे बचपन की बात है, जो ये किस्से कहानियां फिर बाद में सुनता हूँ कि क्या जलवे थे मेरे फादर के
1: जी।
0: कि मुझे एक मेरे फादर भी 2009 में गुजरे, लेकिन उनकी मैयत में कब्रिस्तान हमारा अपना है, तो घर से कब्रिस्तान तक जो मैयत है ऐसे ही कांधे कांधे ही गई, चल नहीं पाई।
1: ये वो इज्जत है जो कमाई जाती है, वो प्यार है जो कमाया जाता है।
0: तो वहां से शुरुआत स्कूल से हुई मेरी, ड्रामे वगैरह करता था स्कूल में, और इस तरफ जाने का कोई इरादा ऐसा सच नहीं था, प्रोफेशन बनाने का इरादा तो बिल्कुल ही नहीं था। ये था कि भाई शौकिया तौर पे कभी थिएटर वेटर कर लिया करेंगे, और ऐसे ही मेरे घर वाले भी समझते थे कि भाई चलो शौक है, कर रहा है, अच्छी बात है। किसी ने कभी रोका टोका नहीं, खासतौर से मेरे घर वालों ने कभी कोई तंज भी नहीं कसा
1: जी।
0: तो वहां से शुरुआत हुई, और वहां से करते करते कॉलेज में आए, कॉलेज में भी किया, और मुंबई यूनिवर्सिटी में जब आया तो यहां भी किया। तो शुरुआत में तो मुझे लगता है कि इस लाइन में आने का बिल्कुल इरादा नहीं था। वो जब मैंने IIT का एग्जाम दिया, एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो JEE का होता है, उसमें जब नहीं हुआ मेरा, तब मैंने पलटी मारी। मैंने कहा हो गई पढ़ाई साइंसेस वगैरह की, अब जो मजा आता है जिसमें वो करते हैं, तब इस तरफ झुकाव हुआ। और इसी मकसद से ही मैं बॉम्बे आया, BA कंप्लीट करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने BA किया, शेरवुड कॉलेज नैनीताल से मैंने स्कूलिंग की 3 से 12 तक
1: जी।
0: और फिर यहाँ AMU से ग्रेजुएशन किया और पोस्ट ग्रेजुएशन बॉम्बे से किया मैंने
1: जी।
0: तो बॉम्बे आने का मकसद थिएटर करना था,
1: थिएटर था। और थिएटर जैसे कहते हैं ना कि जिस चीज को शिद्दत से चाहो वो जरूर मिलती है, तो मुझे लगता है आपने जैसे जिक्र किया कि आप नसीरुद्दीन शाह जो है उनके बारे में पढ़ते थे, उनसे कभी मिलने की तमन्ना थी, और यहाँ पर शायद वही खाब खींच कर लेकर आया।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि उनका साथ मिला मुझे, और शुरुआती दौर में ही मिल गया मुझे, वरना उन तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल काम होता
1: जी।
0: तो मैंने भी शुरुआत उनके साथ वहीं से की कि छोटे मोटे रोल क्राउड व्राउड में ऐसे वैसे करते करते फिर उसके बाद बड़े रोल मिलना शुरू हुए
1: जी।
0: और मेरा सबसे अहम काम जो उनके साथ रहा है वो 2 प्रोडक्शन जो मुझे खासतौर पर बहुत अच्छे लगते हैं, वो है मंटो इस्मत हाजिर हैं, और उसके बाद एक था कथा कोलाज।
1: कथा कोलाज के बारे में काफी सुना है
0: जी। तो नसीर भाई तो एक लिहाज से मेरे उस्ताद रहे हैं, और काफी कुछ सीखा है उनसे, और अभी भी सीख रहे हैं। ज्यादा उसके अंदर न जाते हुए मैं कहूंगा कि इंसान के तौर पे और नजरिए के तौर पे, उनके साथ अभी थिएटर तो नहीं करता मैं, 2009 के बाद छोड़ दिया था मैंने, लेकिन काफी कुछ मुतासर करने वाली शख्सियत है वो।
1: बिल्कुल। यहाँ पर हम अपने सुनने वालों को आपकी पसंद का कोई गीत सुनवाना चाहते हैं, तो आप बताइए आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनवाएं।
0: अगर बहुत पुराने दौर में जाएं तो मेरे ख्याल में मुगले आजम का वो गीत प्यार किया तो डरना,
1: प्यार किया तो डरना, आइकॉनिक गीत
0: जी।
1: बिल्कुल, सुनवाते हैं वो गीत।

0: बात करते लेट 90s की, जब आप मुंबई में आ चुके थे, तो उसी दौरान आप हम दिल दे चुके सनम, वो आपकी पहली फिल्म थी मेरे ख्याल से, और एड की दुनिया, ये दोनों कैसे चली? पहले क्या शुरुआत हुई और फिल्म में कैसे जाना हुआ?
1: देखिए, जब थिएटर कर रहा था तो इस बात का एहसास हो गया कि सिर्फ थिएटर से गुजारा तो नहीं हो पाएगा.
0: बिल्कुल.
1: और ये रियलिटी चेक मुझे यहां आने के बाद हुआ कि भाई ये गुजारा नहीं हो पाएगा, इससे तो कुछ और भी सोचना पड़ेगा. तो जो भी चीजें इससे जुड़ी हुई थी उसकी तरफ नजर किया मैंने. जैसे कि मैं डबिंग्स करता था अंग्रेजी फिल्में या जो फॉरेन लैंग्वेज फिल्में हो या अदर लैंग्वेजेस टू हिंदी
0: जी.
1: और मेरी पकड़ हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों पर खासी पकड़ है, तो वो आसानी मुझे हो गई डबिंग करने में. और डबिंग के साथ साथ एड्स में भी वॉइस देने की, वॉइस ओवर्स जो होते हैं, तो वो शुरू किया मैंने कमाई के नजरिए से. और वो यही आता था तो मैंने कहा कि इसी में ही जुड़े हुई चीजें जो हैं उसमें से ही कुछ आमदनी का जरिया देखा जाए. और उसके अलावा फिर थिएटर करता था मैं और लोगों से काम मांगना आता नहीं था. वो शायद अपब्रिंगिंग कह लीजिए, तरबियत जो है अपनी, या आई डोंट, मैं ईगो तो नहीं कहूंगा उसको, लेकिन एक हिचक आज तक है मुझे.
0: आज भी नहीं है?
1: आज भी वो हिचक है मेरे अंदर की.
0: अच्छा.
1: लोगों से काम मांगने का
0: जी.
1: इशारतन बोल देता हूँ लोगों से कि भाई आपके साथ काम जरूर करना चाहूंगा मैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कि आपका काम पसंद करता हूँ और आपके साथ जरूर काम करना चाहूंगा मैं. बुला लिया लोगों ने तो अच्छी बात है, भूल गए तो भूल गए. खैर, तो थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हों

0: चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो, तो वो सब थिएटर में शोज करते वक्त लोगों ने मुझे वहां देखा, समझा, बुलाया और काम से काम मिलने लगा। तो मैं कहूंगा कि थिएटर ही वो बुनियादी चीज है जिससे मेरे लिए और रास्ते खुले।
1: बिल्कुल।
0: तो मैं तकरीबन पूरा जो श्रेय है वो थिएटर को दूंगा अपने करियर।
1: वो एक नींव है
0: जी,
1: जहां से सब चीजें शुरुआत होती
0: जी,
1: है
0: जी,
1: और मजबूत पकड़ लिए हुए हैं
0: जी। तो हाँ, वही एक शुरुआत और बहुत सारे ब्रांच आउट जो हुए, जो आमदनी के जरिए बने, वो सब थिएटर के जरिए बने। लोगों ने खुद ही मुझसे, इनफैक्ट मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एड्स में वॉइसेस दे पाऊंगा, तो लोगों ने कहा कि भाई आप करिए, आपकी जबान अच्छी है, आप उच्चारण जो है आपका

0: भाई आप करिए, आपकी जबान अच्छी है, आप उच्चारण जो है आपका अच्छा है, क्लियर डायलॉग्स हैं आपके,
1: जी
0: तो करना चाहिए। थिएटर में उन्होंने देखा सुना मुझे, तो एज एन एक्टर बुलाया, एज ए वॉइस बुलाया, तो वैसे ही शुरू, और फिल्मों में भी उसी से ही रास्ते को ले। हाँ।
1: अभी आपकी पसंद का दूसरा गाना जो आप सुनवाना चाहते हैं श्रोताओं को?
0: इजाजत नाम की एक फिल्म है जिसमें मेरे ख्याल में सारे ही गाने बहुत प्यारे हैं, लेकिन जो मेरा सबसे पसंदीदा है वो है मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है।
1: क्या बात है, क्या पसंद है। सुनवाते हैं गीत
0: जी।

0: अभी हम बात करते हैं फिल्मों की एक लंबी फहरिस्त है
1: जी।
0: बेबी, टाइगर जिंदा है और चलते चलते, इसके अलावा गैंग्स ऑफ वासेपुर की बात तो होनी जरूरी है
1: जी।
0: तो ये जो एक लंबी फहरिस्त है, अब हर एक फिल्म का तो हम अभी बात नहीं कर पाएंगे
1: जी।
0: लेकिन दो अलग अलग छोर लेती हूं मैं
1: जी।
0: एक तो जहां से शुरुआत हुई संजय लीला भंसाली की फिल्म से
1: जी।
0: हम दिल दे चुके
1: रामलीला
0: सना, रामलीला भी उनके साथ हुई और दूसरा गैंग्स ऑफ वासेपुर
1: जी।
0: बिल्कुल अलग किरदार और एक कलाकार के लिए अलग अलग किरदार करना आसान है और वो एक अच्छी बात है, वो तो है ही
1: जी।
0: लेकिन दो अलग अलग तरह के डायरेक्टर्स, दोनों का काम करने का तरीका एकदम अलग
1: जी।
0: तो क्या डिफरेंस है और कुछ दिलचस्प किस्से दोनों के सेट से, कुछ ऐसा जो याद रह जाए, कुछ ऐसा आप साझा करना चाहेंगे?
1: देखिए संजय भंसाली जो है वो बहुत ही बारीकी में घुसने वाले डायरेक्टर हैं और उनका विजन बहुत बड़ा और बहुत रिच होता है, बहुत ग्लॉसी, बहुत ही ग्लैमरस। गुर्बत भी जो है ना, गरीबी जो है वो भी उनके फिल्मों में बड़ी स्टाइलिश दिखेगी।
0: बिल्कुल जी, तो लार्जर देन लाइफ,
1: लार्जर देन लाइफ
0: जी।
1: तो वो आदमी पिक्चर फ्रेम्स बनाता है, खूबसूरती तो भर भर के होती है उनकी फिल्मों में
0: जी।
1: और उनका तरीका जो है वो वही उसको

0: जस्टिफाई कर सकते हैं, जिस तरीका का कैनवस वो पेंट करते हैं, वो हर चीज में उनका दखल होता है। उनके साथ काम किया हुआ आदमी उनके साथ जब काम करता है तो वो अलग दिखता है, और किसी और के साथ काम करता है तो वो अलग दिखता है। उसकी वजह यह है कि वो डायरेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन उनका हर चीज में होता है, और उनका दखल इस हद तक होता है कि भाई वो कोई चीज बिगड़ने देना नहीं चाहते। वो म्यूजिक कंपोज भी करते हैं अब तो,
1: बिल्कुल,
0: और बाकी तमाम चीजें तो है ही, तो उनका जो अंदाज है वो काफी नपातुला है, और उनको जो चाहिए वो ढूंढते हैं और वो पा लेते हैं। उसको पाने में चाहे वो दो टेक लगे चाहे 200 टेक लगे,
1: अच्छा
0: जब तक वो पाते नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ते
1: जी।
0: और इसलिए वो अच्छे एक्टर भी ढूंढते हैं
1: जी,
0: जो उनको वो चीज दे सके, और जो वो सोच रहे हैं या देख रहे हैं या विजुलाइज कर रहे हैं उसको वो एक्टर उसी तरीके से दे सके। और अपने एक्टरों से बेनतहा मोहब्बत करते हैं वो बात अलग है कि अगर आप एक्टर अच्छे नहीं है तो जाहिर है फिर डांट भी पड़ेगी आपको, जायज भी है।
1: बिल्कुल।
0: और अनुराग का जहां तक ताल्लुक है, अनुराग बहुत ही फ्री फ्लोइंग डायरेक्टर है। अनुराग कोई चीज डिसाइड नहीं करता है, वो एक्टर को खुली छूट देता है और वो रियलिज्म में ज्यादा घुसता है। तो अनुराग उस लिहाज से अच्छा है कि वहां पर भी आपको अच्छे एक्टर की जरूरत पड़ेगी,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि एक्टर अगर इम्प्रोवाइज नहीं कर पा रहा है तो फिर अनुराग के लिए वो बेमानी है।
1: स्पॉन्टेनियस,
0: हाँ, स्पॉन्टेनियस बिल्कुल, और किरदार बगैर छोड़े हुए या बगैर उलझे हुए कुछ अच्छी अच्छी मैजिकल चीजें भी मिल जाती हैं उसमें। कभी कभी अच्छी चीजें नहीं भी होती तो अगला टेक कर लेता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन तो फर्क बेसिक यही है कि वो बहुत ही रियल रस्टिक अनुराग का फील होता है और बहुत ही इम्प्रोवाइजेशनल तरीका है उसका काम करने का।
1: कोई चैलेंजिंग रोल ऐसा जिसके लिए तैयारी तो खैर हर रोल हर कैरेक्टर के लिए चाहिए, पर कोई ऐसा चैलेंजिंग रोल कैरेक्टर जिसके बारे में आप बात करना चाहें जिसको बहुत तैयारी की जरूरत पड़ी और इस तरह का कुछ अनुभव?
0: फिल्मों में मुझे इतनी दुश्वारी पेश नहीं आई कभी भी।
1: श्रीकांत में आपने काम किया?
0: श्रीकांत, हाँ, श्रीकांत, श्रीकांत में कह सकता हूँ कि थोड़ा सा टफ था
1: जी,
0: क्योंकि एक तो उम्र ज्यादा और क्या कहते हैं ऐसी शख्सियत
1: जी,
0: तो बहुत ही अजीम बहुत ही महान शख्सियत, और अब भी सबने देखा है,
1: हाँ, हाँ,
0: सुना है, देखा है,
1: बिल्कुल,
0: तो उसको उतारना थोड़ा चैलेंजिंग था और मुश्किल आई पेश। लेकिन उसमें जो डायरेक्टर थे तुषार, उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए उस बात की।
1: अच्छा।
0: उन्होंने मुझे कंफर्टेबल कर, मैंने कहा यार भाई ये बड़ा मुश्किल काम है, एक तो साउथ इंडियन, और अच्छी बात ये हुई कि वो मुझे उसमें अंग्रेजी भी, क्योंकि वो हिंदी इतनी अच्छी तरह जानते नहीं थे,
1: बिल्कुल,
0: तो अंग्रेजी का इस्तेमाल भी था, तो उस तरीके से थोड़ा सा बच गया। और बहुत ज्यादा लंबा रोल नहीं था, मैंने कहा कि भाई ठीक है चलो ये मैनेज हो जाएगा
1: जी।
0: लेकिन हाँ आपने बिल्कुल सही कहा कि वो थोड़ा चैलेंजिंग था और थोड़ा मुझे डराया भी उसने।
1: अच्छा, ज्यादा तैयारी के साथ उतरे आप। आपकी पसंद का कौन सा गाना अब हम सुनवाना चाहेंगे?
0: चिंगारी कोई भड़के।
1: क्या बात है, आपकी पसंद, बिल्कुल सुनवाते हैं गाना।

0: आज अब बातचीत के दौरान जब बात गुल्लक की ना हो तो भाई इनकम्प्लीट है, बिल्कुल अधूरी है। गुल्लक जिससे बहुत ज्यादा प्यार मिला, संतोष मिश्रा का किरदार, अब मैं पूछना चाहूंगी कि कितना संतोष मिला आपको वो किरदार करके या वो सीरीज करके, कैसा लगता है, कैसा अनुभव है?
1: बहुत ज्यादा संतोष मिलता है मुझे संतोष मिश्रा का किरदार अदा करके।
0: कितना रिलेट कर पाते हैं, कितना उसके नजदीक हैं, तैयारी कैसी है, सेट का माहौल कैसा, क्योंकि हमने तो बहुत मजे से देखी है और आगे भी जो आएंगे उसके लिए भी हम इंतजार कर रहे हैं, उसके जो एपिसोड्स आएंगे।
1: जी, दो चीजें देखिए उसमें, शुरू में मेहनत ज्यादा करने की जरूरत पड़ी, अब तो वो हिस्सा हो गया है किरदार का,
0: घर घर का हिस्सा हो गया,
1: घर घर का हिस्सा हो गया, और मेरे लिए भी एज ए कैरेक्टर अब वो आसान हो गया क्योंकि 5 सीजन कर लिए हम लोगों ने। लेकिन शुरुआती दौर पे जो दुश्वारी पेश आई या जो चैलेंजिंग लगा मुझे उसमें, वो एक तो थी उसकी जबान, ये मेरी नॉर्मल जबान है,
0: बिल्कुल
1: है ना, बातचीत की जबान, लेकिन उसमें मुझे अपना उच्चारण बिगाड़ना पड़ा, स श ज ज, और मेरे नुक्ते सटीक लगते हैं, मेरी जाती जिंदगी में बिल्कुल सटीक नुक्ते लगते हैं, कहीं गड़बड़ नहीं होती, लेकिन इसमें वो नुक्ते हटाने थे, तो वो दुश्वारी आती थी हमेशा शुरू शुरू में। और उसके अलावा मिडिल क्लास की जिंदगी देखी है मैंने अपने इर्द गिर्द, लेकिन उसको महसूस नहीं किया था। एक लिहाज से कहूं कि काफी समृद्ध परिवार से हूं और किसी तरीके की कोई पैसे की कमी कभी मेरे माँ बाप ने नहीं रखी
0: जी,
1: लेकिन तरबियत जो थी ना वो ऐसी थी कि पैसे की अहमियत को समझना, वो उसका एहसास कैसे आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन आ गया था वो। तो वो एहसास जब आदमी ऊपर होता है ना, जब बहुत कुछ होता है और फिर उसके बाद जब नीचे आता है, तब समझ में आता है कि भाई एक्चुअल जिंदगी क्या है,
0: क्या है, बिल्कुल
1: क्या
0: चुनौतियां हैं,
1: क्या चुनौतियां हैं। तो उतार में वो उसका एहसास हुआ, खास तौर पे जब मैं खुद अपने पैरों पर आया, जब घर से पैसे लेने बंद किए, तब एक एक पाई की अहमियत समझ में आई।
0: बिल्कुल।
1: तो इसलिए जो शुरुआती दौर मेरा बॉम्बे का रहा है, जो मुश्किल दिन रहे हैं, वो एहसास वो इमोशन वहां से आता है, और किरदार के अंदर कैसे क्या डाला गया, वो बहुत सारे मुख्तलिफ रिश्तेदार हों या दोस्तों के माँ बाप हों या मेरे अपने माँ बाप हों, वहां से उठाई हुई चीजें हैं। और एहसास तो जो है वो, जब आप एज एन एक्टर, मुझे लगता है कि अगर आप हसास नहीं है तो अच्छे एक्टर मेरे ख्याल में

0: नहीं हो पाएंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एक बहुत ही जरूरी बेसिक चीज है।
0: जी जी, और आंख कान खुले रखना ताकि जो कुछ आपके इर्द गिर्द हो रहा है उसको देखते रहें आप और उसको जज्ब करते रहें, अपने अंदर बिठाते रहें। वो जखीरा बनता है आपका, कब क्या चीज की जरूरत पड़ जाएगी आप वहां से निकाल के अपने किरदार में डालते हैं।
1: और यहाँ पर मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि आपने पिता का किरदार निभाया है, तो आपके पिता के साथ आपका कुछ ऐसे अनुभव या कुछ ऐसा साझा कर, एक अलग तरह का रिश्ता, कुछ ऐसी इमोशनल बातें जो आप शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, उनसे क्या सीख मिली है? क्योंकि ये जो कहानी है, धारावाहिक है गुल्लक, ये भी एक सीख देता है, तो ऐसी कोई सीख जो आप देना चाहते हैं या फिर जो आपको अपने पिता से मिली है?
0: बहुत ही इमोशनल है क्योंकि मेरे फादर से मेरा बहुत गहरा लगाव है। और एक बात जो मैं कहना चाहूंगा कि इंसान को कभी अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी से पेश नहीं आना चाहिए। बड़ी छोटी सी बात है, मैं घर गया हुआ था, बॉम्बे आने की तैयारी में था, सामान वामान पैक कर रहा था, तो ट्रेन का टाइम हो गया था, तो अबू आए कहने कि अरे जल्दी करो ट्रेन छूट जाएगी। और मेरे, क्योंकि मैं हड़बड़ाहट में था, अम्मी भी थी पैक करवा रही थी, ये वो ये रख लो वो रख लो अम्मी, तो कुछ मुंह से मेरे ऐसे निकल गया कि अबू पगलवाई मत, मैं कुछ भूल जाऊंगा। तो पगलवाइए मत, वो जो शब्द था ना,
1: बहुत चीजों का ध्यान रखना चाहिए बात करते वक्त, वो कहीं ना कहीं सिखाता है।
0: तो मैं यही कहूंगा कि इज्जत से पेश आना चाहिए माँ बाप से हमेशा।
1: बिल्कुल,
0: और जितनी मोहब्बत आपको आपके माँ बाप दे सकते हैं उससे ज्यादा मोहब्बत आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। तो यही सीख है, और मैं यही कहूंगा कि माँ बाप आपकी तरबियत, आपकी करियर, आपके किरदार को बनाते हैं, और अच्छे माँ बाप वही हैं जो अपने बच्चों की जरूरत, उनकी एम्बिशंस को सपोर्ट करते हैं और उनका साथ देते हैं हर लिहाज से।
1: बिल्कुल। एक और आपने फिल्मों की बातें की, फिल्म एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी आपने किया, बीनीथ अ सी ऑफ लाइट्स,
0: राइट,
1: उसके बारे में कुछ बताइए, वहां का माहौल अलग है, किस तरह से अलग था?
0: अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। देखिए वहां पर ये बड़ा इंडिपेंडेंट फिल्म थी एक तरीके से, और जो तरीका है उनका शूट करने का वो बहुत ही इकोनॉमिकल, बहुत ही प्रिसाइस, जिसमें वेस्टेज ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल में बमुश्किल 25-30 लोगों का यूनिट रहा होगा, और बहुत शांति से, बहुत सुकून से काम हुआ। हर आदमी अब काम से काम रखता था और वक्त पर पहुंचता था, वक्त से काम होता था और वक्त पर खत्म भी हो जाता था
1: जी।
0: तो वो एक जो प्रोफेशनलिज्म है ना, वो वहां पर ज्यादा दिखी मुझे। तो फर्क ये इतना सा है। और बेसिकली परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो मैं कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है
1: जी। और कोई, अभी हमने थिएटर की बात की, हमने एड्स की बात की, फिल्मों की बात की, और कौन सा रास्ता जहां पर अभी आपको जाना है कि ये भी ट्राई करना है, इस तरफ भी जाना है, और आपके भविष्य के प्रोजेक्ट्स के बारे में आप बताना चाहें?
0: कोई ऐसा, मतलब थिएटर वापस करना चाहूंगा मैं, कोई कमाल की चीज आई मेरे सामने। तो उसके अलावा किरदार बहुत सारे हैं हमारे समाज में भी और हमारी कहानियों में भी, जिनको मैं करना चाहूंगा, जो कि अब गुल्लक से बेहतर फादर तो मुझे नहीं लगता, फादर का रोल मुझे शायद मिल पाएगा, अगर कोई लिख पाए उससे बेहतर तो मैं जरूर करना चाहूंगा, लेकिन सिर्फ बाप के रोल तो मुझे नहीं करने हैं कि भाई फला के बाप है कर लिए। मैं सैकड़ों मना कर चुका हूं, मना करता रहूंगा उसको
1: जी।
0: लेकिन उससे अलग कलर कुछ हो, कुछ अलग जॉनर के किरदार हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मच्योर लव स्टोरी में करना जरूर चाहूंगा। तो हाँ, वो एक डेफिनेटली मेरे बकेट लिस्ट में है।
1: बिल्कुल, हम चाहेंगे कि जो चीज की ख्वाहिश आप कर रहे हैं वो जरूर आपको मिले। अभी क्या आने वाला है, किसका इंतजार हम करें?
0: अभी कुछ एक चीजें हैं, कुछ एक फिल्में हैं। सूरज बड़जत्या साहब के साथ एक फिल्म है, उसमें एक गेस्ट अपीयरेंस किया है मैंने, और एक फिल्म जो कर रहा हूँ, जुगाड़ू नाम की एक फिल्म है, वो बावेजा फिल्म्स और टिप्स की है। और अभी बाकी जो वेब शोज में से तो कुछ एक तैयार हैं, लेकिन वो कब आएंगे मुझे नहीं मालूम, वो डेट अनाउंस

0: ये तभी पता चलेगा।
1: जी
0: और कुछ एक इंडिपेंडेंट फिल्म्स हैं जो मैंने की हैं, एक अंग्रेजी में भी की है, तो वो हैं दो इंडिपेंडेंट फिल्म्स हैं, एक अंग्रेजी फिल्म है इंडिपेंडेंट फिल्म, और बाकी कमर्शियल फिल्म्स भी हैं। और वेब शोज में से तो गुल्लक का सीजन 6 आएगा अगले साल,
1: उसका इंतजार रहेगा हमें।
0: वो साल के आखिर में वो शूट करेंगे हम लोग, अभी दिखा जा रहा है वो।
1: जी
0: तो यही सब है, और उम्मीद करता हूँ कि और अच्छे अच्छे किरदार आए। आपकी दुआएं रहीं तो इंशाल्लाह
1: हमें भी इंतजार रहेगा
0: जरूर।
1: तो आपका कोई पसंदीदा गीत जो आप सुनवाना चाहते हैं उस बारे में बताइए।
0: मेरे बचपन में एक गाना मैं ऐसे शौकिया तौर पे बहुत गाया करता था, बच्चन साहब मेरे काफी फेवरेट रहे, तो वो फिल्म मैंने न जाने कितनी बार देखी, अमर अकबर एंथनी
1: जी,
0: तो उसका अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा होती नो, अमर अकबर एंथनी,
1: बिल्कुल सुनवाते हैं गीत।

0: बच्चन साहब की बात निकली है तो एक वाकया मुझे याद आता है कि आप एक ही स्कूल से हैं बच्चन साहब, जहां से पढ़े हैं, उस बारे में कुछ बताइए। उसके बाद आपकी मुलाकात भी हुई है आपकी मुंबई में, तो वो एक इंटरेस्टिंग सा एक किस्सा है।
1: जी, बच्चन साहब शेरवुड कॉलेज नैनीताल से वो भी पढ़े हुए हैं और मैं भी
0: जी।
1: उनसे मुलाकात मेरी चीनी कम नाम की एक फिल्म थी जो मैंने की थी, उसमें हुई और बड़ी अच्छी मुलाकात रही। और कमाल की बात है कि वो भूलते नहीं
0: बिल्कुल।
1: और उसके बाद एक एड भी किया हमने साथ में और उन्होंने पहचान लिया, जबकि अलग गेटअप में था मैं। और फिर उसके बाद हमने एक फिल्म की थी गणपत, अभी जो आई थी कुछ साल पहले
0: जी,
1: उसमें वो भी थे। तो मुझे लगा कि पता नहीं भूल पाल गए होंगे, लेकिन उन्होंने, उनका बड़प्पन कि डॉक्टर से बात हो रही होगी वो गणपत के सेट पर भी, तो तपाक से गले लगाया उन्होंने मुझे कि यू डूइंग वंडरफुल वर्क, सो प्राउड ऑफ यू। तो जाहिर है बच्चन साहब है, तो बच्चन साहब से जाहिर है एक क्योंकि स्कूली नाता भी है और उनको आइडियलाइज भी किया है, उनकी फिल्में देख देख के बड़े हुए हैं
0: जी,
1: तो एक तरीके से बहुत बड़े आइडल है हमारे, उनकी तमाम फिल्में देखी हैं मैंने। और बच्चन साहब से मिलके हमेशा अच्छा लगता है। बच्चन साहब जैसा कि मैंने कहा कि वो ऐसी शख्सियत है कि वो रूम में दाखिल होते हैं तो हर आदमी न चाह के भी खड़ा हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और लेजेंड है वो, तो बच्चन साहब बहुत कमाल के इंसान भी हैं, तो उनसे मिलकर हमेशा अच्छा लगता है।
0: उसके अलावा शूटिंग के दौरान बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हुए होंगे, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर का भी एक सीन है जहां पर आप जख्मी भी हो गए थे, एक किस्सा ऐसा कुछ था
1: जी,
0: वो बताना चाहेंगे। तो शूटिंग के दौरान ये जो चुनौतियां आती है
1: जी,
0: कभी कभी मजेदार भी होती है
1: जी, जी।
0: उस बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ, वो चोट मुझे आई थी, दरअसल एक सीन था जिसमें एक ठेला सा खड़ा हुआ है, वो तीन पहिये के रिक्शे वो होते ना सामान रखने वाले, तो वो एक रखा हुआ था। तो कुछ बात हुई कि भाई इन दोनों रिक्शों के बीच में से निकल के जाना है, तो एक टेक हो गया। फिर उसके बाद वो रिक्शा वहां पर पड़ा, मैंने कहा यार मैं रिक्शे के ऊपर जाके और वहां से छलांग मार के निकलता हूं। तो अनुराग ने कहा कि सर देख लीजिए मतलब, तो मैंने कहा हाँ यार करते हैं, मजा आएगा। तो एक टेक किया मैंने, तो कहता सर बढ़िया लग रहा है एक और करते हैं। वो लालची डायरेक्टर है ना, उसको चीज अच्छी लगती है तो फिर वो आगे बढ़ता है,
0: एक और
1: हाँ तो सर एक और करते हैं
0: जी,
1: मतलब मुझे ऐसा मजा आ रहा है कुछ एक और करते हैं। तो अगले वाले टेक में वो इधर उधर लोग पीछे पड़े हुए मेरा पीछा करने मारने के लिए, अब क्यों मुझे भी हौसला मिल गया तो मैंने छलांग और ऊंची लगा दी। और जब मैं लैंड किया, मैं चप्पल पहने हुए था, जब लैंड किया तो वो पसीने से पांव थोड़ा सा स्लिप हुआ और
0: फिसल गया
1: और मेरे एंकल जो है उसमें मोच आई टली, लेकिन मैंने वो शॉट कंप्लीट किया। ऐसा नहीं कि वहां मोच आई तो मैं वहीं बैठ गया, वो शॉट कंप्लीट किया और एक चढ़ान था ऊपर, टीला सा था, उस पर चढ़ के दूसरी तरफ कूदना था और वहां शॉट खत्म था। तो उस टीले पर चढ़ के मैं नीचे छलांग भी मार दी। फिर जब मैं वापस आ रहा था वहां से, तो उसने तो देख लिया था शॉट मॉनिटर में, आके मैं जब पूछा उसने कि भाई आई ओके, मैंने कहा उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और मैं बैठा नीचे, बैठते बैठते मैं बेहोश हो गया
0: बेहोश हो गया
1: कुछ मेरे ख्याल एक मिनट के लिए बेहोश रहा हूँ मैं। फिर होश आया तो करें सर उसने मुझे, फिर उसके बाद लिटाया वटाया तो पानी वानी जो कुछ भी है, फिर वो शॉट दिखाया उसने कि सर देखिए ऐसे हुआ था, ये वो जो आपका पाँव है ऐसे स्लिप हुआ चप्पल से। तो उसके बाद के सीन हमारे कुछ एक, क्योंकि चोट लग गई थी और लोगों को शायद पता न चले, लेकिन एक हल्का सा एक लिम्प है
0: अच्छा।
1: हाँ कुछ कुछ एक सीन में,
0: अब हम देखेंगे फिर से गौर से उसे
1: और कुछ एक सीन में फिर नहीं रखा था मुझे क्योंकि भाई चोट लगी हुई थी
0: जी।

0: जी
1: तो वो मनोज भाई के साथ जो मोटरसाइकिल पे पीछे बम फेंक रहे हैं वो सब मुझे होना था लेकिन चोट की वजह से वो नहीं कर पाया था। और उसके अलावा एक और किस्सा था जिसमें कि जीप में हम लोग पहलवान का पीछा कर रहे हैं मारने के लिए और वो ऐसे क्या कहते हैं सरिये निकले हैं और बांस वास निकला हुआ है दुकानों का घरों का और जीप जा रही है और मैं बाहर निकल के ऊपर देख चीख रहा हूँ चिल्ला रहा हूँ उसको पहलवान को और मुझे दिख रहा है कि ऐसे बांस और ये सब सलिये वगैरह निकले हुए। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं ये मुझे लगेगा मेरा सर फटेगा या कुछ होगा तो सामने दिख रहा है मुझे जैसे जीप जाती गई वो इंस्टेंट जो दिमाग में आता है कि मैं फौरन जीप के अंदर घुसा वापस और जब वो गुजर गया फिर वापस आया तो वो
0: एक रिफ्लेक्स
1: रिफ्लेक्स एक्शन जो है उससे जान बची। लेकिन ये है कि वही है कि यू गॉट टू बी अवेयर एंड अलाइव टू द सिचुएशन कि आप एकदम टू बी इन द मोमेंट कि आपको जैसा जो आ रहा है उससे डील करिए रियल टाइम में
0: बिल्कुल
1: और एकदम रियल तरीके से कि अगर एक्चुअली अगर होता तो यही करते ना आप
0: बिल्कुल।
1: अब उसकी शॉट रोक नहीं दिया कि अरे ये वहां से रोको यार भाई नहीं जी, आ रहा है तो ठीक है डील करो ना उससे
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो वही है सही तरीके की एक्टिंग मुझे लगता है
0: बिल्कुल। कोई एक तरह का मेथड आप फॉलो नहीं करते जिस तरह से जो आ रहा है उस तरीके से?
1: बेसिकली देखिए मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो शब्द है ना जो स्क्रिप्ट है वो बहुत कुछ बोलती है और डायलॉग्स बहुत कुछ देते हैं मुझे
0: जी।
1: अब एक अच्छा एक्टर जो होता है डायलॉग्स के बीच में जो होता है ना कि बगैर बोले बहुत सारी चीजें कन्वे करता है तो न बोल के भी कन्वे करना और एज एन एक्टर मुझे शब्द जो है जो अल्फाज हैं वो बहुत कुछ देते हैं अपने किरदार के बारे में और अपने रिस्पॉन्स के बारे में तो मैं बहुत कुछ उनसे लेता हूं। और जहां तक ताल्लुक है कि अलग अलग तरीके यूज करने का तो वो जिस सीन में जो सही बैठता है उसको इस्तेमाल करता हूं और कोई एक मेथड नहीं है कि ये तरीके से ही मैं चलता हूं
0: जी।
1: कुछ एक तरीके होते हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा इंटरनल काम करना पड़ता है
0: बिल्कुल
1: तो वो मैं दुनिया को नहीं पता है डायरेक्टर को नहीं पता है कि मेरी तैयारी क्या है और उसको पता करने की जरूरत भी नहीं है
0: जी।
1: और कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो एक्सटर्नली आप काम करते हैं कि आप अपनी जबान पर या आप अपने बॉडी लैंग्वेज में या आप जो पहनावा है आपका उससे आपकी चाल बदल जाती है।
0: आजकल वर्कशॉप्स भी होते हैं फिल्मों से पहले या सीरीज से पहले
1: जी,
0: तो गुल्लक की तैयारी के लिए भी ऐसा कुछ वर्कशॉप हुआ?
1: जी हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ते हैं उस पर डिस्कशंस होते हैं और पहले सीजन के पहले कुछ एक चीजें कुछ एक होता ना कि केमिस्ट्री बनाने के लिए
0: जी।
1: कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह भी किए हमने क्योंकि नए नए थे सारे और चलिए गीतांजलि और मैं तो पुराने एक्टर्स हैं किया हुआ है काम लेकिन ये जो हमारे बच्चे हैं अमन और अनु इनके साथ कैसे केमिस्ट्री बिठानी है उस लिहाज से तो बेसिकली टू अंडरस्टैंड ईच अदर अपने आप एक दूसरे को समझना
0: जी।
1: क्योंकि एक परिवार है तो अच्छे से समझना और अच्छे से वो केमिस्ट्री बनाना वो उस चीज की वर्कशॉप जो पहले सीजन के पहले हुई थी
0: जी।
1: वो वहीं से वो सुर बैठ गया और फिर शूट करके टाइम तो और ज्यादा बैठ गया फिर उसके बाद तो फिर दौड़ने लगा
0: बिल्कुल दौड़ने लगा और हम देख ही रहे हैं कैसे दौड़ रहा है। यहाँ पर एक गीत आपकी पसंद का

0: गुल्लक में कितना स्क्रिप्ट का योगदान है, कितना इम्प्रोवाइजेशन है?
1: गुल्लक में स्क्रिप्ट, मैं कहूंगा बहुत ज्यादा योगदान स्क्रिप्ट का ही है। अगर वो बुनियाद हमें नहीं मिलती तो हम कुछ नहीं कर सकते
0: जी,
1: तो स्क्रिप्ट का तो बहुत ज्यादा योगदान है। और जहां तक पर्सनल टचेस की बात है तो कुछ एक चीजें हम लोग इम्प्रोवाइज करते हैं
0: जी,
1: कुछ एक डायलॉग्स भी इम्प्रोवाइज करते हैं, कुछ एक मोमेंट्स भी हम क्रिएट करते हैं, तो वो एक मिली जुली एफर्ट है। लेकिन हाँ, बुनियादी तौर पे स्क्रिप्ट निहायत ही अच्छी होती है गुल्लक की। और मुझे लगता है कि इसी वजह से भी, मैं ये तो नहीं कहूँ इसी वजह से ही, लेकिन बहुत ज्यादा परसेंटेज जो है वो स्क्रिप्ट को जाता है गुल्लक की कामयाबी में।
0: और गुल्लक ने घर घर में जो आपको पहचान बनाई है आपकी, उसके बाद ऐसा कुछ फैन मोमेंट जो आपको याद आता है, संतोष मिश्रा के नाम पर आपको पहचाना गया कहीं, इस तरह का कुछ फैन मोमेंट?
1: हाँ, देखिए बहुत सारा काम रहा है मेरा। थिएटर में जो पहली पहचान थिएटर से मिली, लेकिन वो आपको मास पहचान नहीं मिलती है बॉम्बे के बाहर या थिएटर सर्किट के बाहर। कुछ एक फिल्में आई उसके बाद जो बहुत मकबूल हुई, लोग उससे याद करते थे, इज्जत भी करते थे, और काम के लिहाज से कि भाई ये एक मजबूत एक्टर है, वो एक इमेज बन गई थी। लेकिन गुल्लक से मुझे जो फर्क जो महसूस होता है वो है पॉपुलैरिटी के अलावा एक जो मोहब्बत मिलती है ना, और जो इज्जत मिलती है, और जो अपनाइयत मिलती है, और दिल से बनावटी नहीं, वो गुल्लक ने जरूर दिया है मुझे। और इसको लेके जो भी मिलता है बड़ी मोहब्बत से मिलता है, और वो ऐसा मिलता है जैसे संतोष मिश्रा उनके अपने हो।
0: बिल्कुल,
1: चाहे वो भाई के तौर पे मिले, चाहे बेटे के तौर पे मिले, चाहे बाप के तौर पे मिले। बहुत सारे बुजुर्गवार हैं जो देख के मिलते हैं, या कभी ऐसा तो कहते हैं यार किरदार हो तो ऐसा हो।
0: एक एयरपोर्ट का किस्सा आपने साझा किया था, इस बारे में कुछ बताएं?
1: हाँ, वो भी देखिए ये बेइंतहाई मोहब्बत की बात है कि एयरपोर्ट पे मैं था और एक शख्स सामने से आए वो, और मेरे पांव छूने लगे, तो मैंने उनको उठाया। मैंने कहा नहीं भाई ऐसा मत करिए आप, तो वो गले लग गए, और गले लगे रहे काफी देर तक। और फिर उसके बाद जैसे ही अलग हुए वो हाथ जोड़ के उन्होंने कहा कि थैंक यू सर, और उनकी आंखें नम थी, और बस थैंक यू कह के चले गए।
0: मुझे लगता है ये अवार्ड से भी कहीं गुना ज्यादा ये नवाजा जाता है इस प्यार
1: जी से। जी जी, और कमाल की चीज है वो कभी ऐसा एहसास मुझे नहीं हुआ कि यार ये तो एक एकदम स्ट्रेंजर, एक अजनबी शख्स आपके गले लग जाए और फिर उसके बाद इतना इमोशनल हो जाए और कुछ बोले नहीं, सिर्फ अपनी खामोशी में बहुत कुछ कह के चला गया वो।
0: बिल्कुल। और एक सवाल मैं जानना चाहती हूँ।

0: कि संतोष मिश्रा स्क्रीन पर और आप में कितना मिलता जुलता है, आप घर पे कैसे हैं?
1: देखिए मैं मस्तीखोर तो हूं, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये राइटर्स भी जो हैं मुझे देख के काफी कुछ लिखते हैं कि किरदार को किस तरीके से आगे बढ़ाना है।
0: जी
1: लेकिन संतोष मिश्रा और जमील खान में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जो बर्ताव है संतोष मिश्रा का,
0: जी
1: बहुत ही सेंसिटिव आदमी हूं मैं, तो मैं हर इंसान को लेके कोशिश करता हूं कि उसको समझूं, जटिल न रहूं इस बात का कि मैं सोच रहा हूं या समझ रहा हूं वही सही है। दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे का नजरिया और दूसरे की जगह खड़े होके या दूसरे की जगह अपने आप को डाल के रख के इस बात को
0: उस
1: समझना कि
0: दृष्टिकोण से देखना।
1: हाँ कि ये जो सोच रहा है या कह रहा है या कह रही है इसको भी समझना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: और मस्तीखोरी तो भरी है मेरे अंदर, मैं बच्चों के साथ बच्चा बन जाता हूं और मैं सीरियस कम रहता हूं लाइफ में, और जिंदगी को मैं बहुत ज्यादा सीरियसली स्ट्रेस नहीं लेता मैं, और स्ट्रेस देता भी नहीं मैं। बहुत सादगी से और बहुत ईमानदारी से और इस तरीके से काम भी करता हूं कि किसी को मेरी वजह से कोई दुश्वारी पेश ना आए,
0: बिल्कुल।
1: कोई प्रॉब्लम न क्रिएट हो, या कोई कोई एज नहीं रहते मेरे कि कोई होता है ना कि भाई एक एरोगेंस हो या कोई ऐसा, भाई कम में भी काम हो जाता है, इतना
0: जी
1: कुछ करने की जरूरत नहीं है।
0: जी
1: स्टारपना नहीं दिखाता मैं कभी भी, सादगी से
0: चलते चलते हमारे श्रोताओं को प्यार भरा संदेश जो आप देना चाहते हैं।
1: यही कहूंगा कि भाई दुनिया भर में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, जितना अमन से, शांति से, प्यार से, मोहब्बत से, एकता के साथ, मोहब्बत के साथ, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो पड़ोस हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो दुनिया हो, इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं है। और एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे का सहारा बन के, कभी छोटा भाई बन के तो कभी बड़ा भाई बन के, एक दूसरे को हौसला देते हुए आगे बढ़े,
0: जी
1: इसी में हम सबकी भलाई है।
0: बहुत ही सुंदर संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अभिनेता जमील खान से अनुराधा उपाध्याय की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
2: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

FM 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5 बजे हैं। आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। आज की सभा में शेष मुख्य कार्यक्रम, उनका प्रसारण समय।

अब से कुछ ही पलों में हमारी बहनें सुनेंगी उनका अपना कार्यक्रम नारी लोक। प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया 6:15 पर। फिल्म संगीत का आनंद रात्रि 10 बजे।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी आप सुनेंगे 7 बजे हमारे जयपुर केंद्र से। हिंदी में प्रादेशिक समाचार 7 में जिले की चिट्ठी 6:30 पर जयपुर केंद्र से आप सुन पाएंगे।

विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे 5:30 पर रात्रि ठीक 9 बजे भी आप सुन सकते हैं।

समाचार संध्या रात्रि 8:45 पर, हिंदी में समाचार रात्रि 11 बजे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे।

एक नजर कल की सभा की तरफ। कल की सभा में 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार दिल्ली के अंदर से, 6:05 पर चिंतन, इसी के पश्चात भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना जयपुर केंद्र से आप सुन पाएंगे।

रामचरित मानस गान 6:30 पर। खेती में बात हमारे किसान भाई बहन सुनेंगे 6:45 पर। लोक भजन का समय रहेगा 6:50 पर।

वातायन आप सुनेंगे 7:20 पर। कुछ देर से कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 8:15 पर। राजस्थानी लोक संगीत 8:45 पर।

आनंद आप लेंगे 11:30 पर। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न किया।

एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग 9:30 पर, सुगम संगीत 9:10 पर, ठीक 11 बजे भी आप सुन सकते हैं। फिल्म संगीत

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5:05 होने को है। आप सुनेंगे नारी लोक कार्यक्रम।

0: बहनों, दूसरों के रिश्ते निभाते निभाते कहीं खुद से रिश्ता ना टूट जाए, इसलिए कभी खुद के पास भी बैठिए, खुद को समझिए और खुद को भी समय दीजिए। नमस्कार बहनों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम नारी लोक। आज आपके साथ में हूँ पुष्पा सैनी, तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत है हमारे अपने खुद के रिश्ते के बारे में। देखिए बहनों, हम जीवन में माता पिता, जीवन साथी, बच्चों, दोस्तों और परिवार के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं कि हमारा अपने आप से रिश्ता कैसा है? खुद के साथ रिश्ता सहजने का स्वार्थी होना नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं, जरूरतों और खुशियों को समझना होता है। दिन भर की जिम्मेदारियों के बीच अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना भी जरूरी है। कभी अपनी पसंद का काम कीजिए, अपनी उपलब्धियों को स्वीकार कीजिए और अपनी गलतियों के लिए खुद को लगातार दोष देने के बजाय उनसे कुछ सीखिए। मन परेशान हो तो अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए, अपने पुराने दोस्तों से, अपनी सहेलियों से मिलिए, ताकि आपका दिल भी हल्का हो जाएगा और मन की बात भी निकल जाएगी। आप जो परेशानी है उससे भी आप मुक्त हो सकते हैं। याद रखिए बहनों, जब हम खुद को समझने और स्वीकार करते हैं तभी हम दूसरों के साथ भी स्वस्थ और खूबसूरत रिश्ता बना पाते हैं। इसलिए आज से अपने लिए भी वही प्यार, सम्मान और धैर्य रखिए जो आप अपनों के लिए रखते हैं। रिश्ते बहनों सभी अनमोल हैं, पर एक रिश्ता खास हर एक रिश्ते से खुद से प्यार और खुद पर विश्वास और खुद को समझने, खुद को संवारने, तभी ये रिश्ता आपके लिए खास होगा और ये जीवन और भी खूबसूरत निखरेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं बहनों, जीवन में तभी आपको खुशियां मिल सकती हैं। अपने आप को कोसने या फिर अपने कि मैंने गलत कर दिया, मेरे साथ कोई भी नहीं है, जो आप नेगेटिव सोचते हैं उसको आप दूर रखिए। अपने आप को पहचानिए और अपने लिए भी प्यार कीजिए, अपने आप को भी प्यार कीजिए। दूसरों के लिए तो सभी करते हैं, कुछ पल अपने लिए भी निकालिए। तो बहनों, जीवन की इस खूबसूरती को हम योग द्वारा और भी दुगना कर सकते हैं, जो आपकी जितनी भी टेंशन है उसको कम कर सकते हैं और आप पॉजिटिव भी सोच सकते हैं, वो सब योग के द्वारा। पर कैसे? इसलिए आपको आज मिलवाते हैं योग प्रशिक्षक श्रीमती भुवनेश्वरी मालव से। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में स्वस्थ रहना हम सभी की प्राथमिकता है। ऐसे में योग न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मन को भी शांति और संतुलन प्रदान करता है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, इस पर हम चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है योग विशेषज्ञ श्रीमती भुवनेश्वरी मालव। नमस्ते मैम, आपका स्वागत है हमारे नारी लोक कार्यक्रम में।
1: नमस्ते पुष्पा जी।
0: मैम, सबसे पहले हमारे श्रोता को बताइए कि योग क्या है।
1: सर जी, योग के बारे में आपने सुना होगा, टीवी पर भी देखा होगा, साथ ही अपने आसपास कई लोगों को करते हुए

0: में भी देखा होगा
1: जी,
0: योग का अर्थ है जोड़ना या मेल। योग हमारे तन और मन के विकारों को दूर करके उन्हें संतुलित करता है। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, ऊर्जा से परिपूर्ण रहना चाहते हैं, तो आपको योग की शरण में आना ही होगा।
1: वास्तव में योग भारतीय संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर है जो आज पूरे विश्व में अपनाई जा रही है। मैम, आज के समय में इसकी आवश्यकता क्यों बढ़ गई है?
0: हमारे शरीर के लिए जितना भोजन, पानी, हवा जरूरी है, उतना ही योग करना जरूरी है, क्योंकि आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है और आज हमारी जीवन शैली बिल्कुल ही बदल गई है। हमारी कार्य क्षमता पहले की तुलना में कम हो गई है, हम आराम पसंद ज्यादा हो गए हैं, थोड़ी दूर भी हमसे पैदल नहीं चला जाता है, हमारा खान पान भी मिलावटी हो गया है। इसका परिणाम हुआ कि हम कई रोगों के शिकार हो गए। ऐसी स्थिति में अगर हम नियमित योग करके अनेक रोगों जैसे कब्ज, अनिंद्रा, अपच, गैस, एसिडिटी, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, मधुमेह, थायराइड जैसे रोगों से बच सकते हैं और अपने आप को चुस्त फुर्तीला रख सकते हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा मैम आपने। अक्सर लोग समय की कमी का बहाना बनाते हैं, जबकि दिन में कुछ मिनट भी योग के लिए निकाले जा सकते हैं, ये तो अपनी सोच पर निर्भर करता है। मैम, व्यस्त दिनचर्या के कारण बहुत से लोग योग के लिए समय नहीं निकाल पाते, ऐसे में आप उनको क्या सलाह देंगी?
0: जी पुष्पा जी, आज का जीवन अत्यंत व्यस्त हो गया है। अक्सर लोगों को कहते सुना है हम योग तो करना चाहते हैं लेकिन समय ही नहीं मिलता। मेरी सलाह है कि योग के लिए अलग से घंटों का समय निकालना आवश्यक नहीं है, बल्कि इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना आवश्यक है। योग स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की कला है। हम दिन में 15 से 20 मिनट अगर नियमित रूप से योग, प्राणायाम, ध्यान करते हैं तो इसका सकारात्मक प्रभाव हमारे शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य पर स्पष्ट दिखाई देगा। कुछ सरल से उपाय मैं बताना चाहूंगी, जैसे सुबह जल्दी उठे, छोटे छोटे योग ब्रेक लें घर या ऑफिस में, प्राणायाम को अपनाएं। प्राणायाम में अनुलोम विलोम, भ्रामरी, गहरी सांस की क्रियाएं कहीं भी की जा सकती है। मोबाइल का समय कम कर दें, लिफ्ट के बजाय सीढ़ियां चुनें, ध्यान का अभ्यास करें, रोज थोड़ा थोड़ा योग करें, जीवन भर आप निरोग रह सकते हैं।
1: मैम, यदि कोई व्यक्ति पहली बार योग शुरू करना चाहता है तो उसे किन सरल योगासनों और प्राणायामों से शुरुआत करनी चाहिए?
0: जी पुष्पा जी, यदि कोई व्यक्ति पहली बार योग शुरू करना चाहता है तो उसे सरल सहज अभ्यासों से शुरुआत करनी चाहिए। योग का उद्देश्य धीरे धीरे शरीर को लचीला, मजबूत और मन को शांत बनाना है। प्रारंभ में हम ताड़ासन कर सकते हैं, वृक्षासन, वज्रासन, भुजंगासन, पवन मुक्तासन, शशकासन, श्वास आदि आसन और भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम का उच्चारण 5 से 11 बार करना चाहिए।
1: जी मैम, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए योग और प्राणायाम किस प्रकार लाभकारी होते हैं?
0: जी, आप एक महिला हैं तो आपको एक साथ कई कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है।
1: जी,
0: एक ही समय में आप बहू भी है, बेटी भी है, पत्नी भी है, बहन भी है, सास भी है और माँ भी है। आप अगर कामकाजी महिला है तो आपको घर और परिवार के साथ कामकाजी महिला का भी दोहरा दायित्व निभाना पड़ता है, जिसके कारण आपको जीवन में कई समस्या एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्राणायाम और योग के माध्यम से हमारे शरीर के भीतर शक्ति का विकास होता है, हमारे में आत्मविश्वास आता है, जिससे हम बिना विचलित हुए इन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं।
1: महिलाओं को कौन से प्राणायाम और आसन करना चाहिए ताकि वो स्वस्थ रह सके?
0: जी पुष्पा जी, प्रत्येक महिला को 7 प्राणायाम और 12 आसन और सूक्ष्म व्यायाम में नियमित करना चाहिए, जिसमें भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति 10 मिनट, अनुलोम विलोम 10 मिनट, महा प्राणायाम तीनों बंद के माध्यम से कर सकते हैं, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव ध्यान और उज्जय प्राणायाम। आसन में मकरासन, मरकट आसन, भुजंगासन, उत्तान पादासन के द्वारा महिलाएं अपने तन मन को स्वस्थ रख सकती है। इससे आपकी बुद्धि की प्रखरता का विकास होगा, आंखों की ज्योति बढ़ेगी, स्मरण शक्ति तेज होगी, चेहरे पर प्राकृतिक सुंदरता गोरापन आएगा, नकारात्मक विचार दूर होंगे, हमेशा ऊर्जा उत्साह से परिपूर्ण रहेगी।
1: निश्चित

0: रूप से मैम गृहणियों और कामकाजी महिलाओं दोनों के लिए सुझाव बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। भुवनेश्वरी जी, कई महिलाएं कहते हैं कि हमको कोई बीमारी नहीं है तो हम योग क्यों करें, क्या सही बात है?
1: जी पुष्पा जी, स्वस्थ महिलाओं को भी योग करना बहुत जरूरी है ताकि वो रोगों के शिकार होने से बच सकती है। प्राणायाम से हमारे हृदय की जो नलिका है उसको बल मिलेगा, जिससे दिल का दौरा पड़ने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है।

0: तो बहनों आप कोई बहाना मत बनिए कि हमको टाइम नहीं मिलता, योग के लिए समय नहीं मिलता। आप अपने लिए कुछ तो समय निकाल ही सकती हैं। मैम, प्राणायाम और योग करते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि अधिक लाभ भी मिले और किसी प्रकार की कोई परेशानी भी ना हो?
1: जी पुष्पा जी, प्राणायाम हमेशा शुद्ध सात्विक निर्मल स्थान पर करना चाहिए। प्राणायाम करते समय आरामदायक आसन में बैठना चाहिए, अपना मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखना चाहिए और श्वास हमेशा नाक से लेनी चाहिए, जिससे नाक के रोम छिद्रों से फिल्टर होकर श्वास अंदर जाएगी। नाक से श्वास लेने से हमारे शरीर का तापमान, ईड़ा चंद्र नाड़ी, पिंगला सूर्य नाड़ी द्वारा सुव्यवस्थित रहता है। प्राणायाम करते समय मन को शांत रखना है, प्रसन्न रहना है। थकान महसूस होने पर बीच बीच में आसन, सूक्ष्म व्यायाम या विश्राम अवश्य कर लेना चाहिए। मुंह, आंख, चेहरे पर किसी प्रकार का प्राणायाम करते समय तनाव न होने दे।
0: मैम, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारी बहनों को दी कि प्राणायाम और योग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और एक प्रश्न आपसे और पूछना चाहती हूँ, क्या बच्चों और बुजुर्गों के लिए योग और प्राणायाम भी आवश्यक है? अगर हाँ तो कैसे?
1: जी पुष्पा जी, बच्चों और बुजुर्गों दोनों के लिए योग और प्राणायाम बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन, बुद्धि, हमारी भावनाओं को भी संतुलित करता है। बच्चे हमेशा मोबाइल, टीवी, पढ़ाई के दबाव के कारण शारीरिक गतिविधियों से दूर होते जा रहे हैं। योग उन्हें स्वस्थ, एकाग्र, आत्मविश्वास, तनाव व चिड़चिड़ापन कम करने में सहयोग करता है। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ताड़ासन, रक्षासन, भुजंगासन, तितली आसन, वज्रासन और अनुलोम विलोम, भ्रामरी, गहरा श्वास का अभ्यास बच्चों को करना चाहिए। बुजुर्गों के लिए भी योग व प्राणायाम बहुत जरूरी है। बढ़ती उम्र में शरीर की हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है। योग प्राणायाम शरीर को सक्रिय, लचीला, मानसिक रूप से प्रसन्न बनाने में मदद करता है। ताड़ासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन, शवासन, कुर्सी योग, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उज्जयी, भस्त्रिका, ध्यान इन्हें तनाव, चिंता और अवसाद को कम करता है। इससे बुजुर्गों को नींद भी बेहतर आती है, इनकी आत्मनिर्भरता सकारात्मक बनी रहती है, जोड़ों के दर्द है, अकड़न है उससे राहत मिलती है, मधुमेह नियंत्रित होता है, फेफड़ों की कार्य क्षमता भी बढ़ती है।
0: मैम, ये जानकर बहुत ही अच्छा लगा कि योग हर आयु वर्ग के लोगों के लिए लाभकारी होता है। और मैम, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: मैं इस अवसर पर अधिक से अधिक लोगों को इससे जुड़ने व स्वास्थ्य लाभ ले ये संदेश जन जन तक पहुंचाना चाहती हूं। अंत में मैं महिलाओं को यही कहना चाहूंगी कि भगवान ने हमें 24 घंटे दिए, इनमें से एक घंटा योग व प्राणायाम करके अपने 23 घंटों को खुशी से बिता सकती है। सभी महिलाओं को इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए।
0: वास्तव में मैम, आज की इस चर्चा से स्पष्ट हो गया कि योग को यदि हम अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना ले तो जीवन अधिक स्वस्थ, संतुलित और आनंदमय बन सकता है। तो मैम, आज हमने जाना कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की एक कला भी है। यदि हम प्रतिदिन कुछ समय योग के लिए निकालें तो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। हमारी आज की अतिथि योग विशेषज्ञ भुवनेश्वरी मालू जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने अमूल्य विचार हमारे साथ साझा किए। इसी संदेश के साथ कि स्वस्थ तन और शांत मन के लिए योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, धन्यवाद।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
3: सो इजी।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आसमान सोना, धरती प्यासी और हर किसी की निगाहें टिकी है उन काले काले बादलों पर। आइए आज सुरु के माध्यम से मेघों को पुकारें। हे मेघों, अब तो बरस जाओ, अपनी बूंदों से धरती की प्यास बुझाओ। इसी प्यारी सी आस के साथ सुनते हैं फिल्म प्यासा सावन का ये गीत, मेघारे मेघारे।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: बिना पौष्टिक और सुपाच्य आहार स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को स्वस्थ और मन को प्रसन्न रखने के लिए होता है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में भोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये हम सभी जानते हैं बहनों। लेकिन केवल स्वादिष्ट भोजन ही पर्याप्त नहीं होता। भोजन ऐसा होना चाहिए जो पौष्टिक भी हो और आसानी से पचने वाला भी हो। हमारे भोजन में अनाज, दालें, सब्जियां, मौसमी फल, दूध या दूध से बने पदार्थ, मेवे और पर्याप्त मात्रा में पानी भी शामिल होना चाहिए। कोशिश करें बहनों कि भोजन ताजा, स्वच्छ और संतुलित होना चाहिए। सुपाच्य भोजन के लिए बहुत अधिक तला भुना, अत्यधिक मसालेदार और जरूरत से ज्यादा मीठा या नमकीन भोजन कम करना चाहिए। साथ ही बहनों, भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाएं और एक साथ बहुत अधिक खाने के बजाय बहनों उचित मात्रा में भोजन करें। कम कम खाएं, किस्तों में खा सकते हैं आप। और खासकर बुजुर्गों, बच्चों और बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए भोजन का चुनाव उनकी जरूरत के अनुसार ही करना चाहिए। याद रखिए बहनों, संतुलित भोजन शरीर को ऊर्जा देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है और हमें सक्रिय बनाए रखने में मदद भी करता है। बहनों, थाली में रंग जितने ज्यादा होंगे, स्वास्थ्य के रंग भी उतने ही खिले होंगे। तो आइए आज से अपनी थाली को पौष्टिक, संतुलित और सुपाच्य बनाएं और स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। बहनों, इसी के साथ मालो कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। देखिए बहनों, कहते हैं कि उम्मीद आज की बातें आपके मन को छू भी गई होगी। हमारी बातें जो हमने आपसे करी है कि खाने में कैसे ध्यान रखना चाहिए, योग कब करना चाहिए, योग से क्या क्या फायदे हैं, ये बातें आपको छू भी गई होगी और मुझे उम्मीद है कि आप करेंगे इस पर अमल। देखिए बहनों, जीवन में कुछ अच्छा करने, कुछ अच्छा सोचने की हमें प्रेरणा भी देते हैं। याद रखिए, जीवन की खूबसूरती बड़ी बड़ी खुशियों में नहीं है, बल्कि उन छोटी छोटी बातों में छिपी होती है जिन्हें हम हर दिन महसूस करते हैं। तो मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनों का साथ निभाइए और अपने सपनों को उड़ान देते रहिए। मैं आपकी अपनी पुष्पा सैनी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे नारी लोक की एक नई बात, एक नई सोच और एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और खुश रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान ही आपकी सबसे खूबसूरत पहचान है बहनों।

अभी आपने नारी लोक कार्यक्रम सुना पुष्पा सैनी से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। नीचे सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम।

के झरने मेरा हो रब्बा।

आवार की फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। गीत के बोल आनंद बख्शी के और संगीत अनु मलिक का।

0: लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में अभी आपने सुना आवारा फिल्म का गीत। शंकर जयकिशन के संगीत में शब्द लिखे थे शैलेंद्र ने।
1: ये है विविध भारती।
2: विविध भारती देश का रेडियो।
3: ओ मेरे पिया गए रंगून, पिया है वहां से टेली।
4: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
5: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
2: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
6: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
4: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
7: आज के फनकार।
4: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
7: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
0: तराने नए पुराने में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं दिल्ली छह। इस फिल्म से आवाज मोहित चौहान की है, गीत के बोल प्रसून जोशी के और संगीत है एआर रहमान का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: श्रेया घोषाल की आवाज में अब आप सुनेंगे जहर फिल्म का गीत। अनु मलिक का संगीत और गीत के बोल लिखे हैं सईद कादरी ने।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे के संबंध में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को बंद करने और आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी प्राथमिकियां भी रद्द कर दी हैं। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है।
2: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। सीजेपी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन में उपक्रमों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रक्षा मंत्री ने उपक्रमों से बदलते परिदृश्यों के बीच रक्षा तैयारियों को बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों की रूपरेखा तैयार करने को कहा। सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं सरकार ने कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2000 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2029 तक राज्य को मादक पदार्थ मुक्त बनाने के लिए एक व्यापक नीति को मंजूरी दी है। मुंबई में मंत्रिमंडल की बैठक में मादक पदार्थों के खिलाफ सभी विभागों के समन्वय से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। भारतीय जनसंचार संस्थान ने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को पहली बार स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इन अधिकारियों को लोक संचार और शासन में एमए की डिग्री दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि जनसंचार शासन का एक अभिन्न अंग है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने का शेष भाग।

0: स्वामी फिल्म से भी आपने सुना यशुदास की आवाज में ये गीत। गीत के बोल अमित खन्ना के थे, संगीत राजेश रोशन।
1: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। 6:15 हुए हैं। आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ी में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूं और सबसे पहले आपका धन्यवाद देती हूं कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें संपर्क करने के लिए। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है
1: 9414066730। श्रोताओं, नंबर में एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी, 9414066730।

श्रोताओं, आज का इंसान लालच में अंधा हो गया है कि इंसानियत को खोता जा रहा है। आज लोगों को किसी के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनका लालच और उनका स्वार्थ पूरा होना चाहिए। लालच के इस भंवर में ऐसा फंस चुका है कि वह भूल जाता है कि मुसीबत किसी पर भी आ सकती है। कुछ ऐसी ही घटना पर आधारित हमारा आज का नाटक है। ये नाटक शुरू होता है रेखा जी के घर से। उनका एक बेटा है जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। रेखा जी अपने बेटे का विवाह ओम प्रकाश की बेटी रिया से करवा देती है। ओम प्रकाश जी दिल के मरीज थे, उनकी पत्नी का भी निधन हो गया था। बेटी रिया के विवाह के बाद उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। रिया एक सुंदर और सुशील लड़की थी। रिया भी एक कंपनी में काम करती थी। शादी के बाद अक्सर रिया अपने पिताजी के घर चली जाती और उनका हालचाल पूछती और दवाई और घर का छोटा बड़ा काम कर आती थी और समय पर अपने ससुराल में आकर वहाँ का भी काम करती थी। परंतु रिया का ऐसा हर एक दो दिन में पिता के घर जाने पर रिया की सास को ठीक नहीं लगता था। रिया अपने पिता की इकलौती संतान थी तो ऐसी बीमारी के हालात में पिता को अकेले छोड़ भी नहीं सकती थी। ऐसे में क्या होता है उनके घर में, आइए सुनते हैं नाटक।

0: अरे अंकुश की मम्मी क्या कर रही हो?
1: अरे कुछ नहीं।
0: अरे क्या बात है, आज फिर बहू अपने पापा के घर चली गई क्या?
1: क्या पता कहाँ गई है, मैं तो परेशान हो गई हूँ। जब देखो मुंह उठा के मायके चली जाती है।
0: तो तुम उससे बात करो, तुम्हारी बहू ऐसे रोज रोज मायके चली जाती है तो कल हमारी बहुएं भी ऐसे ही करेंगी।
1: अरे हमारी तो किस्मत ही फूटी थी जो ऐसे घर में रिश्ता कर दिया। चलो बेटा अंकुश के आने का टाइम हो गया है, उसके लिए भी चाय बनानी है अभी।
0: हे भगवान, बहू के रहते अब तुम चाय बनाओगी, क्या फायदा ऐसी बहू का?
1: क्या करूं, मैं तो खुद पछता रही हूं ऐसी बहू को घर लाकर।
0: तुम अपने बेटे से क्यों नहीं बात करती कि वो अपनी पत्नी को समझाए?
1: आज अंकुश से बात करती हूँ।
0: वैसे मैं तो किसी के घर के मामले में बोलती ही नहीं, तुम्हारी बहू है तुम्हारा घर, मुझे क्या मतलब, मैं तो चलती हूँ, मुझे और भी बहुत काम है।
2: पड़ोस की आंटी के जाने के कुछ समय बाद अंकुश आ जाता है और रिया को आवाज लगाता है।
3: रिया कहाँ हो यार, एक गिलास पानी पिला देना।
1: ये लो बेटा पानी।
3: अरे माँ आप पानी लाई, रिया कहाँ है?
1: अरे मुझे क्या पता कहाँ गई है।
3: कब गई है ये तो पता होगा।
1: मुझे क्या पता कब गई है। देख अंकुश, जब से रिया जॉब करने लगी है तब से ये कुछ ज्यादा ही घूम रही है।
3: अरे माँ कुछ काम होगा तभी तो गई है।
1: हाँ घर के सिवा हर काम उसके लिए जरूरी है।
3: अरे माँ तुम भी ना।
1: अरे और भी तो लड़कियाँ हैं जो जॉब करती हैं पर टाइम से घर आकर घर भी संभालती हैं।
3: हाँ माँ मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ आराम करने।
1: ठीक है बेटा जाओ और आराम करो।
2: रेखा जी की ऐसी बातें सुनकर अंकुश कमरे में चला जाता है और रेखा जी वहीं बैठकर टीवी देखने लगती है। कुछ समय बाद रिया आ जाती है, परंतु सास के चेहरे को देखकर समझ जाती है कि घर में कुछ तो हुआ है। तो रिया अपनी सास से पूछती है, माँ अंकुश आ गए क्या? और रिया की आवाज़ सुनकर वहाँ अंकुश भी आ जाता है और रिया से पूछता है,
3: रिया तुम कहाँ गई थी?
4: मैं पापा के घर गई थी, उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई।
3: अरे यार तो घर

0: मैं बताकर तो जाना था ना।
1: अरे मम्मी जी को बताया तो था कि मैं पापा जी के घर जा रही हूँ, उनकी तबीयत खराब हो गई है और 2-3 घंटों के लिए वहाँ जा रही हूँ।
0: पर मम्मी जी आप तो बोल रही थी कि रिया ने आपको कुछ नहीं बताया।
2: अरे बेटा इसका तो रोज का काम हो गया है, और बहुत तू अब कोई नया बहाना ढूंढ ले, मैं तो तंग आ गई हूँ तेरे एक ही बहाने से।
1: अरे माँ जी मेरे पापा बीमार हैं, इसमें बहाने वाली क्या बात है।
2: हाँ हाँ एक तेरे ही पापा बीमार हैं और तेरे जाते ही ठीक भी हो जाते हैं।
1: माँ जी आप कैसी बातें कर रहे हो, आपको तो सब पता है मेरे पापा का मेरे सिवा कोई नहीं है, और उनकी उम्र भी ज्यादा हो गई है और उनको दिल की बीमारी है, उनका ध्यान रखने के लिए मेरे सिवा कोई नहीं है, इसलिए मैं वहाँ जाती हूँ।
2: अरे तेरे बाप को इतना ही बीमार रहना था तो किसी और से शादी कर देता तेरी, और उसको ही घर जमाई बना कर रख लेता और करवाता अपनी सेवा।
0: पर रिया ऐसे रोज रोज जाना भी ठीक नहीं है, और फिर यहाँ माँ को भी तो काम में एक परेशानी होती है ना।
1: अरे अंकुश घर का सारा काम और रात का खाना बना कर गई थी ताकि माँ जी परेशान ना हो।
0: अरे माँ फिर आपको क्या परेशानी थी, और माँ अपने सास बहू के चक्कर में मुझे मत फंसाया करो प्लीज, और रिया तुम भी, और अपनी मायके की कोई भी बात मेरे सामने नहीं करोगी, ठीक है।
1: ठीक है।
2: अरे बेटा अब ऐसा भी क्या कर दिया, अपनी पत्नी को समझाने के बजाय तुम मुझे ही बोल रहा है।
0: अरे माँ इससे तो अच्छा है मैं ऑफिस ही ठीक था।
3: इतना बोलकर रिया और अंकुश कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, और रेखा जी भी अपने कमरे में चली जाती है। सुबह के समय रिया सबके लिए नाश्ता बनाती है और अंकुश को टिफिन देती है, और साथ ही बोलती है कि उसे अपने पापा जी को डॉक्टर के पास ले जाना है, तो ऑफिस से हाफ डे की छुट्टी लेकर वहाँ से अस्पताल चली जाएगी। अंकुश भी हाँ चली जाना ऐसा बोलकर चला जाता है, और रिया भी घर का काम करके ऑफिस चली जाती है, और ऑफिस से हाफ डे की छुट्टी लेकर अपने पिता के घर चली जाती है।
1: पापा आप रेडी हो गए?
4: हाँ बेटा मैं रेडी हूँ।
1: पापा आपने कुछ खाया है कि नहीं?
4: हाँ बेटा खा लिया, तुम्हारे चाचा के बेटे और बहू आए हैं, उन्होंने ही घर का काम किया है।
1: तो अभी कहाँ हैं वो?
4: वे मार्केट गए हैं कुछ राशन का सामान लाने, आते ही होंगे।
1: अरे भाभी आ गई आप, पहले बताती तो रात को मैं यहीं रुक जाती।
5: अरे दीदी बस चाचा जी की तबीयत के बारे में सुना तो सोचा जाके मिलाते हैं।
1: अच्छा किया भाभी, और वहाँ सब कैसे हैं?
5: अरे दीदी बाबूजी के जाने के बाद तो घर में मन ही नहीं लगता, घर में बड़े बूढ़े हों तो मानो घर में भगवान है, पर उनके जाने के बाद तो घर सूना सूना सा हो गया है।
1: भाभी अब होनी को कौन टाल सकता है, भाभी आप यहीं क्यों नहीं रुक जाती, मेरे पापा की देखभाल भी होती रहेगी और आपका और पापा जी का भी मन लगा रहेगा, और मैं भी बेफिक्र होकर काम कर लूँगी।
5: ठीक है दीदी।
1: थैंक यू भाभी।
3: रिया अपने पिताजी को हॉस्पिटल ले जाती है और फिर वापस घर छोड़कर अपने ससुराल चली जाती है, और 2 महीने अपने पिता के घर नहीं जाती, बस फोन पर ही हालचाल पूछ लेती थी। एक दिन रिया ने अंकुश से बोला कि आज वह ऑफिस नहीं जाएगी। ये सुनकर अंकुश ने पूछा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तो उसने बताया कि तबीयत तो ठीक है पर आज उसने पूरे दिन की छुट्टी ली है, उसे कोर्ट जाना है। यह सुनकर रेखा जी बोलती है
2: अरे कोर्ट क्यों जाना है,
1: बस कुछ काम है पापा जी के साथ जाना है।
2: अरे ऐसा भी क्या कर दिया तेरे पापा ने जब कोर्ट जाना है।
1: मम्मी जी पापा जी ने कुछ नहीं किया।
2: अरे फिर कोर्ट क्यों जा रहे हो, कुछ तो किया होगा।
1: अरे मम्मी जी पापा जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, काम मुझे है इसलिए मैं पापा जी को साथ ले जा रही हूँ।
0: पर रिया सब ठीक तो है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो।
1: मेरे पापा के नाम जो भी प्रॉपर्टी है वो मैं चाचा के बेटे और बहू के नाम करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे उनके साथ कोर्ट जाना होगा।
2: क्या तुम्हारे पापा अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने भाई के बेटे के नाम पे कर रहे हैं?
0: रिया ये तुम क्या कह रही हो?
1: हाँ जी मैंने जो कहा वो सच है।
2: अरे जब तुम हो तो तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे पापा अपनी संपत्ति अपने बेटे के नाम पर कैसे कर सकते हैं?
1: क्यों नहीं दे सकते, जो उनकी देखभाल करेंगे वही उनकी प्रॉपर्टी का हकदार होगा।
2: हे भगवान ये तो सारी प्रॉपर्टी

0: परेशान कर देगी।
1: क्या सोचने लगी माँ जी?
0: पर ये जरूरी तो नहीं कि वो तुम्हारे पिता की देखभाल करेंगे। क्या पता प्रॉपर्टी मिलने के बाद देखभाल ना करें, फिर क्या करोगी तुम?
1: उसका भी इंतजाम कर दिया है माँ जी मैंने, घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिया है और ये बात एग्रीमेंट में भी मेंशन कर दी है। अगर उन्होंने पापा की देखभाल नहीं की तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी।
2: रिया, क्या तुमने इतनी बड़ी बात मुझे बताना जरूरी नहीं समझा?
1: अंकुश, तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हारे सामने मायके की कोई बात ना करूं।
2: पर रिया,
1: पर वो कुछ नहीं, मेरे लिए मेरे पापा की देखभाल जरूरी है। अगर मैं उनकी देखभाल नहीं कर सकती तो उनकी प्रॉपर्टी पर भी मेरा कोई हक नहीं।
0: लो गई भैंस पानी में, अब इस लड़की को कौन समझाए? ये तो अपना ही नुकसान करने पर लगी है।
1: कैसा नुकसान माँ जी?
0: अरे तेरे पापा की प्रॉपर्टी अगर तेरे पास रहेगी तो तेरे ही काम आएगी ना।
1: पर माँ जी, अगर मैं आपको खाना बनाकर ना दूं, न ही आपकी बीमारी में देखभाल करूं और आपके बेटे और घर को ना संभालूं, तो क्या आपकी प्रॉपर्टी पे हमारा कोई हक है या नहीं?
0: अरे बेटा, तू तो गुस्सा मान गई।
1: नहीं माँ जी, समय रहते ही सब समझ आ गया कि आपने मुझसे अपने बेटे की शादी प्रॉपर्टी के लिए की थी, न कि मेरे गुणों को देखकर। बड़े अफसोस की बात है कि आज भी दुनिया में आप जैसे लोग हैं।

0: प्रिया की यह बातें सुनकर रेखा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और किए हुए बर्ताव पर पछतावा भी हुआ। तो श्रोताओं, रेखा जी को अपनी बहू रिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। एक दिन सभी को उम्र के उस पड़ाव पर आना है जहां सभी को सहारे की आवश्यकता होती है, जहां पर रिया की सास को रिया का साथ देना चाहिए था ताकि अपने पिता की सेवा कर सके। वहीं उन्होंने लालच के चलते इंसानियत को खो दिया। उन्हें लगता था कि रिया अपने पिता की इकलौती संतान है तो पिता की प्रॉपर्टी रिया को मिलेगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ और अपने किए पर पछतावा हुआ। श्रोताओं, जो सेवा करेगा और सही से देखभाल करेगा वही संपत्ति का असली हकदार होगा, पर वो आपके संतान हो या कोई रिश्तेदार या फिर कोई गैर। इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है
1: 9414066730। श्रोताओं, नंबर में एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी, 9414066730।
0: यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और मुझे यानी कि प्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: हमारी बेड़िया कार्यक्रम अभी आपने सुना। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 6:30 हो चुके। लीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से।
1: और मलेशिया में संपन्न लैक्रोस चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम को कांस्य पदक। टीम

0: में राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र की 9 खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है। किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक में आयोजित सम्मेलन में श्री मोदी ने आतंकवाद के इकोसिस्टम और फंडिंग को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मानदंडों को खारिज करने की बात कही। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है, ये किसी देश के लिए रणनीतिक संपत्ति नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने SCO को लेकर भारत की सोच साझा की। उन्होंने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी अपनी 2 दिन की किर्गिस्तान यात्रा पूरी कर बिश्केक से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने वित्त वर्ष 2026-2027 की पहली तिमाही में देश की GDP वृद्धि दर 7.8% रहने पर देशवासियों को बधाई दी।
1: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया। देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर हुए छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी FIR बंद करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया। साथ ही न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस अवधि के प्रदर्शन से जुड़ी कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में मौजूद 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है, जिन पर पहले से ही संगीन आपराधिक मामले हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने ये आदेश दिया। इस बीच केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने आश्वासन दिया कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे और उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी।
2: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। CJP के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं।
0: देश में जल संरक्षण और बेहतर जल प्रबंधन के लिए आज से नई दिल्ली में 2 दिन के शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित किए जा रहे इस सम्मेलन में जल सुरक्षित भारत बनाने की दिशा में चर्चा की जा रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने बताया कि सम्मेलन में विभिन्न राज्यों और विभागों के अधिकारियों को एक मंच पर लाया गया है। उनके साथ बेहतर जल प्रबंधन के लिए कार्य प्रणालियों और चुनौतियों के समाधान पर विचार विमर्श किया जा रहा है। सम्मेलन में जल संचय, जन भागीदारी, कैच द रेन और जल जीवन मिशन 2.0 के तहत पेयजल आपूर्ति योजनाओं के संचालन सहित अन्य विषयों को भी शामिल किया गया है। मंत्रालय की इस पहल से विभागीय शिखर सम्मेलन से सहकारी संघवाद और साझा जिम्मेदारी की भावना को और मजबूती मिलेगी। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि सम्मेलन से राजस्थान की जल सुरक्षा पर भी मंथन कर रोड मैप तैयार किया जाएगा।
3: जल संसाधन और हमारे जो PhD विभाग है, इसको किस तरह से बेटर पर्यावरण के साथ हम आगे बढ़ा सके उस पर मंथन होगा। इसके अलावा हमारी जो राजस्थान की वृहत परियोजनाएं, चाहे हमारे वो ERCP हो, चाहे हमारी यमुना हो, चाहे हमारी जो बड़े प्रोजेक्ट चल रहे

0: जैसे काली तीर हो, पिपुलपुर हाई लेवल हो, इस तरह की जो बड़ी परियोजना है उसका प्रेजेंटेशन भी हम इसके अंदर देने वाले हैं। इस तरह से हर राजस्थान के अंदर वैसे भी पानी की कमी है और हमारी जो बड़ी परियोजनाएं हैं उसमें केंद्र का सहयोग भी अपेक्षित है, तो निश्चित रूप से इसके माध्यम से हमारे राजस्थान की जरूरतें हैं हम बेहतर तरीके से केंद्र के सामने रखने का हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की आज जांच की गई। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 10,245 वार्डों के लिए 53,700 से अधिक प्रत्याशियों ने 65,000 से ज्यादा नाम निर्देशन पत्र भरे। सबसे अधिक 3,800 से ज्यादा पर्चे जयपुर जिले में भरे गए। नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ ही चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने जनसंपर्क तेज कर दिया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों और तीसरे मोर्चे के प्रत्याशियों ने भी सक्रियता बढ़ा दी है। विभिन्न स्थानों पर निर्दलीय उम्मीदवारों की मौजूदगी मुकाबलों को त्रिकोणीय बना रही है। कई जगह बागी उम्मीदवारों को मनाने की कवायद भी की जा रही है। 3 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। निकाय चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए निर्वाचन कार्मिकों को प्रथम प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज जैसलमेर और पाली सहित विभिन्न स्थानों पर 2 दिन की ये ट्रेनिंग शुरू हुई। इस बीच नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत स्वीप गतिविधियों का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में आज अजमेर में स्वीप टीम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम रखा। बालोतरा में खेल खेल में मतदान का महत्व बताया जा रहा है, इसके लिए रोचक सांप सीढ़ी पोस्टर तैयार किया गया है। उधर कोटपुतली के गंगा सागर तालाब पर भी मतदाता जागरूकता के लिए दीपोत्सव कार्यक्रम रखा गया है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने प्रदेश में किसी भी जर्जर और असुरक्षित विद्यालय भवन और कक्षा कक्षों का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने विद्यालय भवनों की सुरक्षा को लेकर आज जयपुर में समीक्षा बैठक की। उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को संस्थान भवनों की सुरक्षा की सतत निगरानी और नियमित परीक्षण करने को कहा। इस दौरान उन्होंने स्कूलों में पीने के साफ पानी की उपलब्धता पर भी विशेष जोर देते हुए कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों में इसकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। बैठक में स्कूल शिक्षा के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने बताया कि प्रदेश के 65,000 से ज्यादा स्कूलों का तकनीकी सर्वेक्षण करवाया गया है। इनमें 3,000 से ज्यादा जर्जर भवन और 83,000 से अधिक जर्जर कक्षा कक्ष चिन्हित किए गए हैं। विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इनके उपयोग पर रोक लगाई गई है। साथ ही प्रभावित विद्यालयों के संचालन के लिए सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई है। श्री यादव ने बताया कि IIT जोधपुर और जयपुर के MNIT के विशेषज्ञों की टीम द्वारा सरकारी स्कूल भवनों की स्वतंत्र तकनीकी सुरक्षा जांच की जा रही है। मलेशिया में संपन्न लैक्रोस चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया है। कुआलालंपुर में भारत ने शुरुआती मुकाबले में मेजबान मलेशिया को हराया। इसके बाद फिलीपींस को भी मात दी। कांस्य पदक के लिए भारतीय टीम का सामना सिंगापुर से हुआ। दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली और भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतिम क्षणों में सिंगापुर को 10-9 से पराजित कर कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। भारतीय टीम में कप्तान डाली गमेती सहित उदयपुर और जनजातीय क्षेत्र की बेटियों का अहम योगदान रहा। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने तिरंगे की शान बढ़ाने वाली भारतीय महिला लैक्रोस टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद राजस्थान की बेटियों ने उम्दा प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस उपलब्धि के लिए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्र के खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और जज्बे से देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है।

केंद्र सरकार ने सुरक्षित भंडार से देश के प्रमुख शहरों के बाजारों में प्याज भेजना शुरू कर दिया है। खाद्य मंत्रालय के अनुसार देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को काबू में रखने के लिए कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए प्याज की आपूर्ति की जा रही है। मंत्रालय ने बताया कि रेलगाड़ियों के अलावा सड़क मार्ग से भी लगभग 1000 मीट्रिक टन प्याज बाजारों में भेजा जा रहा है। साथ ही सरकार ने यह स्पष्ट किया कि बफर स्टॉक से प्याज बाजार में आने के बाद इसकी उपलब्धता बढ़ी है और कीमतों में कमी आ रही है। आने वाले दिनों में प्याज के दाम में और गिरावट आएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एससीओ शिखर सम्मेलन में संबोधन, आतंकवाद के इकोसिस्टम और फंडिंग को ध्वस्त करने का आह्वान। जल संरक्षण और बेहतर जल प्रबंधन के लिए नई दिल्ली में आज से दो दिन के शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। प्रदेश में किसी भी जर्जर और असुरक्षित विद्यालय भवन और कक्षाओं का उपयोग नहीं करने के निर्देश। और मलेशिया में संपन्न लैक्रोस चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम को कांस्य पदक। टीम में राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र की 9 खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से अलवर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसे भेजा है अविनाश मल्होत्रा ने। जिले में आगामी नगरीय निकाय चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। इससे पहले बड़ी संख्या में लोगों ने नामांकन किया। नामांकन पत्रों की आज जांच की गई। 3 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं और 4 सितंबर को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। जिले में दो चरणों में मतदान होगा। 9 सितंबर को नगर निगम अलवर सहित रामगढ़, नौगावा, मालाखेड़ा और बहादुरपुर में मतदान होगा। वहीं 11 सितंबर को कठुमर, खेरली, थानागाजी, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, गोविंदगढ़, रामवास और बड़ौदा मेव में मतदान कराया जाएगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। वोटों की गिनती 14 सितंबर को होगी। इससे पहले अलवर नगर निगम के 65 वार्ड के आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। महापौर पद अनारक्षित महिला के लिए रखा गया। 12 वार्ड अनुसूचित जाति, 2 अनुसूचित जनजाति और 13 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के लिए 4, अनुसूचित जनजाति के 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 4 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वहीं जिला निर्वाचन विभाग की ओर से जिले में स्वीप गतिविधियों के तहत लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 100% मतदान का संदेश दिया जा रहा है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह बीते दिनों जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने अलवर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 17 जिलों के लिए लगभग 6,500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें अलवर जिले के 368 करोड़ 19 लाख रुपए के 90 कार्य शामिल रहे। उन्होंने अलवर सरस डेयरी के 3 लाख लीटर क्षमता वाले प्रसंस्करण संयंत्र का शिलान्यास किया। अलवर मेडिकल कॉलेज का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करने की घोषणा की। कार्यक्रम में किसानों के खातों में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की 6ठी किस्त और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। जिले में 80वां स्वाधीनता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में मुख्य समारोह हुआ। इस समारोह में वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली 24 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। वीरांगनाओं को भी सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों ने सामूहिक व्यायाम और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इससे पहले जिले में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान की धूम रही। जगह जगह तिरंगा प्रभात फेरियां निकाली गई और विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से देशभक्ति का संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में जयपुर से वर्चुअल माध्यम से ई बस सेवा की शुरुआत की। अलवर में इस दौरान 5 ई बसों को रवाना किया गया। जिले में कुल 50 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना है। बाकी बसें चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएंगी। जिले में 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। जनाना अस्पताल स्थित संपूर्ण स्तनपान प्रबंधन केंद्र में कार्यशाला, पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी तथा रैली के माध्यम से स्तनपान के बारे

0: में जानकारी दी गई। प्रसूताओं, धात्री माताओं और उनके परिजनों तथा चिकित्सा और पैरामेडिकल स्टाफ को भी जागरूक किया गया। श्रावण के महीने में जिले के शिव मंदिरों में पूजा अर्चना और जलाभिषेक के कार्यक्रम हुए। अलवर शहर के त्रिपुलिया मंदिर में भगवान शिव की पूजा के लिए श्रद्धालुओं की कतारें नजर आईं। रक्षाबंधन का पर्व भी जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधे और भाइयों ने बदले में उन्हें उपहार दिए। वहीं ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर विशेष नमाज अदा की गई और सुख समृद्धि की कामना की गई। नागरिक सुरक्षा तैयारियों के तहत अलवर की एक हाई राइज बिल्डिंग में मॉक ड्रिल की गई। बिल्डिंग की 9वीं मंजिल पर आग लगने की स्थिति में राहत और बचाव कार्य का अभ्यास किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला और पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया। इसी के साथ अलवर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SCO शिखर सम्मेलन में आतंकवाद रा इकोसिस्टम और फंडिंग न खत्म करण री अर्ज कीनी। पानी बचावन और इंदिरा बेहतर प्रबंधन रवारा माय विचार करण सारू। नई दिल्ली माय आज 2 दिन रो शिखर सम्मेलन सरू भियो। प्रदेश माय जर्जर और असुरक्षित स्कूल भवन और कक्षा काम नी लेवन रा हुकम दिया चिया। और मलेशिया माय भी लेक्रोस चैंपियनशिप माय भारतरी महिला टीम का सारो तमगो जीतियो। टीम माय राजस्थान रा जनजातीय हलकारी 9 खिलाड़ियां रो शानदार प्रदर्शन। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26वां शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ कड़ो संदेश दिनो है। किर्गिज गणराज्य री राजधानी बिश्केक में रखी जा सम्मेलन में श्री मोदी आतंकवाद रा इकोसिस्टम और रकम री सप्लाई बंद करण री अरज कीनी। प्रधानमंत्री सगला सदस्य देशाओं आतंकवाद रा खिलाफ दौड़ा मानदंडा न खारिज करण बाबत कहो। वह जोर देर कहो कि आतंकवाद इंसानियत सारू गंभीर चुनौती है जो किन्हीं देश री रणनीतिक संपत्ति नहीं फै सके है। प्रधानमंत्री कहो कि युद्ध और लड़ाई रोहल बातचीत और कूटनीति रे जरिए ही वेणु चैचे। वह कहो कि भारत बाजारा न जोड़बा कारोबार न बढ़ावो देवन वाली और विकास रा नुआ गेला खोलन वाली सगली कोशिशा री हिमायत करे है। सम्मेलन पाछे प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन री किर्गिस्तान यात्रा पूरी कर बिश्केक नई दिल्ली सारू रवाना भे गया। एक वीडियो संदेश माए प्रधानमंत्री चालू माली साल री पहली तिमाही माए देश री GDP माए बढ़ोतरी री रेट 7.8% रहवण पर जनता ने बधाई दीनी।
2: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया। देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
1: सुप्रीम कोर्ट 20-25 जुलाई बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दा न लेर विद्यार्थियों कान्यों करी जा प्रदर्शनाओं जुड़ी सगली FIR बंद करण सागे। एड़ा मामला में आगे जांच नी करण रो हुकम दीनो है। अदालत राज्य और केंद्र राज वाला प्रदेशा ने ई मियाद माय करी जा प्रदर्शन जुड़ी कोई नई FIR दर्ज नी करण बाबती कहो। हालांकि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहनारी पीठ जंतर मंतर सामी प्रदर्शन में मौजूद 2873 जना रा खिलाफ जांच जारी रखने री मंजूरी दीनी है, जहां रा खिलाफ पहले ही संगीन आपराधिक मामला दर्ज है। इबीच केंद्रीय मंत्री JP नड्डा भरोसो दिरायो के नीट पेपर लीक मुद्दा न लेर प्रदर्शन करण वाला विद्यार्थियों के खिलाफ दर्ज मामला पाछा लेर वाने खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करी जावेला।
3: हमने छात्रों के भविष्य को

0: सामने रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। सीजेपी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं।
1: देश में पानी बचावण और इंद्रा बेहतर प्रबंधन सारू जल शक्ति मंत्रालय रे ओरू आज नई दिल्ली में 2 दिन रो शिखर सम्मेलन शुरू थियो। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल बतायो कि सम्मेलन में न्यारा न्यारा राज्य और महकमा रा अहलकारा सागे पानी रा बेहतर प्रबंधन सारू कार्य प्रणालियां और चुनौतियां रा हल नु जुड़ियो विचार करियो जा रियो है। सम्मेलन में विचार सारू पानी भेड़ो करण, जनतारी भागीदारी, कैच द रेन और जल जीवन मिशन 2.0 रा तहत पीवन रा पानी री पूर्ति जुड़ी योजनावां समेत न्यारा न्यारा मुद्दा शामिल करी चिया है। राज्य रा जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत बतायो कि सम्मेलन में राजस्थान में पानी री हिफाजत रे बारा में ही विचार कर रोड मैप बनायो चावेला।
2: जल संसाधन और हमारे जो पीएचडी विभाग है इसको किस तरह से बेटर क्रियान्वयन के साथ हम आगे बढ़ा सके उस पर मंथन होगा। इसके अलावा हमारी जो राजस्थान की बृहत परियोजनाएं, चाहे हमारे वो ERCP हो, चाहे हमारी यमुना हो, चाहे हमारी जो बड़े प्रोजेक्ट चल रहे जैसे काली तीर हो, पिपलकोट हाई लेवल हो, इस तरह की जो बड़ी परियोजनाएं उसका प्रेजेंटेशन भी हम इसके अंदर देने वाले हैं। इस तरह से हाँ, राजस्थान के अंदर वैसे भी पानी की कमी है और हमारी जो बड़ी परियोजनाएं हैं उसमें केंद्र का सहयोग भी अपेक्षित है, तो निश्चित रूप से इसके माध्यम से हमारे राजस्थान की जरूरतें हैं हम बेहतर तरीके से केंद्र के सामने रखने का हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है।
1: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक मथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव सारू उम्मीदवार कानून दाखिल करी चिया नाम पाना री आज जांच करी ची। राज्य निर्वाचन आयोग रे मुजब 10,245 वार्ड सारू 55,092 उम्मीदवार 66,692 पर्चा दाखिल कीना। सबू बत्ता 3,800 ज्यादा नाम पाना जयपुर जिला में भरी चिया। इस आगे उम्मीदवार कानून जनसंपर्क रो काम तेज करती हो चियो है। भाजपा और कांग्रेस समेत न्यारी न्यारी सियासी पार्टियां रा उम्मीदवार सागे निर्दलीय उम्मीदवार री मौजूदगी मुकाबला न रोचक बना रही है। कई थोड़ा बागी उम्मीदवार री मान मनवल री कवायदी करी जा रही है। 3 सितंबर न दोपहर 3 बजे ताई नाम पाछा लिया जा सकेला। ये पाछे राज्य निर्वाचन आयोग री ओर उम्मीदवार न चुनाव चिन्ह आवंटित करा जावेला। न्यारा न्यारा हल्का माए वोट 9 और 11 सितंबर न पड़ेला। निकाय चुनाव प्रक्रिया ठीक तरीकों करावन सारू चुनाव ड्यूटी माए लगायोड़ा कर्मचारियां न सिखावन दी जा रही है। आज पाली माए 2 दिन रो सिखावन शिविर सरू फियो। ये विजय नगर निकाय चुनाव माए जनतारी बत्तियों बत्ती भागीदारी तय करन सारू चलाया जा रहा मतदाता जागरूकता अभियान रा तहत न्यारा न्यारा आयोजन रख्या जा रहा है। आज अजमेर माए स्वीप टीम री ओरों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम राखी चियो। कोटपुतली रा गंगा सागर तलाव माए दिया जलावन रो कार्यक्रम राखी चियो है। मालोत्रा माए रोचक सांप सीढ़ी पोस्टर रे जरिए खेल खेल माए वोट देवन रो महत्व बतायो जा रियो है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास प्रदेश माए पड़बारी शंका वाला और असुरक्षित स्कूल भवन और कक्षा कक्ष काम नी लेवन रा हुकम दीना है। मुख्य सचिव स्कूल भवन री हिफाजत रे बारा माए आज जयपुर माए राखी जी मीटिंग माए बोल रिया है। वे उच्च शिक्षा विभाग रा अहलकारा ने संस्थान भवन री हिफाजत जुड़ी लगातार निगरानी और जांच करावन सारू कहो। श्री वी श्रीनिवास स्कूला माए पीवन रो साफ पानी मुहैया करावन मा थई खास जोर दीनो। मीटिंग माए स्कूल शिक्षा रा अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव बतायो कि प्रदेश री 65,032 स्कूला रा तकनीकी सर्वे माए 3,032 जर्जर भवन और 83,032 पड़बारी हालत वाला कक्षा कक्षा री पिछान करी जी जहां काम लेवन मा थे रोक लगाती रही जी।

0: श्री यादव बतायो के आईआईटी जोधपुर और जयपुर रा एमएनआईटी रा जानकारा ने टीम कान्यो सरकारी स्कूल भवना रे स्वतंत्र तकनीकी सुरक्षा जांच करी जा रही है। मलेशिया माए खेली जी लेक्रोज चैंपियनशिप माए भारत री महिला टीम कांसा रो तमगो जीतियो है। कुआलालंपुर माए भारत मेजबान मलेशिया ने हरायो इन पाछे फिलीपींस ने मात देर सिंगापुर ने 10-9 हरार कांसा रो तमगो जीतियो। भारत री ई जीत माए उदयपुर और आरएसआर रा जनजाति हलका ने बेटियां रो मोटो योगदान रह्यो। राज्यपाल हरिभाव बागड़े आ उपलब्धि हासिल करण सारू भारत री महिला लेक्रोस टीम ने बधाई और शुभकामनावां दीनी है। मारा संदेश माए राज्यपाल कहो के सीमित साधना रे बावजूद राजस्थान री बेटियां बेहतरीन खेल रो दर्शाव कीनो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ई उपलब्धि सारू भारत री होशियार खिलाड़ियां री सराहना कीनी है। मारा संदेश माए मुख्यमंत्री कहो के जनजातीय हलका रे खिलाड़ी मेहनत और जज्बाओं देश और प्रदेश रो नाम रोशन कीनो है। केंद्र सरकार शक्कर री जमाखोरी और यहां जुड़ी सट्टेबाजी रोकण सारू शक्कर रा भंडारण री हद 4000 क्विंटल उंघटार 2000 क्विंटल कर दीनी है। नूवी हद ई महीनारी 15 तारीख हो 30 नवंबर ताई लागू रहवेला। उपभोक्ता मामलात खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय रे मुजब नुआ नियमा रे तहत कोई कारोबारी स्टॉक मिलिया पाछे 30 दिनों बत्ता बगत ताई ते हद बत्ती शक्कर नी राख सकेला। इस आगे सरकार दिसावर बिना फीस मंगवाई जावन वाली कच्ची चीनी री प्रोसेसिंग और बिक्री री समय सीमा में ही बदलाव की नो है। दिसावरों कच्ची शक्कर मंगावन वाला सारू खरीद री तारीख हूं 2 महीना री मियाद माए इन सफेद शक्कर बनार देशी बाजार माए बेचनु जरूरी वेला। केंद्र सरकार कांदारा सुरक्षित भंडार हूं देश रा खास शहरा रा बाजारा माए प्याज री पूर्ति शुरू कर दीनी है। खाद्य मंत्रालय रे मुजब देश माए कांदा रा बधता मूल माथे काबू करण सारू कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियां और ट्रकां रे जरिए प्याज री पूर्ति करी जा रही है। मंत्रालय रे मुजब रेलगाड़ियां सा गई ट्रकां हुई करीब 1000 मीट्रिक टन प्याज बाजारा माए भेजो चाहियो है। सरकार साफ कीनो है के बफर स्टॉक हो प्याज बाजार माए आया पाछे इनरा मूल माए कमी आवन लगी है और आवता दिना ओ और सस्तो फैला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी कहो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाज में तेजी जगह बना रही है। वे आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT रा 66वां स्थापना दिवस समारोह में बोल रहा है। शिक्षा मंत्री कहो कि तेजी उभेरिया तकनीकी बदलाव रे मुजब किताबा और कोर्स में ही बदलाव जरूरी है। वह कहो कि इन विद्यार्थियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने समझण और वन आत्मविश्वास सागे जिम्मेदारियों काम लेवन माए मदद मिलेला। आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुन ली रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SCO शिखर सम्मेलन माए आतंकवाद रा इकोसिस्टम और फंडिंग ने खत्म करण री अरज कीनी। पानी बचावन और इनरा बेहतर प्रबंधन रबारा माए विचार करण सारू नई दिल्ली माए आज 2 दिन रो शिखर सम्मेलन शुरू कियो। प्रदेश माए जर्जर और असुरक्षित स्कूल भवन और कक्षा काम नी लेवन रा हुकम दिया गया। और मलेशिया माए भी लेक्रोस चैंपियनशिप माए भारत री महिला टीम कांसा रो तमगो जीतियो। टीम माए राजस्थान रा जनजातीय हलका री 9 खिलाड़ियां रो शानदार प्रदर्शन। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमिर चैनल है। श्रोताओं शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो चला है कार्यक्रम किसानवाणी का। आइए सुनते हैं।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए
2: कोई डर नहीं,
3: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
4: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
5: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
6: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
5: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
6: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
5: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
7: कार्यक्रम किसान वाणी सुनवा वाला सगला है तालवा ने जका दूर दराज गांव ढाणी रे मायने बैठे हुए कार्यक्रम सुन रहे है, आप सगला है तालवा ने घणे मानसू प्रभु दयाल बरमारो राम राम साय। और सागे सागे अदिति बहन ताने भी मोकलो मोकलो राम राम सा।
8: राम राम प्रभु भाई और सुन बाला सगला श्रोतावा ने अदिति भट्टरो ने भरियो नमस्कार और राम राम सा।
7: काई हाल चाल अदिति बहन?
8: बहुत बढ़िया हाल चाल, और बिरखा की रुत छे, चौमासो चाल रहो छे, पानी बरस रहो छे, और चारू मेर यहाँ लाग रहो छे कि पोषण ही पोषण अपनी जमीन ने मिल रहो छे।
7: बिल्कुल पोषण तो देखो अपनी जमीन ने जदी मिले चोखी बिरखा हुए, पर देखो अब खट्टे खट्टे जिया छांटा छिड़को हुए है और कई जगह जिया छांटा छिड़को नहीं हुआ तो अपनी फसलां है जिकी भी बिरखा रे अभाव रे मायने जलवा भी लागण लाग रही है। जब पोषण री बात कर रहे हो तो देखो आप स्वास्थ्य है चंगो बनायो रखने वास्ते आपने सोखी जी की खुराक है खान पान रो अपन पूरो ध्यान रखना चाहिए
8: जी। और आप बात करवा की भी यही है कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1-7 सितंबर तक मनायो जावेलो, और हर चीज के पीछे ओकड़ा कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होवे प्रभु भाई। तो ई राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के पिछोकड़े भी यही बात छुपोड़ी है कि संतुलित आहार, पोषण स्वास्थ्य और कुपोषण से बचाव के प्रति आपने सब ने जागरूक रहना है।
7: बिल्कुल जागरूक रहना है, देखो अपन अच्छे स्वास्थ्य बना रखना है, अगर आप स्वास्थ्य चोखो रे बोलो तो अपन कोई भी काम करना बिगे मायने अपन अच्छी तरह सफलता अपन मिल सके है। जब आप स्वास्थ्य साध्य नहीं है तो आप चाहे अपने कतो ही धन दौलत हुए चाहे बाकी सारी चीजें हुए लेकिन आप स्वास्थ्य सही नहीं हुए तो बाकी चीजों को अपन लाभ नहीं उठा सका।
8: जी सर, स्वास्थ्य नहीं सबसे मोटो धन भी कहो गयो है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आपकी बात सु सहमत छू। और सागे ही अगर आप बात करा आपने माटी की और आपने माटी की पोषण की तो भी आपने बीच में जो विषय विशेषज्ञ छे
7: बिल्कुल सही थे, मैं समझ रही हूँ था सर हो गए भाई। आप अपने स्वास्थ्य की बात करा भी देखो अपने माटी है अपनी धरती माता है इको स्वास्थ्य अगर चोखो रे बोलो तो देखो फसल चोखी मिल पावली और फसल चोखी मिल पावली तो आपनो जो किसान को जीवन स्तर है वो सीधो सीधो विषय जुड़ो है। तो आपने विशेष विशेषज्ञ अपने सागे स्टूडियो में मौजूद है सरिता चौधरी जी, तो बसू बातड़ी थे करो देगे आप और किसान भाई तक पूर्ति करवा।
8: श्रोताओं आज भारत सागे जानकारी देवा खातिर उपस्थित छे सरिता चौधरी जी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर मृदा विज्ञान राजकीय कृषि महाविद्यालय मौजमाबाद जयपुर सु आप पधार्या और आज आप जानकारी लेवाला मृदा की सेहत, स्वस्थ मृदा, स्वस्थ फसल और समृद्ध किसान पर। पहली करा आपको स्वागत, राम राम सरिता जी।
9: राम राम किसान भाइयों।
8: सरिता जी सबसे पहली प्रश्न आ ही रह लो कि मृदा की सेहत या फिर आपा बोला कि मृदा को स्वास्थ्य छे कई?
9: स्वस्थ मिट्टी वो है जिसमें पर्याप्त मात्रा में जैविक पदार्थ, उचित पीएच और संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस व सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध हो और उसके साथ साथ ही सूक्ष्म जीव भी उचित मात्रा में उपलब्ध हो। और मिट्टी की संरचना के बारे में हम बात करते हैं तो वो क्या है? मिट्टी की संरचना वह जिसमें पानी और हवा का आवागमन अच्छे से हो सके, लेकिन लगातार एक ही फसल उगाने से और आवश्यकता से अधिक उर्वरकों का उपयोग करने से, फसल अवशेषों का जलाने से जिससे जैविक पदार्थों की कमी हो जाती है और मृदा की गुणवत्ता धीरे धीरे कम हो जाती है।

0: मर्दा का स्वास्थ्य वही है जिसमें उचित मात्रा में पोषक तत्व हो और सूक्ष्म जीव भी उचित मात्रा में उपलब्ध हो।
1: जी, आप बहुत ही बेहतर तरीके से सरल और सहज शब्द में आप माटी को स्वास्थ्य छह इकाई में समझाया। सागे ही आप सु या भी जानबो चावला की जो माटी को स्वास्थ्य छह वह फसल उत्पादन सु किण भात को एक दूसरा सु संबंधित छह कहीं एक दूसरा ने प्रभावित भी करे छे वह बताओ सा।
0: जैसे जैसे हम फसल उत्पादन करते हैं उसके लिए हमारे को क्या चाहिए? मिट्टी। मिट्टी में क्या चाहिए? पोषक तत्व। उसी प्रकार जैसे हम पोषक तत्व हम सप्लाई करेंगे उसी प्रकार से हमारे को प्रोडक्शन होगा। तो फसल उत्पादन के लिए हमारे को उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम ये सभी उपलब्ध है, तो ये क्या करते हैं फसलों में पौधों में उनके विभिन्न कार्य होते हैं, तो ये विभिन्न कार्यों को करने के लिए इनकी जरूरत होती है। तो इनको अगर हम संतुलित मात्रा में देंगे तो क्या होगा, अच्छे से पौधे उनको अपटेक कर पाएंगे और इस प्रकार हमारा फसल प्रोडक्शन भी बढ़ सकेगा।
1: जी डॉक्टर साहब, आप ये भी बताओ कि अगर भी माटी का स्वास्थ्य में बेहतर बनावो चाहवा तो कहीं कर्सा बाहर बना बना सके छे?
0: हाँ मैडम, जरूर हम बना सकते हैं, क्योंकि जैसे हम एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के द्वारा हम इसको अच्छे से उपलब्ध बना सकते हैं। इस प्रकार जैसे हम ऑर्गेनिक सोर्स कार्बनिक स्रोतों से उर्वरकों से और वर्मी कंपोस्ट हरी खाद इन सब को हम सप्लाई करते हैं, जिससे क्या होगा कि अच्छे से हम अप्लाई करेंगे तो पौधे सब चीजों को संतुलित मात्रा में उपयोग कर पाएंगे, तो जिससे क्या होगा पौधे अच्छा प्रोडक्शन देंगे।
1: जी सर, कसा बाहर बना आपने ऊपर छे कि माटी को स्वास्थ्य आपा कहीं बेहतर बनावा, सागे ही अगर संतुलित पोषण की बात करा तो संतुलित पोषण देखो सबने चाहे जे, अगर मानव छे तो मानव ने भी चाहे जे, आपना पशु छे वाने भी चाहे जे, सागे ही सागे आपनी माटी छे वाने भी संतुलित पोषण चाहे जे। तो संतुलित पोषण किन बात को आपा राखा जिससे समृद्ध फसल उत्पादन आपने मिल सके?
0: मृदा स्वास्थ्य को हम बेहतर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें कुछ सबसे पहले हमारे को मृदा की जांच की आवश्यकता होगी। मृदा की जांच करना होगा, मृदा जांच के बाद हम उसमें संतुलित पोषण उपलब्ध करवाएंगे, फसल विविधीकरण को हम अपनाएंगे, हम उसमें कार्बनिक स्रोतों को अप्लाई करेंगे। इस प्रकार हम मृदा स्वास्थ्य को हम बेहतर बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं मृदा जांच के बारे में। मृदा जांच से हमारे को पता लगेगा कि मृदा में कौन से पोषक तत्व उपलब्ध है, कौन से की कमी है। अगर हमारे को पता लग जाती है मृदा में कि ये पोषक तत्व कम है तो हम क्या करेंगे उसको ही हम अप्लाई करेंगे। जैसे ऐसा मानते हैं कि जैसे नाइट्रोजन की कमी है तो हम यूरिया अप्लाई कर देंगे, इससे क्या होगा कि नाइट्रोजन अप्लाई कर देंगे, उसके बाद फास्फोरस की कमी है तो फास्फोरस अप्लाई कर देंगे, पोटेशियम की कमी है तो पोटेशियम सप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार हमारे को जिस पोषक तत्व की जरूरत है हम वो पोषक तत्व उसके अकॉर्डिंग ही हम सप्लाई कर देंगे और फसल उत्पादन को हम बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद हम जैविक स्रोतों को अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होगा कि जैविक स्रोत अप्लाई करेंगे तो उसमें सूक्ष्म जीव है उनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी और जो भी हम पोषक तत्व सप्लाई करते हैं वो पौधे ऐसे तो अपटेक नहीं कर पाते, लेकिन उनको उनकी सरल अवस्था में सूक्ष्म जीव उसको उपलब्ध करवा देते हैं। इस प्रकार पौधे जो भी मिट्टी में उपलब्ध अवस्था में है, अनुपलब्ध अवस्था में जो पोषक तत्व पड़े हैं उनको पौधों को सप्लाई कर देते हैं। इस प्रकार हम मृदा स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक ये उपयोग कर सकते। दूसरा फसल विविधीकरण। फसल विविधीकरण एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे फसल विविधीकरण क्या है, फसल विविधीकरण में हम गेहूं उगाते हैं, गेहूं के बाद हम दलहनी फसलें उगाते हैं, तो क्या होगा गेहूं जो ऊपर की जमीन है ऊपर की जो लेयर है मृदा की उसमें से पोषक तत्वों को अपटेक कर लेंगे, और दूसरा दलहनी है वो जो लोअर डेप्थ है उसमें से पोषक तत्वों को उपलब्ध कर लेंगे। जैसे हम दलहनी की बात करते हैं तो दलहनी में क्या होगा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु है जैसे राइजोबियम है, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है, पोटेशियम सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है, तो इससे क्या होगा कि वो जो मिट्टी में अनुपलब्ध अवस्था में जो पोषक तत्व पड़े हैं उनको उपलब्ध अवस्था में भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम जो भी मिट्टी में जो पोषक तत्व जो अनुपयोगी है उनको हम उपयोगी बना सकते हैं, और जिससे क्या होगा उर्वरकों की लागत कम होगी, उर्वरकों की लागत कम होगी तो फसल उत्पादन की लागत

0: लागत कम होगी और किसान की आय में बढ़ोतरी होगी। जैसे हम बात करते हैं दलहनी फसलों में, फसल विविधीकरण में दलहनी फसलें क्या करती है, उनमें हम राइजोबियम जीवाणु, फॉस्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया एंड पोटेशियम घुलनशील जीवाणु, अगर हम इनको उपयोग करते हैं तो जो भी मृदा में जो अनुपलब्ध अवस्था में जो पोटेशियम फॉस्फोरस पड़ा हुआ है उसको ये सूक्ष्म जीव उनको घुलनशील अवस्था में बदल देते हैं, जिससे क्या होगा जो भी हमारे को उर्वरक की लागत होगी वो कम हो जाएगी, दूसरी जो किसान की फसल उत्पादन की लागत वो कम हो जाएगी, जिससे फसल उत्पादन हम बोल सकते हैं कि एक तरह से समृद्ध किसान तो वही आय का एक जरिया बन जाएगा। दूसरी चीज फसल विविधीकरण के बाद में हम बात करते हैं कि और किस प्रकार ये बेनिफिशियल है। हम फसल विविधीकरण में जो भी उर्वरक जो भी हम अप्लाई करते हैं, जैसे दलहनी फसलें नाइट्रोजन का उपयोग खुद तो करते हैं, लेकिन जो अगली फसल होगी उसमें भी वो उस नाइट्रोजन जो भी गांठों में जो नाइट्रोजन बनी है वो पड़ी रहेगी और अगली फसल में वो काम आ सकेगी। इसी में हम बात करते हैं मृदा संरक्षण, जैसे मृदा कटाव जो कि एक उर्वरक भूमि है उसका एक क्षरण कर देती है, उसको हम कैसे बचा सकते हैं कि जैसे हम जो भी फैलने वाली फसलें हैं जैसे दलहनी फसलें, दलहनी फसलों को उगाने से जो भी मृदा हवा के द्वारा मृदा क्षरण होगा उसको हम बचा सकते हैं, और पानी के कटाव द्वारा जो भी शुरू में जो पानी की बरसात की बूंदें पड़ती है उससे जो क्षरण होता है उसको भी हम उससे बचा सकते हैं। दूसरा जो भी नाइट्रोजन का वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो नाइट्रोजन का लॉस होता है उसको भी हम उसके थ्रू बचा सकते हैं। और हम बात करते हैं इसमें कि जो भी गेहूं के साथ वाली क्रॉप्स है जो भी फसलें हैं उनमें हम जो यूरिया अप्लाई करते हैं उसका क्या होता है कि ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा, क्योंकि वानस्पतिक वृद्धि बहुत ज्यादा होती है, इसी प्रकार हमारे को ये संतुलित मात्रा में हमारे को सप्लाई करना चाहिए। संतुलित मात्रा में सप्लाई करेंगे तो सारे जो भी किसान की लागत है वो, और इसमें एक चीज और हम ध्यान रखेंगे कि कब हमारे को न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने हैं, किस टाइम सही वक्त पे सही विधि से और सही समय पर हम इसको सप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी हम उर्वरक और जो भी हम स्रोत हम अप्लाई करेंगे वो क्या होगा उससे जो सही मात्रा में उसको अपटेक कर पाएगा और इससे उर्वरक की दक्षता बढ़ पाएगी और लागत में कमी आएगी।
1: श्रोताओं आपा जानकारी ले रहे हैं मृदा की सेहत, स्वस्थ मृदा स्वस्थ फसल और समृद्ध किसान, और आपने जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सरिता चौधरी जी, असिस्टेंट प्रोफेसर मृदा विज्ञान राजकीय कृषि महाविद्यालय मोजमाबाद जयपुर सुहा पधार्या है। डॉक्टर साहब अगलो प्रश्न है कि संतुलित पोषण कताई किन भात का स्रोतों का उपयोग आपने करना चाहिए कर्जा बाहर बनाना, वह बताओ सर।
0: जी किसान भाइयों मैं बताना चाहूंगी कि संतुलित पोषण में हम कार्बनिक स्रोतों, उर्वरकों, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट, हरी खाद, इन सभी का हम एक साथ उपयोग करेंगे। जैसे हम बात करते हैं फार्मयार्ड मैन्यूर, गोबर की खाद, गोबर की खाद क्या होगा इसमें कार्बनिक स्रोत ज्यादा होंगे, कार्बनिक स्रोत ज्यादा होंगे तो क्या होगा उसमें मृदा की जो संरचना जो भौतिक अवस्था है मृदा की उसको भी सुधार में सहायता मिलेगी। भौतिक जो संरचना उस पर जनरली कम ही ध्यान जाता है, इससे क्या होगा कि जो पानी हवा का आवागमन है वो भी बाधित नहीं होगा। अगर हमारी भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था और जैविक अवस्था तीनों अवस्था मृदा की अगर सही है तो मृदा स्वास्थ्य अपने आप ही बेहतर होगा। और संतुलित पोषण में हम बात करेंगे तो ये सभी जो मैंने स्रोत बताए उनका हम सही वक्त पे सही विधि से और सही टाइम पे हम उपयोग करेंगे, जिससे क्या होगा जो भी उर्वरक हम अप्लाई कर रहे हैं, जो भी स्रोत हम अप्लाई कर रहे हैं उनको प्लांट अच्छे से उपलब्ध कर पाएगा तो हमारे जो नाइट्रोजन का क्षरण है जो लॉस हो रहा है वो नाइट्रोजन बचेगा, जो लीचिंग के थ्रू जो लॉस हो रहा है वो बच जाएगा, जो भी ताप की थ्रू जो नाइट्रोजन का लॉस हो रहा है वो बच जाएगा। जैसे वानस्पतिक वृद्धि के समय नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत होती है तो हम उसी टाइम पे नाइट्रोजन का हम अप्लाई करेंगे तो उसके साथ ही हम उसके अलग अलग अवस्था में स्प्लिट डोजेस थोड़ी थोड़ी अवस्था में उसको हम सप्लाई करेंगे, जिससे जितना जरूरत होगी प्लांट को उतना ही वो मृदा से ले पाएगा।
1: जी सर, अगर बात करें सरिता जी मृदा स्वास्थ्य का प्रबंधन की तो वह अपा किड़ भांति कर सका जिसे की करसा बाहर बना की आय में भी वृद्धि हुए।

0: और अपना कर्जा बाहर बढ़ा को आर्थिक स्तर में भी वृद्धि हो।
1: जैसे मैं इसमें बताना चाहूंगी आपको किसान भाइयों, जैसे हमारे को पता करना होगा कि मृदा में कौन से पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में उपस्थित है और कौन से पोषक तत्व कम मात्रा में उपस्थित है, मृदा की अवस्था कैसी है, मृदा की कंडीशन कैसी है। हमारे को ये सब चीजें जानने के बाद ही हम बता पाएंगे कि मृदा में कौन से पोषक तत्व उचित है और कौन से कम है। अगर जो उचित है तो उनको हम कैसे पौधों को हम उपलब्ध करवा सकते हैं वैसे, और दूसरी चीज जो कम है उनको हम सप्लाई कर सके। और हम मृदा स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए हमारे को मृदा की, जैसे हमारा जो स्वास्थ्य है, जैसे हम चिकित्सक के पास जाके हम चेक करवाते और पता करते हैं कि हमारे कौन सी बीमारी है, उसी प्रकार हम मृदा के

0: करते और पता करते हैं कि हमारे कौन सी बीमारी है। उसी प्रकार हम मृदा के स्वास्थ्य की भी हम जांच करने के बाद बताएंगे कि मृदा में कौन से पोषक तत्वों की कमी है और उसी के अनुसार उसको हम ट्रीटमेंट देंगे। जैसे हम मान सकते हैं फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्व अप्लाई करना और मृदा में जो सूक्ष्म जीव है, जो लाभकारी जीव है, वो क्या करेंगे, जो नत्रजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, उनको उपलब्ध मात्रा में फसलों को दे पाएंगे। जैसे हम बात करते हैं नाइट्रोजन, ये तो मुख्य पोषक तत्व हो गए, हम इनको तो अप्लाई कर दिए क्योंकि हमारे को पता है यूरिया देना है, डीएपी देना है, एमओपी देना, ये सब हम अप्लाई कर देते। सूक्ष्म पोषक तत्वों की ओर ध्यान नहीं जाता। सूक्ष्म पोषक तत्व क्योंकि ये भी जिस प्रकार 17 आवश्यक पोषक तत्व है, उसी प्रकार नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और जो भी द्वितीय पोषक तत्व है, इनको हम उतना इम्पोर्टेंस देते हैं, उतना ही हमारे को सूक्ष्म पोषक तत्वों को देना चाहिए क्योंकि ये भी फसलों में वही काम करते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक पोषक तत्व करते हैं, तो हम इनको नेग्लेक्ट नहीं करें। इसके लिए हमारे को जैसे जिंक, जो हम गेहूं में कभी कभी होता है कि गेहूं में दाने नहीं बन पाते, परागण नहीं हो पाता, तो उनमें क्या होगा कि बोरोन और जिंक की कमी होगी, वो हम जान नहीं पाते। किसान भाइयों, इसको जानने के लिए हमारे को मृदा की जांच करवानी चाहिए। मृदा की जांच के बाद उसी के अनुसार हमारे को उसमें कौन से तत्वों की कमी है वो देना चाहिए, कौन से सूक्ष्म जीव हमारे को देने चाहिए उनको हम अप्लाई करना चाहिए। जिस प्रकार हम बात करते हैं सूक्ष्म तत्व जो पोलिनेशन, परागण और दाना बनने, इन सब में योगदान रखते हैं, उसी प्रकार हमारे को ये पोषक तत्व सही टाइम पे और सही समय पर हमारे को सप्लाई करना चाहिए, जिससे क्या होगा किसान की आमदनी बढ़ेगी। क्योंकि मान लो नत्रजन हमने अप्लाई कर दी, वनस्पतिक वृद्धि हो गई, लेकिन क्या होगा जब बोरोन की कमी हो गई तो उसमें परागण नहीं होगा, परागण नहीं होगा तो दाना नहीं बनेगा, तो हमारे को वनस्पतिक वृद्धि तो मिल गई, हमारे को चारा तो मिल गया, लेकिन हमारे को दाना नहीं मिला, हमारे किसानों को क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, जिससे क्या होगा किसान की आय में कमी आएगी। तो हमारे को क्या करना है, आय में वृद्धि करनी है, तो हमारे को ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। आजकल तो बहुत सारी जो मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है, जो और अगर प्रयोगशाला आसपास नहीं है तो कृषि महाविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय में भी हम मृदा की जांच करवा सकते हैं और हम देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारे को मृदा के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहिए, और वहाँ पे हम परीक्षण भी ले सकते हैं कि हमारी मृदा को हम कैसे सुधार सकते हैं। मृदा का स्वास्थ्य अगर खराब हो गया, जैसे उसमें लवणों की मात्रा बढ़ गई, तो हम क्या करें, कैसे उसको सही करें, उसके लिए भी अलग अलग स्त्रोत हम अप्लाई करेंगे। जैसे मृदा में लवणों की मात्रा बढ़ गई तो हम उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करवाएंगे और हम पता करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। जैसे सोडिक सॉइल हो गई, जिसमें सोडियम लवण ज्यादा है, तो हम उसमें जिप्सम की सप्लाई करेंगे, जिससे जो बैलेंस है पोषक तत्वों का वो हो जाएगा, और इस प्रकार हम हमारी मृदा का प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं मृदा में अगर ज्यादा मात्रा में पानी है तो क्या करेंगे, वो नाइट्रोजन का लॉस कर देगा, तो हमारे को उसका भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम मृदा में कितना पानी भरने दे, कितना किस टाइम पे हम पानी दे, जिससे पानी की बचत होगी, क्योंकि ये भी तो एक लागत ही है, क्योंकि अगर लागत ज्यादा होगी तो नुकसान होगा। इस प्रकार हमारे को लागत कम से कम करने पे ध्यान देना चाहिए और सही टाइम पर, सही समय हमारे को सही विधि से हमारे को पोषक तत्व उपलब्ध कराने चाहिए, और इस प्रकार हम हमारी मृदा का प्रबंध कर सकते हैं।
1: जी सरिता जी, चलता चलता आप कर सब आयर बनाने कोई संदेश देना चाहो तो बताओ सा।
0: हाँ जरूर, मेरा संदेश है स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ फसल, समृद्ध किसान और समृद्ध भारत।
1: श्रोताओं, हमारा आप जानकारी लिया डॉक्टर सरिता चौधरी जी से, आप असिस्टेंट प्रोफेसर मृदा विज्ञान राजकीय कृषि महाविद्यालय मौजमाबाद जयपुर से आप पधारे और इतनी बढ़िया जानकारी मृदा की सेहत, स्वस्थ मृदा, स्वस्थ फसल और समृद्ध किसान पर आप इतनी बढ़िया जानकारी दिया, इसके लिए आपको घणो घणो धन्यवाद सा।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहा,
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से।

0: कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त। और लो,
1: पहली वाली बात कहा,
2: परम तो सब यही डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बात सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जल्दी खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।
4: हाँ तो भाई लोग, थोड़ी देर पहले जानकारी आप तक पहुंचती हुई, स्वस्थ मृदा, स्वस्थ फसल और समृद्ध किसान, ये विषय पर जानकारी अपने सरिता चौधरी जी दे रहा और बातचीत अपने अदिति बहन जी कर रहा, तो बहुत ही चौकी जानकारी था तक पहुंचती हुई। अब देखो आपने जगह पावना पधारिया बने और मारे सागे अदिति बहन अन दुनिया ने मोकड़ो मोकड़ो धन्यवाद और धन्यवाद स्वरूप। अब बादवारो मीनू चलन लाग रहे है, सिंजर और टेम है, तो एक मिट्टी सी लोक रचना बाबारी आप लोगों तक पहुंचती हुई, ऐसा सुनो।

0: इमीट हसा लोक भजन के सागे ही कार्यक्रम को बखत पूरो हुयो तो देव अदिति ने
1: और प्रभु जल ना गया
0: चालार करा
1: राम राम सा। प्रायोजित थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। शाम के 7:30 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुनवा वाला सगला हेतालवा ने घने मान सुपर बुद्धियाल बरमारो राम राम साय और सागे सागे अदिति बहन थाने भी एक बार मोकलो मोकलो राम राम साय
1: राम राम प्रभु भाई और सुनबाला सगला श्रोतावा ने अदिति भट्टरो ने भरियो नमस्कार और राम राम सा।
0: देखो अदिति बहन, किसान को जीवन तो पूर्णतया जो खेती के ऊपर निर्भर हुए है और कणा चौमासा की फसल ले वे कदे वो उन्न वाली फसल ले वे कई भाई लोग यहाँ का है जगह देखो सब्जियों की खेती भी ले हुए है
1: जी।
0: और अब देखो जहाँ चौमासा की फसल है जगह कटसीर भी के पचल जहाँ खेत खाली उसी या कई भाई लोग यहाँ का है जगह खेत खाली है पहली सुरमा की प्लानिंग है बना रखी आपकी योजना जहाँ सब्जियों की अगेती फसल लेनी चाहिए

0: तो सब्जियों की फसल लेर भी युवा जगह भाई लोग है जगह शिक्षित भी है बिग सागे सागे वे जाने खेती का तौर तरीका तो सब्जी की खेती लेर भी वे बहुत चोको मुनाफो कमा सके है।
1: जी सर, और आजकल तो आधुनिक तकनीक ने अपना आपा जो छे रोजगार का अवसर भी सब्जियां की और दूसरी अपनी रबी की फसल में खरीफ की फसल में आपा अपना सका छा। तो सब्जियां की खेती केवल यहाँ को ना प्रभु भाई की अब पारंपरिक खेती तक ही सीमित छा और जो अपने युवा किसान छे वो थोड़ा सा सजग हुआ छे सचेत हुआ छे और जो भी पौध तैयार करनी छे उत्पादन करनो छे चाहे पैकेजिंग ले लियो प्रसंस्करण ले लियो और चाहे वह तैयार फसल ने बाजार तक पुगाणो होवे
0: बिल्कुल
1: कई सारा स्तर अपना होवे छे और हर स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार आपनो शुरू कर सके छे अगर अपना युवा साथी युवा करसा भाई बहन अगर चाहे तो।
0: बिल्कुल ते सही बात की हो, देखो के पौध तैयार करवा की जठन तक बात है तो देखो ओ यान को काम है के जगह जिया शिक्षित युवा है तो वे कम जगह के मायने सब्जियां की जिया अगेती जिया बारा फसलां होसी जिया टमाटर है मिर्च है बैंगन है फूल गोभी है पत्ता गोभी जगी अब अगेती है
1: जी।
0: बाकी अगर वे पौध तैयार करे तो बन कम जगह के मायने भी पौध तैयार कर जगह भाई लोग खेतीबाड़ी बड़ा स्तर पर करे बन वे बेच सके भी मुनाफो को मास कहे।
1: जी सही कह रहे हो सागे। अगर मौसम की बात करा तो सामान्य मौसम के हिसाब से बाजार में सब्जी हर वक्त आपा पुगा सका छा लेकिन साथ साथ अगर आपने चोखा भाव चाहे जे जिया मूली छे गाजर छे पालक छे धनियों खीरो लौकी टमाटर ये सब सब्जियां का मायने घना सारा मैंने तो स्वर्ण रूपी अवसर लागे छे जो की आपने आर्थिक रूप से तो सक्षम बनावेला ही सागे आपने सक्षम किसान भी बनावेला है जिसे की आपनो जो भविष्य छे वो उज्जवल जरूर हो सके छे।
0: बिल्कुल उज्जवल हो सके। देखो ऐ जगह थे नाव लिया तो ऐ जिया अगेती किस्म है तो आगे फसल है आ की भाई लोग जगह पौध है नर्सरी तैयार कर बे बाजार के मायने या जठे भी संबंधित जगह भाई लोग बन जरूरत है बन बेच सके है सीजन।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो सागे। अगर आप बात करा पॉली हाउस की शेड नेट हाउस की लो टनल जैसी तकनीक ने अपना मौसम के अनुसार भी आप सब्जियां उगा सका छा और मौसम का विपरीत जिया कहवे छे की धारा सु विपरीत अगर आप बहवा तो आप एक नयो मुकाम हासिल कर सका छा। तो धारा सु विपरीत अगर अपना युवा साथी बहवेला और पॉली हाउस शेड नेट हाउस लो टनल ने अपनावेला तो या तकनीक ने अपना भी आपनो नयो भविष्य नयो स्वर्ण नयो भारत बना सके।
0: बिल्कुल देखो आप सब्जियां की बात कर रहे हैं हार देखो अब चौमासा की जिया सब्जियां जिया काचरा है टींड सी है देखो और फलियां है और विशेष रूप से अपने गुआर की जगह आप देसी गुआर भी की बुज्जी जी आप बनावा तो बाजरा की रोटी भी के ऊपर फलियां को साग घालर दद खावर वो गीत के माध्यम से भाई लोगों तक पुगे तो क्या लगे
1: तो बहुत ही चोखो सो मीठो रस घुल जासी। तो प्रभु भाई आप वह गीत ही सुना दो बाजरा की रोटी।
0: बिल्कुल सुनो सा।

0: अदिति बहन
1: जी सर,
0: बहुत जले की रोटी के पछे देखो जिम जुटी हुई पछे अब आप कार्यक्रम में जानकारी की तरफ ले चला।
1: चलो सर।
0: और एक चौकी से जानकारी है डॉक्टर राजेश सैनी जी अपन दे रहे हैं
1: तो
0: और बूंद बूंद सिंचाई विधि।
1: चलो सर। श्रोतावा आज अपने साथ स्टूडियो में है डॉक्टर राजेश कुमार सैनी, आप हरित गृह विशेषज्ञ एवं इंटरनेशनल ट्रेनर भी है और आज आप यहाँ से बात कर सिंचाई की सूक्ष्म विधियों का बारे में। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब कार्यक्रम में आपको खूब खूब स्वागत है। राम राम सर।
2: राम राम सर।
1: जी कि डॉक्टर साहब अब आज बात कर ला कि सिंचाई की जो विधियां हुए चाहे सूक्ष्म विधियां वे कौन कौन सी चाहे। सबसे पहले तो काश्तकार भाई ने मोटा तौर पर बताओ सा कि कौन कौन सी सूक्ष्म विधियां चाहे जाने काश्तकार भाई काम में ले सके चाहे सिंचाई के।
2: किसान भाइयों जब हम सिंचाई की सूक्ष्म विधियों की बात करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से चार विधियां आती हैं, जैसे फवारा पद्धति जिसको कि आप स्प्रिंकलर कहते हैं, छोटा फवारा पद्धति जिसको कि आप मिनी स्प्रिंकलर कहते हैं, और तीसरा जो है रेन गन आज काफी चलन में है, और ज्यादातर जो किसान भाई आज अपना रहे हैं वो है ड्रिप इरिगेशन, जो है समय की मांग।
1: तो देखो सर डॉक्टर साहब आप जी को प्रदेश जो वही पानी की कमी है और काश्तकार भाई ने जब यहाँ सूक्ष्म सिंचाई विधियां को अगर जानकारी हो तो वे कम मात्रा में पानी ने काम ले चोखो उत्पादन ले सके है। अब आपसे यह जानबो चाहूंगा सर कि सबसे पहले तो आप यही बताओ भाई जो सबसे ज्यादा कारगर विधि

0: फ्लश वाल, जिससे कि हम हमारी जो पाइपें हैं उसमें अगर काई कचरा अगर इकट्ठा हो जाता है तो उसको साफ करने के लिए जो हम वाल इस्तेमाल करते हैं उसको फ्लश वाल कहते हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम सिंचाई करते हैं तो सिंचाई करने से पूर्व पाइपों में कुछ हवा भर जाती है, जिसको अगर हम नहीं निकाले जाए तो पाइप फटने का खतरा रहता है, अंदेशा रहता है। तो ऐसे में हम जो वाल का इस्तेमाल करते हैं उसको एयर रिलीज वाल कहते हैं। और ऐसे ही नॉन रिटर्न वाल, जिससे कि पानी जो आपने एक बार पंप कर दिया है वो वापस मोटर के ऊपर जोर ना डाले, बैक फ्लो ना हो, तो इसके लिए भी नॉन रिटर्न वाल, ये कुछ चीजें काम में ली जाती हैं। उसके अलावा जो प्रेशर गेज है, दाब को नापने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है उसको प्रेशर गेज कहते हैं। और इस प्रेशर गेज पे खास तौर से ये ध्यान में रखा जाता है, जहां पानी का इनलेट हो रहा है वहां पे एक प्रेशर गेज लगाया जाता है और आउटलेट पे एक प्रेशर गेज लगाया जाता है, और दोनों प्रेशर गेज के अंदर जो रीडिंग आती है लगभग एक समान आनी चाहिए। अगर ज्यादा उसमें डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पाइप में चौकअप है या फिल्टर में कहीं रुकावट आ गई है, तो ये हमें सचेत करता है कि हमें फिल्टर साफ करना है। वहीं प्रेशर जो है हमको काम में जो लेना है, 1 kg फोर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर जो प्रेशर है, इससे कम प्रेशर अगर होगा तो हमारे जो ड्रिपर्स है वो काम नहीं कर पाते सुचारू रूप से। वहीं अगर 4 kg फोर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर का प्रेशर, उससे ज्यादा अगर है तो पाइप फटने का अंदेशा रहता है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना होता है कि कितना प्रेशर हमें मेंटेन करके चलना है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण घटक है उसको बोलते हैं वेंचुरी, या फिर हम बोलते हैं फर्टिलाइजर टैंक। तो किसान को ये सुनिश्चित करना होता है कि वो वेंचुरी लगाना चाहता है या फर्टिलाइजर टैंक, दोनों के अपने अपने फायदे हैं। और इनके द्वारा क्या होता है कि जो उर्वरक है, पानी में घुलनशील उर्वरक पानी के अंदर घोलकर हम बूंद बूंद सिंचाई तंत्र के द्वारा पौधों की जड़ों तक हम पहुंचा पाते हैं, और दोनों ही कारगर हैं। मेन लाइन और सब मेन लाइन जो है, पाइप की दो प्रकार की लाइन होती है, मेन लाइन और सब मेन लाइन, जो कि HDPE जो लाइन होती है जिसको बोलते हैं हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन की बनी हुई होती है, इनका इस्तेमाल किया जाता है। और अंत में जो है वो काले रंग की पतली पाइपें होती हैं जिसको कि हम लैटरल्स कहते हैं, जो कि 12 mm की होती है और 16 mm की और 20 mm की होती है। ज्यादातर जो आजकल इस्तेमाल में लाई जा रही है वो 16 mm वाली है। और 16 mm की जो लैटरल लाइन होती है उसकी जो पानी को लेके चलने की क्षमता होती है, 400 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो पानी को लेके चलने की उसकी क्षमता होती है। वहीं अगर 12 mm की बात करें तो 200 लीटर प्रति घंटा का उसका क्षमता होती है। वहीं 20 mm की अगर बात करें लैटरल्स की, तो 600 लीटर प्रति घंटा पानी को लेके चलने की क्षमता उसकी होती है। और इन्हीं लैटरल्स के ऊपर कुछ ड्रिपर्स लगे होते हैं जिनको कि ऑनलाइन ड्रिपर्स या इनलाइन ड्रिपर्स कहा जाता है। और इनसे जो रिसाव निकलता है, पानी जो निकलता है, तो उसको हम नापते हैं LPH में, लीटर पर आवर, एक घंटे में कितना पानी निकला उस ड्रिप से, वो उसका डिस्चार्ज कहलाता है। और डिस्चार्ज के आधार पर हम ये ड्रिपर्स को 3 श्रेणी में बांट सकते हैं, निम्न डिस्चार्ज वाले जो कि 0.25 लीटर से लेकर 1 लीटर तक की क्षमता वाले, और मीडियम डिस्चार्ज वाले 2 से 4 लीटर वाले, और हाई डिस्चार्ज वाले 5 लीटर से अधिक डिस्चार्ज जो देते हैं उन ड्रिपर्स को।
1: डॉक्टर साहब, बहुत ही विस्तार से आप बता दिया कि बूंद बूंद सिंचाई तंत्र का जो घटक है वे कहीं कहीं है। अब ऑनलाइन ड्रिपर्स और इनलाइन जो ड्रिपर है वे भी कास्ता चलन में है, और कास्तकार भाई कुछ तो जाने से पर कुछ नहीं, जानकारी को अभाव है। तो आपसे जानवो चाहना भाई, ये कहीं हुए थे और किन तरीका से माका जो कास्तकार भाई है वे आपकी फसल में सिंचाई का रूप में यानी काम में ले सके।
0: ऑनलाइन ड्रिपर्स वो ड्रिपर्स होते हैं जो कि लैटरल्स के ऊपर फिक्स किए जाते हैं, ऊपर लगाए जाते हैं। और इनलाइन ड्रिपर्स जो होते हैं कि वो पहले से ही फैक्ट्री में ही ड्रिप लाइन के अंदर लगे हुए आते हैं। अब दोनों का उपयोग क्या है, उपयोग जो फसलें होती हैं जो जिनमें दूरियां कम होती हैं, जैसे सब्जियां हो गई, तो सब्जियों में दूरी पौधे से पौधे की दूरी कम होती है, 30 सेंटीमीटर की होती है, 45 सेंटीमीटर की होती है, 60 या 120 सेंटीमीटर की होती है। तो इन सब चीजों के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, इनलाइन ड्रिपर्स का। अगर आप तंबाकू की खेती कर रहे हैं तो भी उसमें इनलाइन ड्रिपर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाना की खेती कर रहे हैं आप, केले की खेती कर रहे हैं, तो भी उसमें इनलाइन ड्रिपर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑनलाइन ड्रिपर्स खास तौर से उन पेड़ पौधों के लिए होते हैं जिनकी दूरियां ज्यादा होती है। खास तौर से अगर हम, मैं कहूं बगीचों के बारे में बात करूं, आम का बगीचा हो गया, अनार का बगीचा हो गया, नींबू का बगीचा हो गया, या आंवले का बगीचा हो गया, तो इन सब चीजों में जो ड्रिपर्स लगाए जाते हैं वो ऑनलाइन ड्रिपर्स होते हैं और इनका उपयोग किया जाता है।
1: जी, बहुत ही बढ़िया आप बताया सर। अब आपसे चलता चलता यही जानना चाहूंगा भाई, ड्रिप सिंचाई तंत्र लगाती टाइम का जो काश्तकार भाई हैं वे कौन कौन सी ऐसी खास मोटी बातें छे जहां को अगर ध्यान में रखे ला तो वहां को जो सिंचाई तंत्र छे वो निका तरी काम करे लो, और वहां जो लागत को मूल्य लागे छे उनको पूरे फायदो भी मिले लो।
0: किसान भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फसल बगीचा इत्यादि के रूप में अगर आप कोई चीज लगा रहे हैं तो आपको वो पहले तय करना होगा कि कौन सी चीज आप करने वाले हैं, उसके हिसाब से ही आप ड्रिप सिस्टम का चयन करें। दूसरा महत्वपूर्ण चीज आ जाती है कि आपको कौन सी कंपनी का ड्रिप सिस्टम लगाना चाहिए। इसके लिए मैं कहूंगा कि ऐसी कंपनी का चयन करें जो आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी देती

0: हो और जो आसपास के किसान भाइयों ने पहले काम में लिया है और उनका उनके प्रति अच्छा रुझान है तो उन चीजों का आप इस्तेमाल करें। नजदीकतम जो कृषि और उद्यानिकी विभाग है उनके अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है, ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं, ई मित्र पर जाकर आप इसका फायदा उठा सकते हैं। सही फिल्टर का चयन करें, प्राइमरी और सेकेंडरी फिल्टर जब आप चयनित करते हैं, वेंचुरी सिस्टम लगाना है या फर्टिलाइजर टैंक लगाना है इसके बारे में भी आप निर्णय लेवें कौन सा ज्यादा उपयुक्त है। और ड्रिप सिस्टम है, वेंचुरी सिस्टम है, फर्टिलाइजर टैंक सिस्टम है, इसको प्रायोगिक तौर पर कैसे काम में लेना है, इसके रख रखाव कैसे करना है, इसकी भी आप जो कंपनी आपको लगा के दे रही है सिस्टम उससे जानकारी लें और या फिर प्रशिक्षण प्राप्त करें। आसपास के किसान भाई जिन्होंने ड्रिप लगा रखी है उनके खेतों की विजिट करें और जानकारी प्राप्त करें कि कैसे इसको काम में लिया जाता है और क्या इसमें करना पड़ेगा, किस तरीके से इसकी देखभाल की जा सकती है।
1: जी तो सावधानियां की बात तो मोटे तौर पर होगी, अब थोड़ी सी अगर आप यह भी बता दो भाई क्यों जरूरी चेक करना, अगर कौन करेला तो कई नुकसान होगा की संभावना है।
0: रख रखाव करना बेहद जरूरी है क्योंकि अगर आप किसी भी चीज की रख रखाव करते हैं तो 10 से 15 वर्ष तक इस ड्रिप इरीगेशन को आप वापर सकते हैं और अगर रख रखाव नहीं करोगे तो कोई भी चीज खराब हो जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी फिल्टर से समय समय पर साफ करना जरूरी है, चाहे आप साप्ताहिक रूप से कर सकते हैं, पाक्षिक रूप से या महीने के हिसाब से या जरूरत पड़ने पर कर सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर मैनुअली कर सकते हैं या सिस्टम को चालू रनिंग सिस्टम में बैक फ्लश करके बैक वॉश करके भी कर सकते हैं। लेटरल लाइन्स है उनकी एंड कैप को, लास्ट में जो कैप होती है उसको एंड कैप कहते हैं, चालू सिस्टम में साफ कर सकते हैं। ड्रिपर्स ऑनलाइन और इनलाइन ड्रिपर्स है उनकी साफ सफाई करना बेहद जरूरी है और ज्यादा समय तक अगर आप साफ सफाई नहीं कर पाते या आपकी जो पानी में नमक की मात्रा ज्यादा है या साल्ट ज्यादा है तो ऐसे में आपको कुछ समय पश्चात आपको एसिड ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। इसमें एसिड ट्रीटमेंट में आप नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं तो किसान भाइयों को ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप एसिड ट्रीटमेंट करें तो पहली बार जब करते हैं तो आप जिस कंपनी ने आपको लगाकर दिया है उसके अधिकारियों को बुलाएं और उनसे करवाएं और आप प्रशिक्षण लें। एक बार जब प्रशिक्षित हो जाते हैं आप तो फिर अगली बार आप एसिड ट्रीटमेंट स्वयं भी कर सकते हैं। और फसल कटाई होने के पश्चात खेत में जब आप जुताई करते हैं तो उस समय ये जो भी लेटरल्स हैं इनको इकट्ठा कर लें और जब पुनः आप खेती करते हैं तब उस समय इनको साफ सफाई करके पुनः स्थापित करें और उपयोग में लें।
1: जी काश्तकार में डॉक्टर राजेश कुमार सैनी, हरित गृह विशेषज्ञ एवं इंटरनेशनल ट्रेनर भी आप छे और आज आपने स्टूडियो में आया और आपने बताया कि सिंचाई की जो सूक्ष्म विधियां चे वे कुंकुन सी चे कि यहाँ सरकार सो आप अनुदान ले रही आपको फायदो ले सको छो तो उम्मीद करा चा यहाँ के द्वारा दी गई जानकारी आपने खूब फायदेमंद हो वाली और इतनी बढ़िया और उपयोगी जानकारी दे बताई डॉक्टर साहब आपको खूब खूब धन्यवाद सर। और धन्यवाद आशा बहन आपको भी खूब खूब की बूंद बूंद सिंचाई विधि आप कितनी बढ़िया तरीके से आप प्रश्न पूछे और डॉक्टर साहब इतनी बढ़िया तरीके से आपका जवाब दिया तो आप दोनों का ही घनो घनो धन्यवाद और धन्यवाद री भेंट स्वरूप सुना चाहे मीठो सो गीत।

0: देखो अदिति बहन
1: जी सर,
0: मिट्टी सी लोक रचना आप सुनी पर देखो घड़ी सारो करण लाग रही है कि आज के खेतीबाड़ी कार्यक्रम को टेम हटाई पूरो रही है। तो भाई लोग आज के खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनता का भाई प्रभु दयाल वर्मा
1: और अदिति ने
0: दो आ गया
1: चाल और करा
0: राम
1: राम सा।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीबाड़ी। आइए अब रुख करते हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म ताल के इस गीत के साथ।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे फिल्म ताल के इस गीत का, जिसे स्वर दिया अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम ने, गीत लिखा आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया एआर रहमान ने। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब सुनते हैं फिल्म रामलखन से ये गीत।

आनंद बख्शी के लिखे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजे और मनहर और अनुराधा पौडवाल की आवाज में आपने अभी फिल्म रामलखन से ये गीत सुना। आइए अब सुनते हैं फिल्म चित चोर से ये गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रविंद्र जैन का लिखा, संगीतबद्ध किया ये गीत फिल्म चित चोर से, जिसे स्वर दिया येशुदास और हेमलता ने। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म सावन को आने दो से ये गीत।
1: अब तिथियन का

श्रोताओं, अभी आप फिल्म सावन को आने दो फिल्म से ये गीत सुन रहे थे, जिसे स्वर दिया यशुदास ने, गीत लिखा पी पंकज ने और संगीतबद्ध किया राजकमल ने। आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं फिल्म महबूब की मेहंदी से ये गीत।

श्रोताओं अभी आप आनंद ले रहे थे फिल्म महबूब की मेहंदी के इस गीत का, जिसे स्वर दिया लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब ने, गीत लिखा आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। अब से कुछ ही देर में आप रात्रि 8:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन, और उसके बाद समाचार प्रसारित किए जाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 10 बजे तक आप हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं लेकर के खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज कार्यक्रम में बात की जाएगी भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जाने वाली तीन T20 मैचों की श्रृंखला की, जिसके लिए आज 15 सदस्यीय भारतीय टीम की कर दी गई है घोषणा। श्रेयस अय्यर के हाथ में है टीम की कमान, जबकि हर्षित राणा और जसप्रीत बुमराह को भी टीम में मिला है मौका। वहीं दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन ने बना ली है फाइनल में जगह। आज पहले सेमीफाइनल मुकाबले में सेंट्रल जोन को हराकर किया अपना टिकट कंफर्म। और फुटबॉल के मैदान से खेल प्रेमियों के लिए आई एक बुरी खबर, जहां दिग्गज महान फुटबॉल खिलाड़ी अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने कल अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से कर दी है संन्यास की घोषणा। बैडमिंटन की जाएगी बात, जहां चीन मास्टर सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से हो गया है शुरू। और यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में विश्व नंबर एक अरीना सबालेंका ने दूसरे दौर में बना ली है अपनी जगह। आज का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा सबसे पहले क्रिकेट के अपडेट के साथ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के साथ तीन T20 मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम आज घोषित कर दी है। टीम की कप्तान श्रेयस अय्यर होंगे, जबकि उप कप्तान तिलक वर्मा होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर भारतीय टीम की जर्सी में नजर आएंगे। तो आइए जानते हैं किन किन खिलाड़ियों को टीम में जगह मिली है।
1: भारतीय टीम में अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, शिवम दुबे, अर्षदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती शामिल हैं। संजू सैमसन की भी टीम में वापसी हुई है। गेंदबाजी में अर्षदीप सिंह के साथ बुमराह और हर्षित शामिल हैं। प्रिंस यादव, हर्ष ठाकुर, अशोक शर्मा और मयंक यादव, जो जिम्बाब्वे दौरे पर टीम में शामिल थे, उन्हें इस बार टीम में जगह नहीं मिली है। हार्दिक पांड्या को भी टीम में जगह नहीं मिली है। नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा को फिटनेस के आधार पर शामिल किया गया है। टीम में श्रेयस अय्यर कप्तान, तिलक वर्मा उप कप्तान, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन।

0: किसान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि विश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्षदीप और हर्षित राणा शामिल हैं। दोनों टीमों के बीच तीनों मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे। पहला मैच 13 सितंबर को, दूसरा 15 को और तीसरा मैच 17 सितंबर को होगा। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैंट।
1: तो एशियाई खेलों से ठीक पहले भारतीय टीम के पास अपनी तैयारियों को और मजबूत करने का एक सुनहरा मौका, और इसके बाद भारतीय टीम दो टीमें, एक टीम एशिया कप में हिस्सा लेगी और दूसरी टीम वेस्टइंडीज के साथ एक दिवसीय मुकाबले खेलेगी जो कि घरेलू श्रृंखला खेली जाएगी, और इसके बाद भारत वेस्टइंडीज के साथ टी20 मैचों की 5 मैचों की एक श्रृंखला भी खेलेगी। और अब बात की जाए कुछ घरेलू क्रिकेट की, जहां ईस्ट जोन ने आज दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में जगह बना ली है। ईस्ट जोन ने सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन के खिलाफ मुकाबले में तीसरे दिन 4 विकेट से जीत दर्ज की, और फाइनल मुकाबले में ईस्ट जोन का सामना चेन्नई के एमए चितंद्रम स्टेडियम में 6 सितंबर को नॉर्थ जोन और साउथ जोन के बीच खेले जा रहे दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले के विजेता से होगा। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: Yes, it is. Sammy finishes it off with a boundary, playing it through the offside, and he's on. Win this game comfortably enough by 4 wickets to qualify for the final after a gap of 13 years.
3: बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस के ग्राउंड 1 में खेले गए इस मुकाबले में बल्लेबाजी करने उतरी सेंट्रल जोन ने पहली पारी में 266 रन बनाए। इस पारी में रिंकू सिंह ने सर्वाधिक 60 और आर्यन जुयाल ने 46 रन बनाए। इस जोन से मुकेश कुमार और अभिजीत सरकार ने 3-3 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद शमी और कौनैन कुरैशी ने 2-2 विकेट चटकाए। इसके जवाब में ईस्ट जोन भी अपनी पहली पारी में 266 रन ही बना सकी। सलामी जोड़ी के रूप में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अभिमन्यु ईश्वरन के साथ पहले विकेट के लिए 153 गेंदों में 162 रन की साझेदारी की। वैभव 81 गेंदों में 92 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अभिमन्यु ने 69 रन की पारी खेली। सेंट्रल जोन से हर्ष दुबे ने 4 तथा आर्यन पांडे और यश ठाकुर को 3-3 विकेट लिए। इसके बाद सेंट्रल जोन की टीम दूसरी पारी में 158 रन पर सिमट गई। टीम के लिए अमन मोखरे ने सर्वाधिक 41 रन बनाए। इस पारी में मुकेश कुमार ने 4 विकेट और मोहम्मद शमी ने 3 विकेट लिए। इस आसान लक्ष्य को ईस्ट जोन ने 40वें ओवर में ही हासिल कर लिया। पहली पारी के स्टार सूर्यवंशी ने ईश्वरन के साथ पहले विकेट के लिए 85 गेंदों में 61 रन जोड़कर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। वैभव 43 गेंदों में 40 रन और ईश्वरन 24 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद टीम ने कप्तान ईशान किशन के 39 रन के बदौलत ये लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। अंतिम पारी में सेंट्रल जोन के लिए हर्ष दुबे ने 4 विकेट चटकाए, जबकि शाराज जैन और यश ठाकुर को 1-1 विकेट मिला। मैच में 7 विकेट लेने वाले मुकेश कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। नेहा गोस्वामी, पोस्टकैन।
1: तो कई भारतीय दिग्गज खिलाड़ी इस फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फॉर्मेट में अपना दमखम आजमाते हुए, और एक शानदार पाली निकली वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। वो 92 रन हालांकि शतक से चूके, लेकिन टीम का फाइनल में पहुंचा दिया है वैभव सूर्यवंशी की इस पारी ने। अब देखना होगा कि युवा खिलाड़ी किन तेवरों के साथ फाइनल मुकाबले में टीम की जीत की राह लिखने की कोशिश करता है। वहीं दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भी एक रोमांचक मोड़ पे पहुंच चुका है। बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेले जा रहे इस मुकाबले के तीसरे दिन का खेल समाप्त होते होते मुकाबला एक बेहद निर्णायक मोड़ पे आ गया है। अपनी दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी नॉर्थ जोन की टीम ने तीसरे दिन के खेल की समाप्ति तक 7 विकेट खोकर 256 रन बना लिए थे। टीम के पास फिलहाल 139 रन की बढ़त है। ऐसे में साउथ जोन की नजरें होंगी कि अंतिम दिन विपक्षी टीम को जल्दी समेटकर आसान लक्ष्य हासिल किया जाए और उसको फाइनल में अपनी जगह पक्की की जाए। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी नॉर्थ जोन की टीम ने पहली पारी में मात्र 195 रन बनाए थे। इसके जवाब में साउथ जोन ने कप्तान तिलक वर्मा के शानदार नाबाद शतक की बदौलत 312 रन बनाए थे और 117 रन की बढ़त हासिल की थी। ऐसे में इस टीम की नजर होगी कि किस तरह जल्दी से जल्दी आखिरी दिन के खेल को अपने हिस्से में किया जाए और फाइनल का स्लॉट बुक किया जाए, जहां ईस्ट जोन से मुकाबला होगा और गत विजेता सेंट्रल जोन आज ही सेमीफाइनल से हार कर बाहर हो गया है। और क्रिकेट के बाद अब रुख किया जाए फुटबॉल के मैदान का, जहां से एक ऐसी खबर कल शाम आई जिसको शायद खेल प्रेमी ना सुनना चाहें। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी और अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने कल अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए 207 मुकाबले खेले, जिसमें उन्होंने 125 गोल दागे। वे अर्जेंटीना के लिए सर्वाधिक मुकाबले खेलने और गोल करने वाले खिलाड़ी बने।

0: मेसी का करियर लाखों फुटबॉल प्रेमियों की प्रेरणा की तरह है। कल रात महान खिलाड़ी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक भावुक पोस्ट लिखते हुए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कर दिया। सुनते हैं हमारे सहयोगी शशांक कुमार और प्रियंका अरोड़ा की रिपोर्ट।
1: मैदान पर फैंस से मिला समर्थन बेहद याद आएगा। फाइनल के बाद काफी सोच विचार के बाद सभी को बताना चाहता हूं कि नेशनल टीम से अब रिटायर हो रहा हूं। इस फैसले से मुझे बहुत दुख हुआ है और अब भी अंदर तक दुखी होता हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि अब सही समय आ गया है। स्पेन से विश्व कप फाइनल में मिली हार के बाद ये फैसला मन में था और पिता के निधन ने मुझे और भी दृढ़ निश्चय दिलाया कि अब फुटबॉल से संन्यास लेने का समय आ गया है। नेशनल टीम का हिस्सा रहना मुझे बेहद पसंद है और हमेशा पसंद रहे। पिछले 20 वर्षों में आप सभी से मिले प्यार के लिए धन्यवाद।
2: मेसी ने अर्जेंटीना को अपने शानदार अंतर्राष्ट्रीय करियर में 3 फीफा विश्व कप फाइनल में पहुंचाया। अर्जेंटीना साल 2014 और इसी वर्ष खत्म हुए फीफा विश्व कप में उप विजेता रहा। इसी दौरान आया 18 दिसंबर 2022 का वो दिन जब दुनिया के सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी ने फुटबॉल विश्व कप का खिताब अपने हाथों से उठाया और अर्जेंटीना को अपनी कप्तानी में विजेता बनाया। मेसी ने फुटबॉल के मैदान पर कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो शायद ही कभी टूटे। मेसी ने फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक 8 बैलन डॉर ट्रॉफी जीती। वर्ष 2012 में मेसी ने शानदार 91 गोल किए जो किसी एक कैलेंडर ईयर में किसी खिलाड़ी की ओर से किए गए सबसे अधिक गोल हैं। उन्होंने बार्सिलोना के लिए ला लीगा में 474 गोल किए और इस टूर्नामेंट के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने। इसके साथ ही उन्होंने अपने करियर में बार्सिलोना के लिए 672 गोल किए जो किसी खिलाड़ी की ओर से एक ही क्लब के लिए किए गए सबसे ज्यादा गोल हैं। सर्वाधिक गोल के रिकॉर्ड से इतर मेसी एक शानदार टीम प्लेयर भी रहे। फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट का रिकॉर्ड भी इस दिग्गज खिलाड़ी के नाम है। भले ही मेसी का अंतर्राष्ट्रीय करियर अब खत्म हो गया है लेकिन वे इंटर मियामी के साथ अपना क्लब करियर जारी रखेंगे जहां वे 2028 तक अनुबंधित हैं। अर्जेंटीना नेशनल टीम से उनके संन्यास के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल का एक सुनहरा अध्याय समाप्त हो गया है।
0: तो मेसी को मिस करेंगी वो तमाम पीढ़ी जिसने उनको देख के खेलना शुरू किया। मैदान से जुड़े कोई भी क्रिकेट हो, टेनिस हो, बैडमिंटन हो, कोई भी खेल का मैदान रहा हो, एक स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट के साथ लोगों ने मेसी से बहुत कुछ सीखा। और क्या शानदार खिलाड़ी, दुनिया के तमाम रिकॉर्ड इस खिलाड़ी के आगे बौने साबित होते हैं। लीग और अंतर्राष्ट्रीय करियर को मिला दिया जाए तो 927 गोल, 6 विश्व कप खेलने का अनुभव, क्या नहीं था इस खिलाड़ी के पास। चाहे वो अंडर 20 फीफा विश्व कप का खिताब हो, ओलंपिक का गोल्ड मेडल हो, और जब खिलाड़ी मैदान पे उतरता तो सामने वाली टीम एक विशेष रणनीति रखती कि अर्जेंटीना से तो पार पा लिया जाएगा लेकिन मेसी से कैसे निपटेंगे। तो कह सकते हैं कि फैंस के लिए थोड़ी सी निराशा कि वापस अर्जेंटीना की जर्सी में इस दिग्गज खिलाड़ी को मैदान पर नहीं देख पाएंगे। अब नजरें होंगी कि किस तरह मेसी लीग में अपने प्रदर्शन से अपने फैंस की ये मांग को पूरा करते हैं। और मेसी के रिटायरमेंट के बाद अब रुख किया जाए बैडमिंटन कोर्ट का। चीन मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हो गया। हालांकि आज का पहला दिन भारत के लिए कुछ खास नहीं रहा। भारत की महिला सिंगल्स खिलाड़ी उन्नति हुड्डा तथा हरिहरन अमसा करुणन और एम आर अर्जुन की पुरुष डबल्स जोड़ी का अभियान आज पहले ही दिन पहले ही दौर में हार के साथ समाप्त हो गया। अब प्रतियोगिता में कल किदांबी श्रीकांत, लक्ष्य सेन तथा सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी से भारत को सबसे अधिक उम्मीद रहेंगी।
3: उन्नति हुड्डा को महिला सिंगल्स के पहले दौर में दक्षिण कोरिया की किम गा यून से 10-21, 18-21 से शिकस्त झेलनी पड़ी, जबकि एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की जोड़ी चीन के चेन बो यांग और ली यू यी के साथ मुकाबले में 8-11 से पीछे चल रही थी, तभी उन्होंने मुकाबले से हटने का फैसला किया। उनके मैच से हटने की वजह तत्काल स्पष्ट नहीं हो सकी लेकिन माना जा रहा है कि ये फिटनेस से जुड़ी हो सकती है। अब भारत की

0: पूरी उम्मीद कल के दिन पर टिकी होंगी, जहां पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन कनाडा के विक्टर लाई और किदांबी श्रीकांत ताइपे के ची उजेन के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पहले दौर में मलेशिया के जुनैदी आरिफ और कानखाई जिंग के खिलाफ उतरेगी। महिला सिंगल्स में ताइपे ओपन की विजेता तन्वी शर्मा और थाईलैंड ओपन जीतने वाली देविका सिहाग भी अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो का मुकाबला टोनरक साहिंग और टोनकीद साहिंग से होगा। रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गजे की दूसरी भारतीय मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ताइपे के वू ग्यूयान जूंग और ली चियासिन के खिलाफ जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश करना चाहेगी। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो एक बार फिर भारतीय उम्मीदों को लीड करते हुए नजर आएंगे कल लक्ष्य सेन। उम्मीद होगी कि लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत अगले दौर में प्रवेश करें और ऐसी ही उम्मीदें होंगी भारत की स्टार जोड़ी, जिसमें सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी शामिल है। कम से कम इस प्रतियोगिता में भारत कुछ अनुभव और कुछ और अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने की कोशिश करेगा एशियाई खेलों से ठीक पहले, क्योंकि ये तमाम खिलाड़ी जापान में भारत के लिए दमखम आजमाते हुए नजर आएंगे, जहां खिलाड़ियों की नजर में होगा एशियाई खेलों का पदक। तो देखना होगा कि किस तरह के माइंडसेट के साथ कल ये तमाम भारतीय खिलाड़ी चीन में मुकाबले के लिए उतरते हैं। और अब कार्यक्रम में बात की जाए टेनिस के कोर्ट की, जहां साल का चौथा ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन खेला जा रहा है। तो वर्ष के इस अंतिम ग्रैंड स्लैम में आज अरीना सबालेंका ने पहले दौर में कोलंबिया की कैमिला ओसोरियो को 6-2, 6-4 से हरा करके दूसरे दौर में जगह बना ली है। आपको बता दें कि सबालेंका का मुकाबला अब रूस की पॉलिना यातेसेनको से होगा। सेरेना विलियम्स और क्रिस एवर्ट के बाद लगातार 3 यूएस ओपन जीतने की फिराक में ये खिलाड़ी लगातार एक दौर दर दौर आगे बढ़ने की कोशिश करती हुई, और देखना होगा कि किस तरह का अभियान रहता है। इससे पहले कल एक बड़े उलटफेर में 24 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक जोकोविच यूएस ओपन से बाहर हो गए। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव आप हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। सम्मेलन आतंकवाद, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद शनिवार को प्रस्तावित मार्च वापस लिया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। सम्मेलन आतंकवाद, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
2: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है।

0: एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित एससीओ युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले एससीओ सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और एससीओ युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: सम्मेलन 13 प्रमुख निर्णयों के साथ संपन्न हुआ। ये निर्णय आतंकवाद रोधी उपायों, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और डिजिटल सहयोग से संबंधित हैं। इसके अलावा 4 समझौता ज्ञापनों और 20 से अधिक निर्णयों को भी मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा प्रगति और समृद्धि के लिए मजबूत और भरोसेमंद कनेक्टिविटी की पहल महत्वपूर्ण है। भारत ऐसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ें, व्यापार को बढ़ावा दें और विकास के नए अवसर खोलें। हालांकि ऐसी पहलों में देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। श्री चौहान ने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया। एक रिपोर्ट।
4: योजना के 6 लक्ष्यों के आधार पर 100 जिलों का औसत स्कोर अप्रैल 2026 में 22.54 से बढ़कर जुलाई 2026 में 38.85 हो गया, जो 16.31 अंकों के सुधार को दर्शाता है। यह योजना 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं के साथ साथ राज्य की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को मिलाकर लागू की जा रही है। वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति की निगरानी के लिए 36 योजना में कुल 121 संकेतक निर्धारित किए गए हैं। समीक्षा में निगरानी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। शिवांग मिश्रा के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2500 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपूर्ति और बढ़ने से दाम पूरी तरह स्थिर हो जाएंगे और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल

0: महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकी भी रद्द कर दी और राज्य को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है।
1: हमने छात्रों को भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। सीजेपी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए रहा। इसमें 1,29,000 करोड़ रुपए का योगदान रक्षा उपक्रमों का था। उन्होंने इस उपलब्धि को आत्मनिर्भर रक्षा औद्योगिक आधार के निर्माण की दिशा में देश की महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक बताया। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT 6 दशकों से अधिक समय से विशेष रूप से अपनी पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में परिषद के 66वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्कूली शिक्षा में सुधारों के लिए एक ढांचा प्रदान किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को नुकसान और प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट और साझा प्रयासों की जरूरत है। नई दिल्ली में भारत जर्मनी पर्यावरण मंच में उन्होंने कहा कि भारत के विकास के अनुभव ने यह साबित किया है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों एक साथ चल सकते हैं।
2: क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर,
3: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और अपने लिए जलवायु अनुकूल भविष्य बनाने के लिए आपसी सहयोग बेहद जरूरी है। भारत इस दिशा में जर्मनी के साथ अपनी साझेदारी को विशेष महत्व देता है। दोनों देशों के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग कई वर्षों से जारी है और समय के साथ पर्यावरणीय शासन के नए क्षेत्रों तक इसका विस्तार हुआ है।
2: एरियाज ऑफ एनवायरमेंटल गवर्नेंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में मध्यम जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में व्यापक बारिश होने की संभावना है। वस्तु और सेवा कर के संग्रह पिछले महीने बढ़कर 1,99,853 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये अगस्त 2025 के 1,74,116 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 15% अधिक है। केंद्र सरकार ने ईंधन निर्यात करों की अपनी ताजा पाक्षिक समीक्षा के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार पेट्रोल पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर 1.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर बढ़ाकर 25 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क घटाकर 19 रुपए प्रति लीटर किया गया है। अधिसूचित ये संशोधित दरें आज से लागू हो गई हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के दमन्ना में अर्जुन वाहिनी नामक एक विशेष आपदा मोचन दस्ते का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तर्ज पर गठित इस बल का उद्देश्य राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमताओं को और अधिक मजबूत बनाना है। महाराष्ट्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2029 तक राज्य को मादक पदार्थ मुक्त बनाने के लिए एक व्यापक नीति को मंजूरी दी है।

0: मुंबई में मंत्रिमंडल की बैठक में मादक पदार्थों के खिलाफ सभी विभागों के समन्वय से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर इस साल 30 सितंबर कर दी है। अब संस्थान स्तर पर प्रथम स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर और जिला स्तर पर द्वितीय स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है। भारतीय जनसंचार संस्थान ने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को पहली बार स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इन अधिकारियों को लोक संचार और शासन में एमए की डिग्री दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि जनसंचार शासन का एक अभिन्न अंग है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 टी20 मैच की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उपकप्तान तिलक वर्मा होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में मौका मिला है। श्रृंखला का पहला मैच 13 सितंबर, दूसरा 15 और तीसरा 17 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। संगठन का शिखर सम्मेलन आतंकवाद रोधी उपायों, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद शनिवार को प्रस्तावित मार्च वापस लिया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और अफगानिस्तान के साथ 3 टी20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls on SCO member countries to unite against entire terror ecosystem. SCO summit culminates with 13 outcome agreements spanning counter-terrorism, climate action and digital cooperation. Prime Minister concludes
2: his successful visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan reviews progress of PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, stresses on outcome-based monitoring and timely delivery of benefits to farmers. Supreme Court orders closure of FIRs across the country over student protests. CJP withdraws proposed September 5 March following assurances from centre. Heavy to very heavy rainfall likely at isolated places in Chhattisgarh, East Madhya Pradesh and Uttarakhand tomorrow. And in men's cricket, 15-member Indian squad announced for 3-match T20 international series against Afghanistan. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has called upon member countries of Shanghai Cooperation Organization, SCO, to dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalization and safe havens. Addressing the 26th SCO summit in Bishkek today, the Prime Minister said there can be no place for double standards on terrorism. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.V. George, in a media briefing said, the Prime Minister expressed concern over the ongoing conflicts in different parts of the world.
3: Prime Minister reiterated that India's position, conflicts and wars cannot be solved on the battlefield. Dialogue and diplomacy are the only way forward. Highlighting that terrorism was a grave threat to humanity, he called for committed action to dismantle the terror ecosystem. He specifically stressed that there should be no double standards whatsoever in fight against terrorism.
2: Mr. Modi said India had proposed the Shanghai Cooperation Organization Civilization Dialogue for

अब आपको सुनवाते हैं यशुदास और सुलक्षणा पंडित का गाया सावन को आने दो फिल्म का गीत। इस गीत के बोल माया गोविंद के हैं और संगीत है राजकमल का।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और उषा तिमोती की आवाज में ये गीत बोल कल्याण जी आनंद, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, और बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। इसी के साथ आपके लिए कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प मोड़ शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज। तो जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका

दोस्तों, सी अर्जुन का असली नाम अर्जुन चंचलानी था। इनके संगीत से सजे समरे कई गाने पॉपुलर हैं, पर सी अर्जुन को वो ख्याति नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। छोटे बजट की एक फिल्म आई थी सन 1975 में। इस फिल्म के भक्तिमय गीतों ने चारों तरफ धूम मचा दी थी। 16 शुक्रवार की महिमा को फिर जैसे इस फिल्म ने पुनर्स्थापित किया था। पंडित प्रदीप के सधे हुए बोल और सी अर्जुन के ओजपूर्ण संगीत ने भक्ति का जैसे सूत्रपात कर दिया था। इसी फिल्म के तूफानी संगीत ने सी अर्जुन को लोकप्रियता के शिखर पर बैठा ला था। फिल्म थी जय संतोषी माँ।

सितंबर सन 1933 में सिंध कराची में हुआ। पार्टीशन के बाद उनका परिवार गुजरात के शहर बड़ौदा में बस गया। संगीत की शुरुआती तालीम उन्हें अपने पिता से ही मिली, जो स्वयं एक गायक थे। संगीत के क्षेत्र में करियर हेतु जब वो मुंबई आए तो अपने जमाने के जाने माने संगीतकार बुलोसी रानी के वे असिस्टेंट बन गए। 1958 में स्वतंत्र रूप से संगीत देने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। फिल्म थी अबाना, जो

सिंधी भाषा में बनी थी। हिंदी फिल्मों में संगीत उन्होंने 1960 से शुरू किया। फिल्म थी रोड नंबर 303। दुर्भाग्यवश उन्हें कोई नामचीन या बड़ा बैनर नहीं मिला। लो बजट फिल्मों में वो संगीत देते रहे, नाम और दाम उन्हें उतना नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। संगीत मगर उन्होंने आला दर्जे का दिया है। सी अर्जुन मिरड़ी के जानकार थे, इसलिए उनके द्वारा संगीत बद्ध गाने आज भी उतने ही तरोताजा हैं। हर गाना बेमिसाल है। इसी की मिसाल पेश करने वाला ये गाना, जिसे मोहम्मद रफी और मखमली आवाज के मालिक तलत महमूद ने गाया है, 1963 में आई फिल्म सुशीला का ये अमर गान है। इसमें आशाओं और उम्मीदों की संगीतमय किरणें हैं जिन्हें जगाया है सी अर्जुन ने।

पुनर्मिलन के सारे ही गाने वैसे तो मीठे और मधुर बन पड़े हैं। सबसे पहला गीत इस फिल्म का जो जहन में आता है, रफी साहब की पुरसोज आवाज का जादू जगाता ये गाना, जिसे इंदीवर साहब ने लिखा है, फिल्माया गया है अभिनेता जगदीप पर।

इस गाने का असर आज भी उतना ही है तब से जब से ये गाना बना है, यानी सदाबहार एवर ग्रीन सॉन्ग का दर्जा हासिल है इसे। इसी फिल्म की और भी संगीत रचनाएं बड़ी ही यादगार

1961 में आई थी फिल्म मैं और मेरा भाई, आशा भोसले और मुकेश का गाया ये गाना इतना मेलोडियस बन पड़ा है कि लगता है जैसे अभी अभी ही बना हो। इतना तरोताजा और समसामायिक, हर दौर में उतना ही असरदार।

दोस्तों, सी अर्जुन की ये रचनाएं सुनते हुए यूं लगता है ये युगों युगों तक चलने वाला संगीत है। इतना सजीव, इतना इमॉर्टल। कितने ही ऐसे गाने हैं जिन्हें लोगों ने काफी सराहा, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये गाने जिस संगीतकार की जहन की उपज है उसका नाम है सी

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जाने माने संगीतकार सी अर्जुन पर। शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादक एवं प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बज चुके हैं, आप सुनेंगे फिल्म संगीत। तो आइए गाते गुनगुनाते हुए हम करते हैं फिल्म संगीत का आगाज। फिल्म संगीत के पहले पेशकश आप सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज में, वो कौन थी फिल्म से, मदन मोहन का संगीत।

गाइड फिल्म से अभी आपने गीत सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार शैलेंद्र थे, संगीत एसडी बर्मन का। फिल्म संगीत का अगला गीत आप सुनेंगे किशोर कुमार की आवाज में, राजेंद्र कृष्णा के बोल है संगीत खुयाम का। फिल्म है ब्लैक मैन

फिल्म संगीत का अगला गीत आप सुनेंगे आशा भोसले और मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म है हिम्मत।

मेरे जीवन साथी फिल्म से अगला गीत आप सुनेंगे किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत आरडी बर्मन का।

यादों की बारात फिल्म से अगला किताब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल है संगीत आरडी बर्मन का।

आकाशवाणी बांसुरा के माहिचल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए अगला गीत सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में। फिल्म है प्रेम गीत।

अगला गीत आपकी कसम फिल्म से सुनेंगे किशोर कुमार और लता मंगेशकर साथियों की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल संगीत आरडी बर्मन का।

पीछे सपनों के भागे तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपना हरा ही चला जाए सपना।

अगला गीत शोर फिल्म से लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

फिल्म संगीत का अंतिम गीत आप सुनेंगे मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल है, संगीत ओपी नैयर का, फिल्म है मेरे सनम।

0: इसकी साथ ही फिल्म संगीत का सफर यही थमता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। लीजिए सुनिए हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
2: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित एससीओ युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले एससीओ सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और एससीओ युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, सिंचाई और भंडारण सुविधाओं में सुधार करना तथा कृषि को कृषि ऋण और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सचिवों के सम्मेलन में खाद्यान्न खरीद, वितरण और भंडारण की समीक्षा की। आगामी खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के लिए धान की खरीद का अनुमान 708 लाख मीट्रिक टन से अधिक तय किया गया। करीब 19 लाख मीट्रिक टन मोटे अनाज की खरीद का भी अनुमान है। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी हैं और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। सरकार ने

0: शैक्षणिक सत्र वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर इस साल की 30 सितंबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार मेधावी छात्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। तारीख बढ़ाए जाने के बाद अब संस्थान स्तर पर प्रथम स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर और जिला स्तर पर द्वितीय स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चलन है। रात्रि के 11:05 हुए हैं। हमारे आज की प्रसारण सभा अब यही समाप्त होती है। कल प्रातःकालीन 5:53 पर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।